पॉपुलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून सन 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं, प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर

0: केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। CBI वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव RFM बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत से सराबोर वंदना। शुरुआत करते हैं समूह स्वर में देशगान के साथ। रचना है उद्धव कुमार की।

संत तुलसीदास का यह भजन अभी आपने सुना गिरजा देवी के स्वर में। आइए अब सुनते हैं कविता पौडवाल के स्वर में बलबीर निर्दोष की ये भक्ति रचना।

0: आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भक्ति रचना।
1: जब गणेश विसर्जन का दिन आता है तो हृदय भर जाता है। श्री गणेश हमसे एक वर्ष के लिए दूर हो जाएंगे, बड़ा कारुणिक होता है। विदा करने वाला परिवार कर उन्हें जय गणेश की महिमा के ही बोलो।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब सुनते हैं चिंतन। आलेख है श्री शंकर प्रसाद श्रीवास्तव का।
1: भारतीय दर्शन में मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ और सार्थक बनाने के लिए धर्म के जिन 10 तात्विक लक्षणों का निर्धारण किया गया है, उस पर सिद्ध पुरुषों, महापुरुषों और तत्वज्ञों ने अपनी मुहर लगाई है। उनमें आधुनिक युग के महापुरुषों में महात्मा गांधी अग्रणी हैं। महत्व की बात यह है कि वे उसके केवल अध्येता या व्याख्याता ही नहीं, अपितु सच्चे प्रयोक्ता भी रहे हैं। कहा गया है, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, अर्थात जो ज्ञान कार्य रूप में परिणत न हुआ वो नष्ट ही समझो, वो निरर्थक ही होता है। महात्मा गांधी जी ने जिन 2 तत्वों को अपनाया वे हैं सत्य और अहिंसा। उन्होंने जीवन में अहिंसा को अत्यधिक महत्व दिया है। केवल किसी की हत्या करना मात्र ही हिंसा नहीं है, मन वचन या कर्म के द्वारा किसी को कष्ट पहुंचाना हिंसा है। गांधी जी के अनुसार वाणी और कर्म की बात तो दूर, मन तक में भी किसी को कष्ट पहुंचाने का विचार नहीं आना चाहिए। गांधी जी के जीवन में सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह अथवा सत्य की निष्ठा का चरम स्थान था। उनका मानना था कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में अहिंसा के द्वारा ही सत्याग्रह का अनुशासन स्थिर रह सकता है। गांधी जी जिस आदर्श मानव समाज का निर्माण करना चाहते थे उसकी आधारशिला

0: अहिंसा ही हो सकती है। अहिंसा ही मानव मानव के बीच उस प्रेम की स्थापना कर सकती है जिसमें परस्पर सद्भाव का सदैव विस्तार हो सकता है। भारत विश्व बंधुत्व का प्रबल पक्षधर है। सद्भाव की स्थापना के बिना विश्व मानव सुखी नहीं हो सकता, जिसका आधार विशुद्ध अहिंसा ही है। वे मानते थे कि केवल आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए ही नहीं, जीवन के अन्य क्षेत्रों, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक क्षेत्रों में भी अहिंसा के द्वारा ही प्रगति हो सकती है। ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। गांधी जी की अगुवाई में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा के प्रयोग ने उसे एक नए और विस्तारित रूप में प्रस्तुत करके भी दिखाया और विश्व को एक नई शक्ति संपन्न जीवन शैली से परिचित कराया। अहिंसा साहस का वो उच्चतम शिखर है जिसके सामने एटम बम भी प्रभावहीन हो जाता है। अहिंसा आत्मा की वो अदम्य शक्ति है जिसके सामने सारी आसुरी शक्तियां पस्त हो जाती हैं। जैसे राम के सामने रावण, गांधी जी की इसी ताकत ने भारत के उस ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंका जिसमें कभी सूर्यास्त नहीं होता था। अहिंसा की उस ताकत को पाने के लिए सच्ची निष्ठा और विश्वास के साथ ईमानदार साधना की आवश्यकता होती है। इसे भारत की साधारण जनता ने पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध, शहरी, ग्रामीण, किसान, व्यापारी आदि ने करके दिखा दिया। राजनीतिक क्षेत्र में पहली बार किया गया उनका यह प्रयोग सफल रहा, किंतु गांधी जी अहिंसा का यंत्रवत पालन करना उपयुक्त नहीं मानते थे। महाभारत के जिस श्लोक में अहिंसा परमो धर्म कहा गया है, उसी के साथ ये भी कहा गया है कि धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात धर्म के लिए की गई हिंसा भी परम धर्म है। राष्ट्र की रक्षा, कुटुंबियों की रक्षा, समाज की रक्षा, मानवता की रक्षा जैसे आवश्यक उद्देश्यों के लिए हिंसा भी अहिंसा के समान परम धर्म है। कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए का सिद्धांत मानने वाले गांधी जी देशकाल परिस्थिति के अनुसार हिंसा को भी स्वीकारते हैं, क्योंकि अहिंसा कायरता का पर्याय नहीं है। कायरता अहिंसा नहीं हो सकती, क्योंकि अहिंसा एक श्रेष्ठ शक्ति है। यदि कोई आतताई किसी अबोध शिशु या निर्बल व्यक्ति पर आक्रमण करता है, वहां यदि कोई अहिंसा का पाठ करता है तो उसकी रक्षा का धर्म अर्थात कर्तव्य या दायित्व कैसे पूरा होगा। आज गांधी जी की अहिंसा की बड़ी आवश्यकता है, जब सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में विद्रूपताओं की बाढ़ आ गई है और मानवता खतरे में है। हिंसा के मूल में क्रोध और असहनशीलता होती है जो बुद्धि का नाश करती है। बुद्धि नष्ट होने से विनाश ही होता है, अतः प्रेम और सद्भाव जैसी भावनाओं का प्रसार अब बहुत जरूरी हो गया है, जो अहिंसा की साधना के बिना संभव नहीं है। आइए गांधी जी की अहिंसा को अपनाकर मानवता की रक्षा का संकल्प लें।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख था श्री शंकर प्रसाद श्रीवास्तव का। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस गान। गायक स्वर है ए हरिहरन और वाणी जयराम का। संगीत संयोजक है सतीश भाटिया। 194, 194।

भरत को श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मान सभी अयोध्यावासी उनके साथ राम को लौटा लाने के लिए वन जाने को उद्यत हैं। मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि वे राज तिलक की सारी सामग्री वन में ले चलें, जहां वशिष्ठ जी श्री राम का राज तिलक करेंगे। सबसे आगे अरुंधति तथा अग्निहोत्र की सामग्री के साथ मुनि वशिष्ठ रथ पर सवार होकर चले। उनके पीछे तेज और तपस्या के धनी ब्राह्मणों के दल अनेक सवारियों पर आसीन हैं। नगर के नर नारियों के सुसज्जित रथों के साथ हैं

रानियों की पालकियां। सबको विदा करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल चल पड़े। तो माता कौशल्या ने भरत को बुलाकर उनकी पलैया ली और उनसे रथ पर सवार होने को कहा। दोनों भाइयों ने माता की आज्ञा सिर पर धारण की।

0: रामचरित मानस गान अभी आप सुन रहे थे। गायक स्वर थे ए हरिहरन और वाणी जयराम के। संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। मिर्च की उन्नत खेती विषय पर कृषि चर्चा आप सुनते हैं डॉक्टर एस एम अली हुमायूं से।
1: नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर एस एम अली हुमायूं, कीट वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो है हमारे जो खाद्यान्न है, जो खाने की फसलें हैं, अनाज है, उनमें जो है अत्यधिक कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है जिसके लिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है कीटनाशकों का प्रयोग, रसायनों का प्रयोग कम से कम करें, ताकि हमारे आहार में जो है जहर की मात्रा कम से कम जाए। तो जैसा कि किसान भाई मिर्ची की फसल अपनाते हैं, तो आज हम उस पर चर्चा कर लेते हैं कि मिर्ची की फसल जो है लगभग किसान भाई साल भर मिर्ची की फसल लेते हैं, और मिर्ची की फसल में सबसे ज्यादा जो है रसायनों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मिर्ची की फसल एक ऐसी फसल है जो रस चूसक कीटों के लिए बहुत ज्यादा जो है कमजोर होती है। मतलब रस चूसक कीट उसमें बहुत ज्यादा प्रकोप करते हैं और जल्दी से लग जाते हैं। किसान भाइयों को जो है रस चूसक कीटों की बहुत बड़ी समस्या होती है, तो उसके लिए जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को यह सलाह देना चाहता हूं कि मिर्ची की फसल लगाने के पहले अगर किसान भाई जो है अपने खेत की तैयारी अगर अच्छी तरह से करेंगे, तो इन सब चीजों से, बीमारियों से, कीटों से जो है कुछ हद तक के बचा जा सकता है। तो किसान भाई हमारे ये ध्यान दें कि जो मिर्ची की फसल लगाने के पहले जो खेत की तैयारी है वो इस तरह करें कि जैसे ही जो है आपको जो है बुआई करनी है, उसके पहले आप खेत में अच्छी गहरी जुताई कर लें, उसके बाद मिर्ची की फसल कतार में लगाएं। सबसे पहले जो है ये मांद बनाकर जो है

0: रो एंड फरो जो मेथड होता है, रिज एंड फरो, उस मेथड का प्रयोग करें। उसकी जो है दूरी जो है वो 60 से 45 सेंटीमीटर की जो है दूरी रहती है, पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर, और जो नाली मांद रहती है उसकी दूरी जो है 60 सेंटीमीटर रखी जा सकती है। और अगर हाइब्रिड अगर लगाते हैं तो उसमें दूरी थोड़ी थोड़ी और बढ़ाई जा सकती है, जैसे मांद की दूरी जो है 75 सेंटीमीटर की जा सकती है और पौधे से पौधे की दूरी जो है 60 सेंटीमीटर की जा सकती है। कई कीट ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा उड़ नहीं पाते, और ज्यादातर रस चूसा कीट जो होते हैं वो जंप करते हैं, मतलब खुदा के चक के जो है एक पौधे से दूसरे पौधे में जाने का प्रयास करते हैं, या फिर जब पौधे आपस में सट जाते हैं तो वो एक पौधे से दूसरे पौधे की तरफ चले जाते हैं। तो दूरी अगर बना के किसान भाई रखेंगे पौधे से पौधे की और कतार से कतार की, तो जो कीटों का जो फैलाव इस तरह का होता है उसको रोका जा सकता है। अब रही बात खेत की तैयारी जो आपने की है या उसके करने की सलाह दी जाती है, तो अगर आप अगर उसमें जो है गोबर की खाद जो FIM रहता है, फार्म यार्ड मैन्योर, उसको अगर आप मिला सकते हैं, अगर आपके पास आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसको मिला लें। इससे भी क्या होगा कि मृदा की उर्वरता क्षमता बढ़ेगी, जिसमें आपको जो है अत्यधिक जो है रसायन नहीं देना पड़ेगा फसल की बढ़वार के लिए। जो किसान भाई आजकल टॉनिक के नाम पे इस्तेमाल करते हैं पौधों को बढ़ाने के लिए, फसलों को जो है जल्दी बढ़ाने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए, तो उसका जो है प्रयोग किसान भाइयों को नहीं करना पड़ेगा। एजोस्पाइरिलम नामक जो है एक सूक्ष्म वो आता है, उसका प्रयोग जो है 2 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कर सकते हैं। और फॉस्फोबैक्टीरिया भी जो है 2 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई 20 किलो जो FIM आप से ले लें, उसमें ये दोनों को 2-2 किलो मिलाकर के जो है अपने खेत में छिड़क दें। इससे भी जो है मृदा की उर्वरता क्षमता बढ़ती है। फिर उसके बाद मांदा बनाने के बाद जो है किसान भाई ये ध्यान रखें कि जो वो थरा लगाए हैं, जहां पे उन्होंने नर्सरी लगाई है मिर्ची की, उसका भी जो है किसान भाइयों को ध्यान देना आवश्यक है। वो जमीन से उठी हुई होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वहां पे वो पानी भर रहा है या गंदा पानी आ रहा है ना, उस तरह के अगर जगह रहती है तो उसके लिए क्या उपाय है कि आप जमीन से जो है 6-7 इंच ऊपर जो है मिट्टी का जो है एक बेड बना लें, उसके ऊपर जो है बीज की बुआई करें, वहां पे आप अपना थरा तैयार करें। थरे की भी सतत निगरानी करें, क्योंकि थरे में भी जो है रस चूसा कीट जो है लग जाते हैं, जो कि वहां से फिर मुख्य खेत में जब रोपाई की जाती है तो चले जाते हैं। तो अगर आपका थरा अगर हुष्ट पुष्ट होगा तो आपका जो खेत में लगने वाला जो पौधा है वो भी जो है स्वस्थ होगा। दूसरी चीज ये, आप जो है थरे में जो है पानी जो है वो बहुत ज्यादा भर के ना रखें, उससे बीज जो है सड़ जाता है ना, जिससे बीज गलन जो होता है वो हो जाता है, तो उसका भी आप ध्यान रखें। पानी भरने वाली जगह पे जो है थरा तैयार ना करें। और रोपाई हमेशा खेत में जो है आप 40 से 42 दिन के पौधा जो है उसकी रोपाई करें, उससे ज्यादा विलंब करने से जो है पौधे की जो जड़ें होती हैं वो जाके मुख्य खेत में जब आप रोपाई करते हैं तो ठीक से पकड़ नहीं पाती हैं। तो इस वजह से जो है दिन का अवश्य ध्यान रखें कि जो है 40-42 दिन का ही पौधा रहे अधिकतम, उसकी जो है आपको रोपाई कर देनी है। ये ध्यान रखें जो अगर ग्रसित पौधा है किसी रोग से या कीट से ग्रसित पौधा है तो उसको आप छांट के अलग कर दें। दूसरी चीज ये कि खेत में लगाने के बाद जो है उसमें सिंचाई की हमेशा ध्यान दें कि पानी ना भरे, और ड्रिप इरिगेशन अगर किसान भाई जो लगा सकते हैं तो ड्रिप इरिगेशन का जो है प्रयोग कर सकते हैं। पेंडी मेथलिन नामक एक खरपतवार नाशी आता है जिसका मिर्ची के खेत में जो है प्रयोग किया जा सकता है। ये प्री इमरजेंस एक खरपतवार नाशी है जो बुआई करने के बाद जैसे रोपाई किए हैं या बुआई किए हैं उसके 0-3 दिन के अंदर जो है किसान भाइयों को जो है इसको देना जरूरी होता है। धन्यवाद।
1: डॉक्टर SM अली हुमायूं से अभी आप सुन रहे थे मिर्च की उन्नत खेती विषय पर कृषि चर्चा। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रात 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम किसान सशक्तिकरण सुनिएगा रात 9:25 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा बसंत तिमोथी का सितार पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में सुबह 10 बजे आप सुनेंगे उस्ताद आमिर खां का गाया राग भटियार में ख्याल। सुबह 8:30 पर सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम। प्रस्तुति होगी प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर की। पर्यावरण और हम, ये वार्ता सुनिएगा सुबह 9 बजे। वार्ताकार होंगे अमर प्रकाश सावंत।

बजे और प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ शाम 5 बजे। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 9:15 पर, सुबह 10:30 पर, दोपहर 1:05 पर, दोपहर 2 बजे, दोपहर 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। सुरों का सफर, पुराने फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात 10 बजे। सुगम संगीत का लुत्फ उठाइएगा सुबह 9:40 पर और रात 8:15 पर। कलाकार होंगे कृष्ण कुमार पाटिल। सुगम संगीत के ही कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगी राजकुमारी। फोन करव छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11:05 पर। प्रस्तुति होगी तारकेश्वरी आसुदानी की। लोक रंजनी कार्यक्रम के तहत सुनिएगा कुछ छत्तीसगढ़ी गीत। दोपहर 12:30 पर कलाकार होंगे पंचराम चारण और साथी।

बिंदिया कार्यक्रम के तहत दोपहर 1:30 पर बहनें सुनेंगी आज की बात। स्वस्थ समाज के लिए संवाद जरूरी, श्रोताओं के पत्रों पर केंद्रित क्रम आपके अनुरोध से।

युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी शाम 5:10 पर। इसमें आज सुनेंगे क्रम आजकल, जो केंद्रित होगा विश्व महासागर दिवस पर। क्रम हेलो युवाणी और साथ ही होगा क्रम दृष्टिकोण। चौपाल कार्यक्रम आप सुनेंगे रोजाना की ही तरह शाम 7:21 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा फसल के अच्छा पैदावार पर बीजोपचार और महत्व। आज की सलाह का विषय होगा हल्दी अदरक के उत्पादन ले भरपूर कमाई। इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर गुंजन झा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: हरियाणा विधानसभया क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः, राज्यस्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभायाः अध्यक्षः हरविंदर कल्याणः, संपूर्ण देशस्य पञ्चदश विधानमण्डलानां पीठासीन उपपीठासीन अधिकारिणः, विधानसभायाः सदस्याः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणेन एनटीए इत्यनेन अस्मिन् मासे एकविंशति दिनांके आयोक्ष्यमाणस्य 26,000 नीट यूजी पुनः परीक्षायाः कृते परीक्षा नगर सूचना पत्रं प्रकाशितम्। पुनः परीक्षाः अपराह्ने 2 सायं 5:45 पर्यन्तं भारतस्य 150+500 नगरेषु, 14 विदेशेषु च भविष्यन्ति। एनटीए इत्यनेन स्पष्टीकृतं यत् परीक्षा नगर सूचना पत्रं प्रवेशपत्रं नास्ति, अपितु केवलं अभ्यर्थिनां परीक्षा केंद्र ज्ञानाय सूचना एव अस्ति। अभिकरणेन अभ्यर्थिनः प्रार्थिताः यत् ते परीक्षायाः प्रवेशपत्रस्य विमोचनस्य च विषये नवीनतमानां घोषणानां कृते स्वस्य आधिकारिक जालपटले अद्यतनीयाः भवेयुः। विश्वस्य बृहत्तमा सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वस्ति योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयन राज्येषु पश्चिम बंगाल राज्यं 37वां राज्यं भविष्यति। राज्ये एबीपीएम जय इत्यस्य कार्यान्वयनार्थम् अद्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणं पश्चिम बंगाल सर्वकारश्च सहमतिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यतः। नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रिणः जेपी नड्डायाः तथा पश्चिम बंगस्य मुख्यमन्त्रिणः शुभेन्दु अधिकारिणः उपस्थितौ एमओयू इत्यस्य हस्ताक्षरं भविष्यति। भारतस्य पूर्वोत्तर राज्यैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं द्विदिवसीय यात्रायै यूरोपीय संघस्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरम् आगमिष्यति। यूरोपीय संघस्य मतानुसारं चर्चाः तेषु विषयेषु केन्द्रिताः भविष्यन्ति यत्र यूरोप देशस्य तथा पूर्वोत्तरस्य च समानहितानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः श्वः नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् एलपीएमएस इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तन्त्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबन्धन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। भारतीय मल्ल क्रीडकाः ह्यः मंगोलियायाम् ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते 2 स्वर्णपदके 2 कांस्य पदके च विजितवन्तः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एबीपीएमजेएवाई को लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में एबीपीएमजेएवाई योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे।

0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। NTA ने कहा कि परीक्षा शहरों की जानकारी प्रवेश पत्र नहीं है, इसे केवल अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर M नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने घोषणा की कि कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार होंगे। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल चुका है। संघर्ष से होर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव पर बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर जुरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गोरेस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी की रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब सुनते हैं सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

स्वागत है ताजगी भरी नई सुबह में आप सबका। स्वीकार कीजिए हरजीत कौर का नमस्कार। श्रोताओं, दिन हो या रात, सबका अपना अपना समय तय है। सुबह उदित होता सूर्य दिन भर अपनी रोशनी बिखेर कर सांझ को ढल जाता है। रात होती है तो चांद सितारे रोशन हो जाते हैं। ग्रहों की इसी गतिशीलता के साथ बंधा है समूचा प्राणी जगत। स्वस्फूर्त ढंग से सभी अपनी दिनचर्या तय करते हैं और हर दिन सबका एक लक्ष्य होता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि हम अपनी दिनचर्या को नियमित कर लें तो जीवन यात्रा बहुत आसान हो जाती है और हम अपने लक्ष्य को साध लेते हैं। तो मित्रों, चुनौतियों का सामना करते हुए हमेशा अपने मकसद

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: श्रोताओं, अब सुनते हैं आज का विचार। आज हमारे विचारक हैं महात्मा गांधी। वे कहते हैं, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। महात्मा गांधी के इस विचार का अर्थ है कि हमारे आने वाले कल की नींव आज के कर्मों पर टिकी होती है। यदि हम आज अपने समय का सदुपयोग करें, मेहनत करें और सही निर्णय लें, तो हमारा भविष्य उज्ज्वल बन सकता है। केवल सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, उसके लिए वर्तमान में कार्य करना आवश्यक है। ये विचार हमें वर्तमान को महत्व देने और हर दिन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है।

श्रोताओं, आज है विश्व महासागर दिवस। ये दिवस हर वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को महासागरों के महत्व और उसके संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। महासागर पृथ्वी के लगभग 70% भाग को ढके हुए है और मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे हमें ऑक्सीजन, भोजन, ऊर्जा और जलवायु संतुलन प्रदान करते हैं। महासागर केवल जल का विशाल भंडार नहीं है, बल्कि लाखों प्रकार के जीव जंतुओं और वनस्पति का प्राकृतिक आवास भी है। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुद्रों की लहरें हमें प्रकृति की शक्ति, धैर्य और निरंतरता का संदेश देती है। लेकिन आज महासागर

कर कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्लास्टिक का कचरा, रासायनिक प्रदूषण, तेल रिसाव और जलवायु परिवर्तन समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रहे हैं। इसका असर समुद्री जीवों के साथ साथ मानव जीवन पर भी पड़ रहा है। यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। विश्व महासागर दिवस हमें ये अवसर देता है कि हम अपने कर्तव्यों को समझें और महासागरों की रक्षा के लिए संकल्प लें, प्लास्टिक का कम उपयोग करें, स्वच्छता के प्रति जागरूक और पर्यावरण संरक्षण की आदतें अपनाकर हम महासागरों को सुरक्षित रखने में योगदान दे सकते हैं। आइए इस विश्व महासागर दिवस पर हम सब मिलकर ये प्रण लें कि प्रकृति की इस अमूल्य धरोहर को स्वच्छ, सुरक्षित और संरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि स्वस्थ महासागर ही स्वस्थ पृथ्वी और बेहतर भविष्य की आधारशिला है।

श्रोताओं, आज पुण्यतिथि है भारतीय रंगमंच के एक ऐसे महान हस्ताक्षर की जिन्होंने लोक कला और आधुनिक थिएटर के बीच एक सशक्त सेतु का निर्माण किया। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध नाटककार, रंगकर्मी, निर्देशक और कवि हबीब तनवीर की। हबीब तनवीर का जन्म 1 सितंबर 1923 को रायपुर में हुआ था। उन्होंने भारतीय रंगमंच को एक नई पहचान दी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, लोक भाषा और लोक कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। उनके नाटकों में आम जनजीवन की सादगी, संवेदना और सामाजिक सरोकारों की झलक दिखाई देती है। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में चरणदास चोर, आगरा बाजार और मिट्टी की गाड़ी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन नाटकों ने भारतीय रंगमंच को नई दिशा दी और दर्शकों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया। हबीब तनवीर का मानना था कि कला तभी सार्थक है जब वह समाज और आम लोगों से जुड़ी हो। यही कारण है कि उनके नाटक केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहे, बल्कि समाज को सोचने और समझने की प्रेरणा भी देते रहे। 8 जून 2009 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी रचनात्मक विरासत आज भी भारतीय रंगमंच को प्रेरित कर रही है। वे केवल एक नाटककार नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना के सशक्त प्रतिनिधि थे। आइए उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें और भारतीय रंगमंच में उनके अमूल्य योगदान को याद करें।

श्रोताओं, आज जन्मदिन है हिंदी सिनेमा की प्रतिभाशाली और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक डिंपल कापड़िया का। अपनी स्वाभाविक अभिनय शैली, आकर्षक व्यक्तित्व और दमदार भूमिकाओं के कारण उन्होंने भारतीय फिल्म जगत में एक विशेष पहचान बनाई। डिंपल कापड़िया का जन्म 8 जून 1957 को हुआ था। उन्होंने बहुत कम उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा और अपनी पहली ही फिल्म बॉबी से अपार लोकप्रियता हासिल की। इस फिल्म में उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने खूब सराहा। उनकी मासूमियत और सहज अभिनय ने उन्हें रातों रात हिंदी सिनेमा का चर्चित चेहरा बना दिया। कुछ समय फिल्मों से दूर रहने के बाद डिंपल कापड़िया ने शानदार वापसी की और कई यादगार फिल्मों में अपनी अभिनय प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने भावनात्मक, गंभीर और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को बड़ी सहजता से निभाकर ये सिद्ध किया कि वे एक बहुमुखी कलाकार हैं। अपने लंबे फिल्मी सफर में उन्होंने अनेक लोकप्रिय फिल्मों में काम किया और कई पुरस्कारों से सम्मानित भी हुई। डिंपल कापड़िया का व्यक्तित्व केवल एक सफल अभिनेत्री तक सीमित नहीं है, बल्कि वे आत्मविश्वास, प्रतिभा और निरंतर आगे बढ़ते रहने की मिसाल भी हैं। आज भी उनकी अभिनय क्षमता और सशक्त अभिनय दर्शकों को प्रभावित करता है। उनके जन्मदिन के अवसर पर हम उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, छुट्टियों के दिन भला किसे अच्छे नहीं लगते। छुट्टियां यानी फुर्सत ही फुर्सत, मजा ही मजा। और छुट्टियां अगर बच्चों की हों तो फिर कहना ही क्या, फिर तो छुट्टियों का हर एक दिन उनका अपना दिन होता है, मतलब खूब धमाचौकड़ी और शरारतें। बच्चों के लिए छुट्टियां इसलिए भी खास होती हैं कि वे पढ़ाई की टेंशन से दूर हो जाते हैं और किताबों को हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते। अब आजकल प्रतियोगिता के इस दौर में हम लाख कोशिश करें कि बच्चे कुछ नया सीख ले, लेकिन बच्चों पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वे तो चाहते हैं कि कैसे भी हो, काश छुट्टियों के दिन कुछ और बढ़ जाएं। दरअसल ये बचपन होता ही ऐसा है, बिल्कुल चंचल। और फिर बच्चे तो बच्चे ठहरे, उनकी कल्पना की उड़ान पल में यहाँ तो पल में वहाँ। ऐसे में अगर बच्चों से उनकी ख्वाहिश पूछी जाए तो तपाक से यही मांग दोहराते हैं, काश छुट्टियां और बढ़ा दी जाएं।
1: अटकन बटकन दही चटोकन, मुसुआ मोटा रुपया खोटा, माला टूटी बेबी छोटी,
2: मम्मी कुछ भी खाए पर होती नहीं है मोटी।

श्रोताओं, रायपुर का ऐतिहासिक महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय छत्तीसगढ़ का प्रमुख पुरातात्विक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। ये संग्रहालय प्रदेश की समृद्धि ऐतिहासिक सांस्कृतिक और पुरातात्विक विरासत को संजोए हुए है। 8 जून से 12 जून तक हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह प्रदर्शनी। समय रहेगा सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। इस अवसर पर यहाँ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान ऐतिहासिक दस्तावेजों, दुर्लभ अभिलेखों तथा महत्वपूर्ण अभिलेखकीय सामग्री की प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिनके माध्यम से लोगों को ऐतिहासिक और विरासत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ऐसे आयोजन न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को इतिहास के महत्व से भी परिचित कराते हैं। ये अवसर हमें अपने अतीत को समझने, उससे सीखने और अपनी विरासत के संरक्षण के प्रति जागरूक होने का संदेश देता है।

श्रोताओं, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस प्रत्येक वर्ष आज के दिन यानी 8 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूक करना, इसके लक्षणों की जानकारी देना तथा इस बीमारी से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना है। ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि को कहा जाता है। ये ट्यूमर कैंसरयुक्त भी हो सकता है और गैर कैंसरयुक्त भी। समय पर पहचान और उचित उपचार से कई मामलों में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए इसके लक्षणों को समझना और आवश्यक होने पर चिकित्सकीय सलाह लेना महत्वपूर्ण है। आज चिकित्सा विज्ञान ने काफी प्रगति की है और आधुनिक तकनीकों के सहायता से ब्रेन ट्यूमर की जांच और उपचार पहले की तुलना में अधिक प्रभावी हो गया है। जागरूकता, समय पर जांच और सकारात्मक सोच इस बीमारी से मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस हमें ये संदेश देता है कि स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना, नियमित जांच करना और बीमारियों के बारे में सही जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही

इस बीमारी से संघर्ष कर रहे लोगों को हमारा सहयोग, संवेदना और हौसला भी उतना ही जरूरी है। आइए इस अवसर पर हम स्वास्थ्य जागरूकता का संकल्प लें और अपने परिवार तथा समाज को भी स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित करें।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: श्रोताओं, अब सुनते हैं ये सूचना 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की द्वितीय अवसर परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। जो विद्यार्थी किसी कारणवश अब तक अपना फॉर्म नहीं भर पाए, उनके लिए आवेदन करने की तिथि 10 जून 2026 तक बढ़ा दी गई है। आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे और छात्र विशेष विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। समाचारों के लिए अब रुख करते हैं आकाशवाणी दिल्ली का।
1: वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ोरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
4: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काशफी नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।

0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने से विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसुलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
4: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा

0: 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
1: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दो दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
3: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने दो मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश

0: कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, यह सिर्फ एक धुन नहीं है, यह वह ध्वनि है जिसने पीढ़ियों को जगाया है। यह धुन कई लोगों के लिए सुबह का पर्याय बन गई। जैसे ही यह स्वर कानों में पड़ते हैं, समय की घड़ी मानो पीछे लौटने लगती है, यादों का एक विशाल संसार खुल जाता है। ये है आकाशवाणी, भारत की आवाज, और आज ये आवाज अपनी 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रही है। 8 जून 1936 भारतीय प्रसारण के इतिहास में यह एक ऐसा दिन था जब एक नए युग का जन्म हुआ। इसी दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और भारत में सार्वजनिक रेडियो प्रसारण को एक नई पहचान मिली। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी। साल था 1927, जब रेडियो स्वयं एक अजूबा था और आवाज का हवा के रास्ते सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता था। बंबई और कलकत्ता से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने प्रसारण शुरू किया। यह भारत में रेडियो प्रसारण का पहला संगठित प्रयास था। हालांकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह प्रयोग अधिक समय तक नहीं चल पाया और 1930 में यह कंपनी बंद हो गई। लेकिन विचार नहीं रुका, आवाज का यह सफर नहीं थमा। 1 अप्रैल 1930 को भारत सरकार

0: आपने रेडियो सेवा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना हुई। फिर आया 8 जून 1936, जब भारत के रेडियो इतिहास को उसका स्थायी नाम मिला, ऑल इंडिया रेडियो। संयोग देखिए, जिस सिग्नेचर ट्यून को बाद के दशकों में आकाशवाणी की पहचान बनना था, उसका संगीत भी उसी दौर में तैयार हो रहा था। इस धुन के रचयिता थे वाल्टर कॉफमैन, एक यहूदी संगीतकार जो नाजी यूरोप से पलायन कर भारत आए थे। उन्होंने भारतीय राग शिव रंजनी पर आधारित इस अमर धुन की रचना की और प्रसिद्ध वायलिन वादक महली मेहता ने इसे अपने सुरों से सजाया। किसने सोचा होगा कि एक विदेशी संगीतकार द्वारा रची गई यह धुन आगे चलकर भारत की सबसे परिचित ध्वनियों में से एक बन जाएगी। और फिर आया वह शब्द जिसने इस संस्था को भारतीय आत्मा से जोड़ दिया, आकाशवाणी। कहा जाता है कि 1930 के दशक में महान विद्वान और संगीताचार्य मैसूर वासुदेवाचार्य ने पहली बार आकाशवाणी शब्द का प्रयोग किया। यह नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि वर्ष 1957 में ऑल इंडिया रेडियो ने इसे आधिकारिक रूप से अपना लिया। पिछले 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल गीत, कार्यक्रम या समाचार ही नहीं सुनाए, बल्कि राष्ट्र की स्मृतियों को संजोया है। स्वतंत्रता की मध्यरात्रि से लेकर आधुनिक भारत की उपलब्धियों तक, संकट की घड़ी से लेकर उत्सव के क्षणों तक आकाशवाणी ने हर युग को अपनी आवाज दी है। आकाशवाणी ने स्वयं को देश के सबसे विश्वसनीय संचार माध्यमों में स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आकाशवाणी ने अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को चरितार्थ करते हुए शिक्षा, सूचना और मनोरंजन तीनों ही क्षेत्रों में सार्थक भूमिका निभाई है।
1: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को जय जोहार। साथियों, आज आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी अपनी स्थापना के इन 90 वर्षों के दौरान देश की विकास यात्रा में हम सफर रहा है। इसने सदैव बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने ध्येय वाक्य को चरितार्थ करते हुए सूचना, शिक्षा और मनोरंजन तीनों ही क्षेत्र में सार्थक भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ में लोक गीतों और लोक संगीत की शानदार परंपरा रही है। इस लोक कला को संजोने और इसे मंच प्रदान करने में आकाशवाणी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ के विकास, सुशासन और लोक कल्याण की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में आकाशवाणी का योगदान अत्यंत सराहनीय है। आकाशवाणी एकमात्र माध्यम है जो छत्तीसगढ़ में हिंदी और छत्तीसगढ़ी के साथ आदिवासी जनों की बोली हल्बी तथा गोंडी में भी समाचार तथा समसामयिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। इससे आदिवासी भाई बहनों को उनकी अपनी बोली में देश और प्रदेश की जानकारी मिल रही है। साथ ही वे केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में भी जागरूक हो रहे हैं। प्रदेश से नक्सलवाद की समस्या को समाप्त करने में आकाशवाणी की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। आकाशवाणी एकमात्र माध्यम है जिसकी पहुंच राज्य के दूर दराज, दुर्गम और वन क्षेत्रों तक है। मैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।
0: छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आकाशवाणी हमारे साथ हमेशा मौजूद रहा है। आकाशवाणी संचार का सबसे सस्ता, सुलभ और सुगम माध्यम है।
2: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को राम राम, जय जोहार। हम सब जानते हैं कि पिछले 90 साल से आकाशवाणी हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। सवेरे उठने से लेकर रात सोने तक हर समय आकाशवाणी हमारे साथ मौजूद होता था, और मनोरंजन की बात हो, ज्ञान की बात हो, कला संस्कृति की बात हो, जानकारियों की बात हो, मार्गदर्शन की बात हो, हर जगह हर समय आकाशवाणी ने हमारे दिल में, मन में जगह बनाकर महत्वपूर्ण योगदान किया है। संचार का सबसे सस्ता और सुलभ, सुगम

0: माध्यम हमारा आकाशवाणी रहा है, आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ, आम लोगों के लिए मददगार रहा है, तो मैं आकाशवाणी के पूरे परिवार को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब हमारे जीवन के अटूट कड़ी बनकर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आप चले हैं। हमारे जीवन का हिस्सा रहा है आकाशवाणी। जब बचपन में सवेरे भक्ति संगीत से प्रारंभ होता था और फिर गांव में तो समाचार का और दूसरा तरीका नहीं था, समाचार सुनना सवेरे भक्ति संगीत शास्त्रीय संगीत से प्रारंभ होकर रात के शास्त्रीय संगीत तक हर कदम आकाशवाणी का साथ रहा है। क्रिकेट का शौकीन रहा हूं तो क्रिकेट की कमेंट्री सुनने का बहुत आनंद लिया है। खेत खलिहान जाएं तब भी रेडियो ट्रांजिस्टर साथ होता था और सही में हर कदम पर साथ निभाया है आकाशवाणी ने। तो और मैंने अपने जीवन में बहुत उपयोग किया है आकाशवाणी का, बहुत लाभ लिया है, ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए, संगीत के लिए और जानकारी के लिए। तो ये हमारे जीवन का अटूट हिस्सा रहा है और मुझे आकाशवाणी का बहुत लाभ मेरे जीवन में मिला है।
1: उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आकाशवाणी ने 90 वर्षों में जन जन के मन को छुआ है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के उन्मूलन में भी आकाशवाणी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: आकाशवाणी को ही सुनते सुनते तो जीवन इतना आगे बढ़ा है। बचपने से मुझे याद है, मैं अपने बुआ के साथ, अपनी बड़ी दीदियों के साथ बैठा रहता था। आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा साधन होता था कि हमको दूर दराज के क्षेत्रों की कुछ सूचनाएं मिलती थी। वही एक ऐसा साधन होता था जो मनोरंजन का सबसे बड़ा आधार होता था। आकाशवाणी ने 90 वर्ष में जन जन के मन को छुआ है। आकाशवाणी ने अभी हमारे नक्सल उन्मूलन की दिशा में भी वो कर दिखाया है जिसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। जंगल के अंदर नक्सली सिर्फ रेडियो ही सुना करते थे और आपने हमारे एक आग्रह पर हमारे 15% जो जगदलपुर आकाशवाणी केंद्र है उसमें 15% गोंडी या स्थानीय भाषा के लिए समय था, उसको 50% तक बढ़ाया, इसके लिए आभार है। उसके बाद उन 50% बढ़े हुए में नक्सल उन्मूलन की दिशा में सरेंडर्ड जो पुनर्वासी जो नक्सली थे उनके आपने इंटरव्यूज लगातार दिखाए, उनके लिए भी आपका आभार और अभिनंदन है। और नक्सलियों ने जब कहा कि आकाशवाणी के माध्यम से हमको रेडियो संदेश दिया जाए कि हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, और मैंने रेडियो संदेश अपना रिकॉर्ड करके भेजा और आपने चलाया, उसके बाद 3 बड़े पुनर्वास हुए, ये MMC जोन के 3 पुनर्वास थे, तो मैं उसके लिए भी और ऐसे अनेक अभियानों में देश के साथ समाज के साथ खड़े होने के लिए मैं आकाशवाणी के इन 90 वर्ष पूर्ण होने पर सारे ही देश की जनता को और विशेष रूप से आकाशवाणी को ढेर सारी बधाइयां देता हूं।
1: आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता उसकी विश्वसनीयता, व्यापक पहुंच और जन सरोकारों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता है। आज आकाशवाणी देश के सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों तक अपनी पहुंच रखता है। प्रसारण की भाषाई विविधता, व्यापक पहुंच और बहुआयामी कार्यक्रमों के आधार पर आकाशवाणी विश्व के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में अग्रणी स्थान रखता है। आज इसकी होम सेवा के अंतर्गत देश भर में 479 प्रसारण केंद्र कार्यरत हैं, जिनकी पहुंच भारत के लगभग 92% भौगोलिक क्षेत्र और 99% से अधिक जनसंख्या तक है। आकाशवाणी 23 भाषाओं और 179 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण कर देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान करता है। यही व्यापकता और समावेशी दृष्टिकोण इसे देश के सबसे विश्वसनीय जनसंचार माध्यमों में से एक बनाता है। आकाशवाणी ने भारत की विविध भाषाओं, बोलियों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बस्तर के गांधी के नाम से मशहूर और समाज सेवा के लिए वर्ष 1992 में पद्मश्री से सम्मानित धर्मपाल सैनी ने कहा कि आकाशवाणी के समाचार सच्चे होते हैं। श्री सैनी का जन्म जून 1930 में हुआ था और उनकी उम्र अब करीब 96 वर्ष हो चुकी है।
3: आकाशवाणी का मेरा जीवित

संबंध है वो चिंतन से शुरू होता है। आकाशवाणी के जो अधिकारी गण हैं वो मेरे पास आया करते थे और बातचीत तो खूब करते थे वो, लेकिन आखिर में मुझसे जो संक्षेप में जो आकाशवाणी के लिए लिया करती थी मेरी बातचीत, वो अक्सर शिक्षा के ऊपर और खेलकूद और जनता उसका कैसा रिस्पांस कर रही है इससे संबंध हुआ करते थे। तो मैं अंदर जंगलों में भी बहुत घूमता था, लेकिन मैं देखता था कि लोग बाग आकाशवाणी को बड़े चाव से सुनते हैं और गांव गांव में कहीं भी गया हूँ तो मेरे जरूर कहते थे कि एक ये डब्बा हमको खरीदवा दीजिए। मैंने कहा क्या करोगे डब्बे से? अरे बोले ये बहुत बात करता है, अच्छी अच्छी बात करता है, हमारे गांव की बात भी आती है। इस तरह से मैं उनके साथ में आकाशवाणी के संबंध में मेरी ये पहला मुलाकात गांव में हुआ करती थी। कभी कभी किसी भी गांव में गया तो उन्हें आकाशवाणी के डब्बों को खरीदने की बात मेरे से अवश्य की है। दूसरा मैं उनसे पूछता था तुमको इसमें से क्या मिल रहा है? बोला इसमें थोड़े से उसको ज्ञान कहते हैं वो मिल रहा है, ये बातें बहुत बताता है, विचार करता है, इतनी कोई तो हमसे बात करता ही नहीं है, हमसे तो जो

0: से संबंध हुआ करते थे। तो मैं अंदर जंगलों में बहुत घूमता था, लेकिन मैं देखता था कि लोग बाग आकाशवाणी को बड़े चाव से सुनते हैं, और गांव-गांव में कहीं भी गया हूँ तो मेरे जरूर कहते थे कि एक ये डब्बा हमको खरीदवा दीजिए। मैंने कहा क्या करोगे डब्बे से? अरे बोले बहुत बात करता है, अच्छी अच्छी बात करता है, हमारे गाँव की बात भी आती है। इस तरह से मैं उनके साथ में आकाशवाणी के संबंध में मेरी ये पहला मुलाकात गांव में हुआ करती थी। कभी कभी किसी भी गांव में गया तो उन्हें आकाशवाणी के डब्बों को खरीदने की बात मेरे से अवश्य की है। दूसरा मैं उनसे पूछता था तुमको इसमें से क्या मिल रहा है? बोला इसमें थोड़े से उसको ज्ञान कहते हैं वो मिल रहा है। ये बातें बहुत बताता है, विचार करता है, इतने कोई तो हमसे बात करता ही नहीं है, हमसे तो जो बातचीत होती है इस डब्बे के द्वारा ही हमको मालूम पड़ता है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम अपने घर में रहते हैं तो जो कुछ हमको ज्ञान मिलता है या हमारा दुनिया से जानकारी होती है वो इसी के द्वारा होती है। ये उनका पहला उत्तर हुआ करता था। दूसरा मैं कहता था भाई तुमको इसमें समय पसंद क्या आता है? बोला ये समाचार बहुत देता है, और इसके समाचार सच्चे होते हैं, समय बड़ी बात ये है। जैसे दूसरे लोग समाचार देते हैं तो उसमें झूठ सच मिला के देते हैं, लेकिन ये एक साधन ऐसा है कि जो सच्चे से सच्चा समाचार जैसा होता है वैसा के वैसा ही देने की कोशिश करता है। हमको इस पर होगा विश्वास बहुत होता है।
1: समाचारों के प्रसारण की बात करें तो दिल्ली केंद्र से पहला न्यूज बुलेटिन 19 जनवरी वर्ष 1936 को प्रसारित हुआ था। आज आकाशवाणी 92 भाषाओं और बोलियों में रोज 600 से अधिक न्यूज बुलेटिन प्रसारित करता है। इसके अलावा अरबी, फ्रेंच, पश्तो और चाइनीज सहित 10 से अधिक विदेशी भाषाओं में भी आकाशवाणी द्वारा समाचार प्रसारित किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अजय कुमार मंडावी को वर्ष 2023 में कला के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अजय मंडावी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सैकड़ों युवाओं को लकड़ी की नक्काशी और काष्ठ कला का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और आजीविका से जोड़ा है। अजय मंडावी ने कहा कि आकाशवाणी पहले जितना महत्वपूर्ण था उतना ही आज भी है।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से मेरा नाता उस उम्र से है जब मुझको ये समझ नहीं थी कि वो बड़ा सा रेडियो के अंदर कोई बैठ के गाते होंगे, छोटे छोटे लोग, ये ऐसा सोचता था मैं। और भाई साहब जब सेल चेंज करने के लिए जाते थे तो मैं उनके पास जाके पूछता था कि वो लोग कहाँ गए जो गाना गाते हैं उसके अंदर। तब से ये सिलसिला शुरू हुआ 1970 से। 1993 में जब मैं जॉब में गया छोटे से गांव में, मेरे एक मित्र हैं आरिफ भाई, तो उसने कहा कि यार एक छोटा सा रेडियो खरीद ले वो सबसे अच्छा है। तो रेडियो उस समय खरीद के मैं अपने साइट पे लेके चलता था। युवाओं के लिए कार्यक्रम चलता था जिसमें नॉलेजेबल चीजें बताई जाती थी, तो वो हर काम छोड़ के वो सुनते थे। आकाशवाणी आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तब था, और आज भी मुझको प्रिय है। मैं रेगुलर सुनता हूँ इन सब चीजों को, या फिर हमारे घर में सुबह एक बार रेडियो चालू होता है तो वो कंटिन्यू रहता है। और जो प्रधानमंत्री ने मन की बात शुरू की और सब लोगों का जिक्र करना शुरू किया, तो ये पहली बार जब मैं सुना तो मुझको लगा कि यार मेरा जिक्र कब होगा। लेकिन ये सौभाग्य रहा कि 2023 में मेरा भी जिक्र हुआ मन की बात में। आकाशवाणी से बहुत सारी नॉलेज की चीजें हमको सुनने को मिलती है।
1: राजनांदगांव के रहने वाले डॉक्टर पुखराज बाफना भी साल 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। डॉक्टर बाफना ने कहा कि आकाशवाणी जन जन की आवाज है। उन्होंने कहा कि वे बचपन से ही आकाशवाणी सुनते आ रहे हैं और आज भी इसके फैन हैं।
3: मैं हूं डॉक्टर पुखराज बाफना, पद्मश्री, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। किसी भी संस्था के 90 वर्ष पूर्ण करना एक स्वर्णिम शताब्दी का इतिहास बनाता है। आज मेरी उम्र 80 साल की है। हमने बचपन से ही आकाशवाणी को सुना, वो जन जन की आवाज थी, चाहे वो पुराने गीत हो, समाचार हो, मनोरंजन का और समाचार पाने का एकमात्र साधन यही था। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग चाव से आकाशवाणी सुनते हैं। मैंने स्वयं आकाशवाणी में, दूरदर्शन में अनेक कार्यक्रम दिए, खासतौर पर किशोर बच्चों के लिए, ट्राइबल एरिया क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी मैंने बहुत कार्यक्रम दिए। आज भी मैं आकाशवाणी का फैन हूँ, और आज की तारीख में हम जब भी यात्रा करते हैं तो कार में हमारा अप्रतिम साथी आकाशवाणी ही होता है। बहुत शुभकामनाएं 90 वर्ष पूर्ण कर रहा आकाशवाणी, उसके लिए अनेकानेक मंगल कामनाएं।
1: आज आकाशवाणी देश के सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों तक अपनी पहुंच रखता है। शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, नाटक

0: वार्ताओं, कृषि, युवा और शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी ने समाज के विभिन्न वर्गों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। किसानों के लिए प्रसारित कार्यक्रमों ने कृषि संबंधी जानकारी और आधुनिक तकनीकों के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपनी विश्वसनीयता और जनोन्मुखी प्रसारण सेवा के बल पर आकाशवाणी आज करोड़ों श्रोताओं के लिए सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। खासकर प्राकृतिक आपदाओं के समय इसकी भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण और भरोसेमंद मानी जाती है। नारायणपुर के गढ़बेंगाल के रहने वाले जनजाति वाद्यंत्र निर्माण और काष्ठ शिल्प कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पद्मश्री से सम्मानित पंडी राम मंडावी अपने गांव के चबूतरे पर पेड़ की छांव के नीचे बैठकर आकाशवाणी के सफर को याद करते हुए बताते हैं कि वे शुरू से ही आकाशवाणी द्वारा हल्बी और गोंडी में प्रसारित कार्यक्रम सुनते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी इसलिए भी पसंद है क्योंकि रेडियो को लेकर कहीं भी जाया जा सकता है।
1: मैं तो बचपन से ही सुन रहा हूँ, जब से आकाशवाणी वहाँ जगदलपुर में खुला, मैं एक तो सुनता ही था। मैं ये हम जो गांव कार्यक्रम आता था जगदलपुर से, हल्बी में, गोंडी में, और वो सब बताते थे वहाँ से, धान में कौन सा दवाई कीड़ा उड़ा होने से छिड़कना है, सब्जी में क्या छिड़कना है, ये सब बताते थे। रेडियो था तो मैं शाम को चालू करता था, हमारा गोंडी का गाना भी आता था, हल्दी का गाना वाना आता था, वो लोग दौड़ दौड़ के मेरे पास आते थे रेडियो सुनने के लिए। एक कार्यक्रम देता था हमारा गोंडी में, बहुत पसंद आता था आकाशवाणी जगदलपुर से। हर किस्म का टीवी वगैरह आया है, रेडियो का क्या है, मतलब देश देहात में रेडियो को अपन कहीं बैल चराने ले गए, उधर भी पकड़ के गए, कहीं काम कर रहे हैं, लकड़ी का हम लोग काम करते हैं, वहाँ भी चालू करके अपन सुन सकते हैं, काम कर सकते हैं, इसलिए ये अच्छा है।
0: इसी तरह इस वर्ष पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए रामचंद्र गोडबोले ने कहा कि आकाशवाणी का उनकी पीढ़ी में बहुत महत्व रहा है और पुराने समय में आकाशवाणी ही समाचार और मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करता था।
2: नमस्कार, मैं रामचंद्र गोडबोले, मैं बारसूर जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ राज्य, यहाँ मैं रहता हूँ और यहाँ हम लोग वनवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए कुपोषण और बाकी मेडिकल प्रोजेक्ट चलाते हैं। आकाशवाणी का, हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो पीढ़ी है, उसमें आकाशवाणी का बहुत ज्यादा महत्व था क्योंकि उस समय टेलीविजन तो था ही नहीं, आकाशवाणी से ही हम लोग समाचार, जो मनोरंजन गीत सब सुनते थे। कुछ यादें आकाशवाणी के बारे में ऐसी, एक आपातकाल लागू हो गया, वो समाचार हम लोगों ने आकाशवाणी से ही सुना था और वो सारा दौर में बार बार समाचार सुनना, आगे क्या हो रहा है भारत भर में, ये सब जानने का केवल एक ही जरिया था, आकाशवाणी और समाचार पत्र। तो आकाशवाणी उस समय सुनते थे। 11 बजे समाचार आता था, 11 बजे ऐसा समाचार सुना मैंने, अचानक समाचार आया कि इंदिरा जी की हत्या हो गई है, तो वो समाचार जैसे सुना एकदम स्तब्ध रह गए। और मनोरंजन की इसमें आकाशवाणी और का बहुत बड़ी भूमिका है। मेरी आयु 12-13 साल की होगी, 50-51 साल हो गए, आज भी मैं आकाशवाणी सुनता हूँ। दोपहर के गाने सुनना, शाम का गीत वो सुनना, तो बहुत आनंद आता है। शाम को रेडियो में समाचार सुनना, आकाशवाणी के सब लोगों को समाचार सुनना है, और फिर समाचारों के ऊपर हमारे दादाजी और वो बच्चे, उनके बीच में संवाद चलता है। ऐसी आकाशवाणी की बहुत सारी यादें हैं, तो आकाशवाणी का तो आभारी व्यक्त करता हूँ इतने सालों के लिए। जीवन के अपने आनंद के क्षण ये आकाशवाणी ने हमको दिए हैं और आज भी वो हम आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी, आधुनिक तकनीक, FM प्रसारण, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप और इंटरनेट स्ट्रीमिंग के माध्यम से नई पीढ़ी के श्रोताओं से भी लगातार जुड़ रहा है। समाचारों की निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता ने इसे आम जनता के विश्वास का प्रतीक बनाया है। खेल जगत में छत्तीसगढ़ को पहचान दिलाने वाली पद्मश्री से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सबा अंजुम ने कहा कि आकाशवाणी ने हमेशा आगे बढ़ने का मौका और सम्मान दिया है।
3: आकाशवाणी भारत का सबसे पुराना और प्रमुख सार्वजनिक रेडियो नेटवर्क है, जो शिक्षा और खेल और मनोरंजन के लिए प्रमुख माना जाता है। कार्यक्रम प्रसारित कर देश के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाता है और अपनी सादगी के लिए जाना जाता है। मेरे लिए आकाशवाणी का ये महत्व है कि जब

0: खेल के आया हूँ। पहला मतलब जो स्टार्टिंग एक खिलाड़ी के लिए होना चाहिए, आकाशवाणी हमेशा आगे बढ़ने का मौका दिया है, हमारी बातें सुना है, सम्मान दिया है खेल के क्षेत्र में। और जब भी मैं खेल के आई हूँ तो मैं अपने खेल को आकाशवाणी से साझा करी हूँ, टीम के साथ हमने कैसा खेला, हमारी जीत कैसी हुई। और हर खिलाड़ियों को आकाशवाणी पूछता है, आगे बढ़ता है, जिससे हर खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस भी आता है कि भाई हम इतना खेल के आ रहे हैं तो हमें कहीं मौका मिलता है अपनी बात कहने का। तो आकाशवाणी मेरे जैसे हर खिलाड़ियों को, मुझे तो दिया ही दिया, और हर खिलाड़ियों को मौका देता है और उनकी बातों को पूरे देश में सुनाता है। तो मैं आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, वो इसी तरह खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते रहे।
1: समाज सेवा के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हो चुकी शमशाद बेगम ने कहा कि आज इतने संचार माध्यम होने के बावजूद आकाशवाणी हर वर्ग के लोगों में लोकप्रिय है।
2: मैं पद्मश्री शमशाद बेगम गुंडरदी जिला बालोद की रहने वाली हूँ। आप सभी को जय जोहार। आकाशवाणी कार्यक्रम मैं बचपन से ही सुनती आ रही हूँ। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में स्वरोजगार से जुड़ी मेरी बहनों की कहानी और किसान भाइयों के लिए नई नई तकनीकी जानकारी, ये सब भी मुझे बहुत पसंद आती है। आज संचार के इतने माध्यम होने के बावजूद भी आकाशवाणी हर वर्ग के लोगों में लोकप्रिय है। गांव-गांव में आज भी लोग आकाशवाणी कार्यक्रम की ज्ञानवर्धक जानकारियों को और मनोरंजक बातों को सुनते हैं। मैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ।
1: वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित लोक और सूफी गायक मदन चौहान ने कहा कि आकाशवाणी गांव-गांव तक समाचार से लेकर गीत संगीत और विभिन्न कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाता रहा है।
3: आकाशवाणी अपने छत्तीसगढ़ का एक सपना है, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ राज्य था। तो उस जमाने में जब आकाशवाणी यहाँ आया और शुरू में एकदम आकाशवाणी का जो टावर आया, टावर आके जो खमतराई में लगा, क्योंकि पहले स्टूडियो नहीं था तो वहीं करते थे रिकॉर्डिंग उस जमाने में। तो हम लोग जब संगीत के क्षेत्र में उस समय उभरते हुए लोग थे हम लोग, तो हम लोगों को पहला कार्यक्रम मिला वहाँ। और हमसे पहले हमको पता लगा कि कुछ माह पहले भेरे स्टील प्लांट के लिए गीत बनाए थे, उसको आकाशवाणी रायपुर रिकॉर्ड करके प्रेजेंट किया था। उस समय के गायक थे रहमान शरीफ थे। उसके बाद सेकेंड रिकॉर्डिंग हम लोगों की, तो उस जमाने में जो हम लोगों का प्रसिद्ध हुआ आकाशवाणी से गाना, चना के दार राजा चना के दार रानी, ये एकदम शुरुआती दौर का ही है। एकदम आकाशवाणी रायपुर के दरवाजे के पास से जो लोग गुजरते थे तो सोचते थे कि हमको कब यहाँ चांस मिलेगा। आकाशवाणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं दूंगा। आकाशवाणी की शुरुआत अच्छे दौर में हुई थी, जब वो एक ऐसा दौर था कि एक माध्यम यही था अपना आकाशवाणी, जो गांव-गांव तक हर चीजों को, समाचार से लेकर जितनी भी कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट होते हैं उसको लोगों को सुनने का मौका मिलता था। आकाशवाणी से गाते गाते पद्मश्री तक पहुंचा, वो एक ऐसा दौर था, शुरुआती दौर था हम लोगों का। इतने सारे मुकाम तय करके लोकगीत, सुगम संगीत, गीत गजल भजन सब चीजों को सीखकर आज इस मुकाम तक हम पहुंचे। मेरे नजरिए से आकाशवाणी पहले भी था और आज भी है और सदा रहेगा।
1: साल 2012 में पद्मश्री से सम्मानित फुल बासन बाई यादव ने कहा कि आज भी आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों और समाचारों को गांव गांव तक सुना जाता है।
4: जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम फुलवासन भाई यादव है। हमारे आकाशवाणी आज 90 साल पूरा कर चुके हैं और वो आकाशवाणी में अपन बचपन के याद हो, चाहे किसान के बात हो या महिला मन के बात हो, लगातार गांव-गांव मन में सुनेल मिलते, देखेल मिलते। आज भी गांव के महिला मन, किसान भाई मन, बुजुर्ग मन हाँ रेडियो सुनते। और मैं तो खुद आकाशवाणी के दोस्त है, मैं स्वयं वहाँ गए हूँ और साथ साथ में रेडियो हमारा गाड़ी में भी हमारे लगातार समाचार के बात हो या स्वास्थ्य के बात हो या शिक्षा के बात हो या महिला मन के, महिला सशक्तिकरण के बात हो, लगातार नया नया चीज मिलते और वस्ताओं में आकाशवाणी हम सबके शान बान हरे। और एक से अपन आप लोग भी महसूस होते कि हम दुनिया की चीज रेडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। आप समस्त आकाशवाणी के पूरा तीव्र गाढ़ा गाढ़ा बधाई शुभकामना, जो 90 साल पूरा करना ही बहुत बड़ी बात है और लगातार ऐसे ही आगे बढ़ते रहा है, दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ते रहा है।
1: दुर्ग जिले के रहने वाले पंथी लोक नर्तक और कलाकार पद्मश्री सम्मान पा चुके राधेश्याम बारले ने कहा कि बहुत सारे कलाकारों को आकाशवाणी के माध्यम से देश और दुनिया में प्रसिद्धि मिली है।
5: मैं राधेश्याम बारले पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के निवासी हरा, जो कि मैं बचपना से आकाशवाणी रेडियो ला सुना तावत था हमारे रायपुर आकाशवाणी केंद्र ला। हम जब नान नान बचपना में रहा छोटे छोटे तो हमारे घर बड़े वाले रेडियो रहा है, तुलसी चौरा में बड़ा है।

0: सब कुछ घर भर के रेडियो लसुनन, लेकिन 1972 से लगातार मैं आकाशवाणी के श्रोता रहा, आकाशवाणी लसुनता हूँ और आकाशवाणी के बहुत सारे कार्यक्रम फोन इन फरमाई से लोक रंजनी कार्यक्रम के मैं दीवाना रहा हूँ। हमेशा सुबह शाम 12:30 बजे जैसे ही आकाशवाणी चालू है वैसे ही रेडियो चालू करके तुरंत बैठ जाऊँ। शाम के 7:20 भी लोक रंजन के कार्यक्रम में सुनत रहन, फोन इन फरमाइसी कार्यक्रम में सुनन और बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे कलाकार भी आकाशवाणी के माध्यम से देश से दुनिया देखे पर मिले है। जैसे स्वर्गीय देवदास बंजारे जी, अमृता बारले, पद्म भूषण डॉक्टर त्रिजन भाई, झाड़ू राम देवगन है, स्वर्गीय पूनाराम निषाद जैसे कलाकार मल्ला आगे बढ़ाए के माध्यम हमारा आकाशवाणी हरे। मैं खुदे आकाशवाणी के भी हाई ग्रेड के कलाकार हरा, मुझे सैकड़ों गाना आकाशवाणी रायपुर के माध्यम से रिकॉर्डिंग हो है जो देश दुनिया में बजे है। और मैं तो कहूँ आकाशवाणी है ओरिजिनल स्वर के स्वर ला छान करके निकालते है कलाकार मल्ला देश से दुनिया में बगड़ा के काम हमारा आकाशवाणी प्रसार भारती के करे। मैं आकाशवाणी ला बहुत बहुत धन्यवाद और प्रसार भारती ला बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता, धन्यवाद।
1: आज जब आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे कर रहा है तब यह केवल एक प्रसारण संस्था की वर्षगांठ नहीं है बल्कि उस भरोसे, उस विरासत और उस आवाज का उत्सव है जिसने पीढ़ियों को एक सूत्र में बांधे रखा है। बदलते समय और तकनीक के साथ कदम ताल करते हुए आकाशवाणी आज भी जन जन की आवाज और राष्ट्र की धड़कन बना हुआ है।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति थी प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर की। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं वार्ता। विषय है पर्यावरण और हम। वार्ताकार है अमर प्रकाश सावंत।
1: पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ किसी भी जीव व निर्जीव के चारों ओर का वातावरण होता है। यह बात अलग है कि वह किस प्रकार का है, जैसे जलीय, थलीय एवं वानस्पतिक। पर्यावरण मानव के साथ कई रूपों में जुड़ा है। मानव का प्रारंभिक संबंध सूत्र प्रकृति के साथ पहले आत्मीयता का था। अब विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सभ्यता के विकास के युग में इतना बदल गया है कि वह उसे मात्र दोहन का स्रोत समझने लगा है। धीरे धीरे भौतिकवाद और उपभोक्ता संस्कृति की तरह प्रकृति के संसाधनों का इतना दोहन होने लगा है कि जनसंख्या की वृद्धि के साथ प्राकृतिक संसाधन समाप्त होते जा रहे हैं और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण के साथ पर्यावरण विकृत होता जा रहा है। हमारी यह पृथ्वी जो विभिन्न तत्वों के संतुलन पर आधारित है और इको तंत्र की पारस्परिक व्यवस्थाओं से बंधी है, जब यह व्यवस्था खंडित होती है तो उसके भयंकर परिणाम होते हैं, जिनका कुछ कुछ एहसास आज हमें होने लगा है। भूचाल, ज्वालामुखी विस्फोट, अवृष्टि, अतिवृष्टि, तूफान, सूखा, मरुस्थलीकरण, जल स्रोतों का सूखना, जीवों और पादपों की नई प्रजातियां लुप्त होना, बीमारियां, अकाल, भूस्खलन, जल और वायु का प्रदूषण सब इसके उदाहरण हैं। परिवर्तन वातावरण की मूलभूत विशेषता है। कुछ परिवर्तन शीघ्रता से हो जाते हैं, जबकि कुछ हजारों वर्षों का समय लेते हैं। परिवर्तन का प्रभाव पूरे तंत्र के साथ साथ उसके अन्य अंगों पर भी अवश्य दिखाई देता है। पर्यावरण बदलाव के प्राकृतिक तथा मानव जनित दोनों कारण हैं। अधिकांश प्राकृतिक परिवर्तन एक नियमित क्रमानुसार होते हैं, अतः उनके परिणामों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण जलवायु में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत न केवल व्यापक एवं गंभीर बल्कि तीव्रता से होते हैं। अतीत के हिमयुग प्राकृतिक कारणों से हुए पर्यावरण बदलाव के उदाहरण हैं। 18,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हिम अपनी पराकाष्ठा पर था। वैज्ञानिकों ने अतीत की जलवायु का अनुमान हिमशैलों, परागकण के जीवाश्मों, वनस्पति प्रजातियों और पुराने वृक्षों के काष्ठीय वलयों से लगाया है। हिमशैलों में व्याप्त वायु के विश्लेषण से

वैज्ञानिकों ने हिम के बनने के समय का तापमान ज्ञात किया है। इसी तरह छोटे समुद्री जीवों के खोलों में पाए गए ऑक्सीजन समस्थानिकों से समुद्री जल का तापमान ज्ञात किया गया है। पर्यावरण बदलाव एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन आज कठिनाई की बात यह है कि मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप इन परिवर्तनों में अप्रत्याशित तेजी आ गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सन 2050 तक विश्व के तापमान में 1.5 से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। पर्यावरण में हो रहे इन तीव्र परिवर्तनों के कई कारण हैं। इनमें एक प्रमुख कारण वायुमंडल में मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ गैसों की मात्रा का बढ़ना है। वाहनों एवं उद्योगों का धुआं तथा समाप्त हो रहे वन इन गैसों की वृद्धि में सहायक हैं। जिस तेजी से वाहनों एवं उद्योगों से निकलने वाले गैसीय पदार्थों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है, उससे पर्यावरण में किसी वृहद परिवर्तन का खतरा बढ़ रहा है। तापमान की वृद्धि से पृथ्वी के गर्म होने का कारण मुख्यतः ग्रीन हाउस प्रभाव ही है। मानवीय क्रियाओं द्वारा आज वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों पर पड़ रहे प्रभाव से नाटकीय परिवर्तन हो रहा है। वाहनों एवं उद्योगों से होने वाला प्रदूषण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि कर रहा है। साथ ही कुछ मानव निर्मित रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो ग्रीन हाउस गैसों की तरह व्यवहार करते हैं, वे भी वायुमंडल में मिल रहे हैं। इसी कारण शनै शनै पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ रहा है और वह गर्म हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा और सघनता बढ़ने के कारण होने वाले पर्यावरणीय बदलाव की व्याख्या के लिए किया जाता है। भूमंडलीय गर्माहट का प्रमुख कारण मानवीय क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसें, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 55% तक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में लगभग 500 वर्ष तक रहती है। प्रारंभ में ज्वालामुखी तथा वन आग से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती थी। औद्योगिक विकास के साथ कोयला, पेट्रोलियम तथा अन्य रसायनों के दोहन में वृद्धि हुई। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का पर्याप्त मात्रा में निर्माण हुआ। जंगलों के दहन ने भी कार्बन डाइऑक्साइड को जन्म दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे पर्वतीय क्षेत्रों को भी संकट में डाल सकती है। दुर्भाग्यवश हिमालय के जटिल पारिस्थितिक तंत्र को स्पष्ट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मॉडल उपलब्ध नहीं है। पर्वतीय प्राकृतिक जल स्रोत या तो सूख रहे हैं या मौसमी हो गए हैं। हिमालय की तराई के कुमाऊं क्षेत्र के 40% से अधिक गांवों में पिछले 50 वर्षों में प्राकृतिक जल स्रोतों में 25 से 75% तक की कमी दर्ज की गई है। हिमनदों का कम होना केवल जलवायु का गर्म होना ही नहीं है, बल्कि इस बात का भी परिचायक है कि नीचे की ओर बहने वाली नदियों के लिए जल की उपलब्धता कम होगी। वैज्ञानिकों द्वारा शोध करने पर पाया गया है कि हमारे देश की जीवनदायिनी माँ गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र गंगोत्री ग्लेशियर प्रतिवर्ष 1 से 3 मीटर पीछे हट रहा है, जो कि गंगा के उद्गम क्षेत्र के निकट भविष्य में सूखने के संकट की ओर संकेत करता है। भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े क्षेत्र के ग्लोबल वार्मिंग के दबावों में आ जाने की आशंका है। जंगलों की कटाई तथा प्रदूषक औद्योगिक इकाइयों और वाहनों की वृद्धि से वायुमंडलीय तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। यहाँ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वर्षों में होने वाली कुल वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। यहाँ कई स्थानों पर वर्षा का उतार चढ़ाव हुआ है। भारतीय मौसम विभाग के एक अध्ययन के अनुसार कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा में कमी आ रही है। ये स्थान हैं ऊटी, कोडईकनाल, शिमला, दार्जिलिंग, धर्मशाला, डलहौजी, पचमढ़ी, मुक्तेश्वर, महाबलेश्वर तथा माउंट आबू। इस अध्ययन के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में 1931 से 1960 और 1961 से 1990 के मध्य वर्षा की तुलना की गई थी। कुछ नगर ऐसे भी हैं जिनमें वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत बढ़ रही है, जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, सूरत और धनबाद। वर्षा की बढ़ी हुई मात्रा का एक कारण पृथ्वी का गर्म होना भी है, क्योंकि इससे समुद्र सतह से होने वाले वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाती है। कृषि पर पर्यावरण बदलाव का व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। कृषि के सभी रूप पर्यावरण बदलाव के प्रति संवेदनशील हैं। वातावरण में बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पौधों की कार्यकी को प्रभावित करेगी। एक अध्ययन के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मानसूनी वर्षा में कमी आएगी, जिसके कारण मृदा में नमी की कमी हो जाएगी। भारत मानसूनी जलवायु प्रधान देश है और मानसूनी जलवायु के असंतुलन से खाद्य उत्पादन में तीव्र गिरावट की अत्यधिक संभावनाएं हैं। मनुष्य की गतिविधियों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों में जो वृद्धि हुई है, उसका 24

0: प्रतिशत क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन काफी स्थायी होते हैं और वायुमंडल में 130 वर्षों तक रह सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ये 65 से 110 वर्षों तक वायुमंडल में रहते हैं। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन अणु वायुमंडल की भीतरी परत में रहते हुए कार्बन डाइऑक्साइड अणु की तुलना में 1500 से 7000 गुना तक ऊष्मा रोक सकता है। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र की सतह का ऊंचा होना, जैव विविधता का क्षरण एवं दुर्लभ जैव प्रजातियों का विलुप्त होना, दुर्भिक्ष, सूखा एवं अतिवृष्टि ऐसे परिणाम हैं जो पर्यावरण बदलाव से हमारे सामने आएंगे। विश्व की जनसंख्या का एक तिहाई अंश तथा औद्योगिक अवस्थापना का एक तिहाई से अधिक हिस्सा समुद्र तटों पर केंद्रित है। समुद्र सतह की ऊंचाई में वृद्धि के कारण समुद्र तटों तथा द्वीप समूहों की आबादी जलमग्न हो जाएगी। कुछ छोटे द्वीप राज्य समुद्र में डूब जाएंगे। मालदीव गणराज्य समुद्र के उठते जल स्तर के द्वारा सर्वाधिक भेद्य है। इसका निवास योग्य स्थान, स्वच्छ जल की उपलब्धता, तटीय सुरक्षा जैसी समस्याएं समुद्र के उठते जल स्तर के साथ तेजी से बढ़ेंगी और भौगोलिक दृष्टि से यह छोटा द्वीप जनशून्य और वनस्पति विहीन हो जाएगा। भारत का समुद्री तट भी 6000 किलोमीटर लंबा है, जो तूफान तथा भारत बाढ़ के भीषण जोखिम पर है। इसी तरह डेल्टा क्षेत्र भी जोखिम के कगार पर है। इनमें से कुछ क्षेत्र तो बाढ़ की विभीषिका की तरफ उन्मुख भी हो चुके हैं, जिससे इस उपजाऊ कृषि भूमि पर आश्रित लाखों लोगों को हानि उठानी पड़ी है। कोयले तथा जीवाश्मिक ईंधन CFC के प्रयोग में कमी और वृक्षारोपण पर्यावरणीय बदलाव के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। पहला, ग्रीन हाउस गैसों के प्रवाह में कमी लानी होगी। ऊर्जा के नवीकृत किए जा सकने वाले साधनों का प्रयोग करके ऐसा किया जाना संभव है तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज की जानी आवश्यक है। विकासशील राष्ट्रों को इस दिशा में स्थानीय ज्ञान पर शोध करने की आवश्यकता है। दूसरा, जनसंख्या में वृद्धि के साथ ऊर्जा की मांग भी बढ़ गई है। मानव को सभी उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए। विद्युत ऊर्जा के निर्माण के लिए कोयले की अपेक्षा प्राकृतिक गैसों का उपयोग एक विकल्प हो सकता है। तीसरा, विश्व में ऊर्जा की खपत 2% वार्षिक की दर से बढ़ रही है। विकसित देशों में क्षमता तथा संरक्षण पर ध्यान देकर 2% ऊर्जा उपयोग घटाया जा सकता है। उपयोग के दौरान बहुत सारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। अधिक खपत वाले विद्युत उपकरण भी इसका कारण है। सही उपकरणों का प्रयोग ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा बचा सकता है। चौथा, मनुष्य द्वारा निर्मित 23% कार्बन डाइऑक्साइड वृक्षों की कटान के कारण उत्पन्न होती है। वनों की स्थापना तथा वृक्षों का सही प्रबंधन वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम करने में सहायक है। बड़े पैमाने पर वनों का दोबारा लगाया जाना वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के घनत्व को बढ़ने से रोकने के लिए आवश्यक है। कुछ ऐसे जनशून्य क्षेत्रों को इंगित कर उनमें सघन वृक्षारोपण कर वनस्पति संतुलन को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। मित्रों, अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य ने पृथ्वी को बुरी तरह से लूट डाला है। यदि यही गति रही तो हमारी ये जमीन तो होगी, लेकिन वह हमें दिखेगी नहीं। आकाश होगा पर चांद सितारे नजर नहीं आएंगे। न कहीं कोयल बोलेगी, न आम पर बौर आएगी, न ही नदियों का कलकल स्वर होगा। केवल मशीनों की गड़गड़ाहट होगी पर हमारे कान नहीं होंगे। पृथ्वी होगी पर उसके चेहरे पर आदमी के पंजों के निशान होंगे और भौतिक नुकसान के बीच खुद आदमी का चेहरा बहुत शर्मनाक होगा।
1: पर्यावरण और हम, इस विषय पर वार्ता अभी आप सुन रहे थे। वार्ताकार थे अमर प्रकाश सावंत। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आगामी मंगलवार 9 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा वर्षाकालीन सब्जियों की नर्सरी। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कमल नारायण वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा दुर्ग। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का

समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का STD कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 9 जून 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। फोन नंबर और रिकॉर्डिंग का समय एक बार फिर सुन ले। हमारा फोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का STD कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 9 जून 2026 को सुबह 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम का आगाज करते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन और फिल्म का नाम है जोशीला।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में लीजिए अब सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है कारवां।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:00

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में लीजिए अब सुनते हैं फिल्म लावा का गीत। आनंद बख्शी के लिखे बोलों को सुरों में ढाला है राहुल देव बर्मन ने।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना आनंद बख्शी का लिखा गीत। आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। फिल्म का नाम था मस्ताना। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं कृष्ण कुमार पाटिल। इनसे पहले सुनते हैं ये गज़ल।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: कृष्ण कुमार पाटिल की गाई इसी गजल के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। एनटीए ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। राष्ट्रीय कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता 12 जून से नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी और मॉनसून के अगले 3 से 4 दिनों में छत्तीसगढ़ में दस्तक देने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की संगठनात्मक बैठक में मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री और मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर ने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 5 से 21 जून तक आयोजित कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास हो रहा है और सरकार की योजनाओं की जानकारी समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता के शुभंकर पहाड़ी मैना का विमोचन किया। ये प्रतियोगिता 12 से 14 जून तक नवा रायपुर के सेंध लेक में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये आयोजन खिलाड़ियों को नई प्रेरणा देगा और प्रदेश की खेल पहचान को और मजबूत बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह के अवसर पर रायपुर में आज से विशेष प्रदर्शनी और व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय की आर्ट गैलरी में ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखों के छायाचित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। 12 जून तक चलने वाली ये प्रदर्शनी प्रतिदिन 11:00 से 5:00 तक लोगों के लिए खुली रहेगी। वहीं 9 जून को अभिलेखों के संरक्षण और उनके महत्व पर विशेष व्याख्यान आयोजित होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। संस्कृति विभाग द्वारा सरगुजा संभाग के उदयपुर और लखनपुर में आज से आकार पारंपरिक शिल्प और कला प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। 14 जून तक आयोजित शिविर में युवाओं को 14 प्रकार की पारंपरिक कला विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य लोक कलाओं और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण के साथ नई पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। दक्षिण पश्चिम मानसून कल तक पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 12 जून से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होने के आसार हैं। बालोद जिले के लोक कलाकार प्रेम साहू उर्फ राजू की कल हृदय आघात से मौत हो गई। ये सूचना मिलने के बाद अस्पताल जा रहे उनके माता पिता भी एक सड़क हादसे का शिकार होकर

0: घायल हो गए। धमतरी जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग अलग मामलों में एक नाबालिग समेत सात तस्करों को गिरफ्तार किया है। अर्जुनी पुलिस ने जांच नाके पर कार और पिकअप से 400 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त किया। वहीं मेचका पुलिस ने कार से 44 किलोग्राम गांजा बरामद कर दो अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ा। पुलिस ने कुल 450 किलोग्राम गांजा और तस्करी में प्रयुक्त वाहन जब्त कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। राष्ट्रीय कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता 12 जून से नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी और मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में छत्तीसगढ़ में दस्तक देने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब सुनते हैं उस्ताद अमीर खां का गाया राग भटियार में ख्याल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अमीर खां का गाया राग भटियार में ख्याल। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं अरिजीत सिंह और असीस कौर के स्वर में। बोल लिखे हैं देवेंद्र काफिर ने, संगीत है तनिष्क बागची का और फिल्म का नाम है कपूर एंड सन्स।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
6: सुनिए।

नोटबुक लीजिए, सुनते हैं इस फिल्म का गीत विशाल मिश्रा और असीस कौर के स्वर में। बोल लिखे हैं अक्षय त्रिपाठी ने और संगीत है विशाल मिश्रा का।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल के स्वर में लीजिए, सुनते हैं मनोज यादव का लिखा गीत। संगीत है स्वप्निल एच दिड़गे का और फिल्म का नाम है इश्क तेरा।

इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 11 बजने को हैं समाचार। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशन का संचालन करती है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
3: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है।

0: चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो। प्रस्तुति है तारकेश्वरी आसुदानी की।

0: कार्यक्रम फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ माँ जम्मो संगवारी मन के बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार करो तारकेश्वरी के जय जोहार। संगी हो आज के कार्यक्रम पर रिकॉर्डिंग हो रही 4 जून गुरुवार बिहनिया 11 बजे तावा सुने जाए आपन सन हमार कोट बात और आपन के पसंद के गीत कार्यक्रम फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनावा। ये हवाई पहली कॉल। हेलो फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: हाँ नमस्ते, मैं योगेश्वर साहू बोला था, फुलझर घटरानी जिला गरियाबंद से।
0: योगेश्वर साहू जी कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ धन्यवाद मैम, आप मन के मैं नियमित श्रोता हूँ मैम, युवानी चौपाल घर आंगन बिंदिया किसले सब कार्यक्रम बराबर सुनता हूँ मैं।
0: हमारे खूब बने लगते है जब हमारे नियमित श्रोता हमारे संग एक कार्यक्रम में जुड़ते और अपन विचार हमारे संग साझा करते।
1: ये बात लगी से फोन बहुत खुशी होते मैं।
0: हम उमल खूब खुशी होते। योगेश्वर जी बताओ आज के कार्यक्रम में का कहना चाहत हो?
1: आजकल गर्मी बहुत बढ़ गए है, श्रोता संगी मतलब कहना चाहत हो कि पानी खूब पिए और बाहर निकले से पहले मुँह काना बिल्कुल ढक ले। गरिमा दिवाकर के कोई भी गाना सुना दो मैम आप मन।
0: तो आप मन के पसंद में आवाज सुने जाए गरिमा दिवाकर के गाये गीत। फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ कार्यक्रम।
1: शंकर नगर ले बोलो थे, विनोद नाम है मोर, का गाना सुनाई आज?
0: विनोद जी, कार्यक्रम में आपन के बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ मैडम,
0: कैसे हो आप मान?
1: बढ़िया बढ़िया मैडम, घर में तो बहुत रहते हैं।
0: हाँ,
1: रायपुर में जाना था तुम्हें।
0: हमारे कार्यक्रम सुनो तो आप मान।
1: हाँ मैडम, कभी कभी सुनता हूँ, मैं रेडियो में तो नहीं सुन पाता लेकिन मोबाइल सुनता, तुम बताना।
0: हाँ, मोबाइल ले बने सुना था वो कार्यक्रम, और आज के कार्यक्रम में फोन लगाया हो तो बताओ का कहना चाहत हो, और कौन से कलाकार मन के कौन से गीत सुनना चाहत हो?
1: मैडम, मैं बचपन में सुनत रहे गाना ला, मोरे संग चलाओगे वाला,

0: वो गाना ला मुझे सुनवा देवा आज, मोर साथियर बहुत गात रहे थे बचपन में जब स्कूल में पढ़ा था ना, आज से 25-26 साल हो गए, तो वही गाना ला मैं सुनना चाहता हूँ।
1: तापन के पसंद माँ आवाज सुने जाए लक्ष्मण मस्तुरिया के गाए यही गीत। फोन करे बार बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: हेलो, फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: हाँ नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन बोला था भैया?
1: मैं हाँ प्रवीण साहू बोला था रायपुर ले।
0: प्रवीण साहू जी, कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप मन?
1: हाँ बहुत बढ़िया। आप कैसे हो?
0: हमूमन घलो बहुत बढ़िया है। और हमार कार्यक्रम कब कब सुना था आप मन?
1: हाँ हमन तो बहुत पहली सुना था, आज फोन लगाए हैं। पर
0: तो कैसे लगा थे आज कार्यक्रम में फोन लगाया होता?
1: हाँ आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा थे।
0: और पहली कहाँ फोन लगे हैं आप मन के? तो
1: हाँ पहली कहाँ फोन लगी है।
0: बताओ, आज के कार्यक्रम में पहली कहाँ फोन लगाए हो, तो क्या कहना चाहता हो और कौन कलाकार मन के कौन से गीत सुनना चाहता हो?
1: मैं यही बोला था कि आकाशवाणी हा हमारे संस्कृति और छत्तीसगढ़ ही सभ्यता और संस्कृति ला अच्छा से जिंदा रखे है और प्रोत्साहित करते लोगन मनला कि वो छत्तीसगढ़ी भाषा में थोड़ा आगे बढ़े और काम करे। काबर की दूसर भाषा के लोग मन अपन अपन भाषा में बात करते पर छत्तीसगढ़िया मन शर्मा थे। तो आकाशवाणी में जैसे प्रोग्राम आते तो लोग मनला थोड़ा सा तो प्रचार होते कि लोग छत्तीसगढ़ी से जुड़े और अपन संस्कृति सभ्यता से जुड़े रहे। तो ये चीज आकाशवाणी बहुत अच्छा काम करत है।
0: हमार प्रयास आप मन ला बने लगा थे। हमार योगदान छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला बनाए बर आप मन पसंद करत हो, ए जान के हमन ला खूब बने लगा थे। और अब बताओ, आज के कार्यक्रम में कौन कलाकार मन के कौन से गीत आप मन ला सुना देन?
1: मैं ममता चंद्राकर के तोर मन कैसे लागे राजा सुनना चाहता हूँ।
0: ता आप मन के पसंद मा आवाज सुने जाए विदुषी ममता चंद्राकर और संगवारी मन के गाए यही गीत। फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम।
0: जी फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो। नमस्कार दीदी।
1: नमस्कार, कौन बोला था भैया?
0: मैं धमतरी जिला से बोल रहा हूँ, चेतन साहू।
1: चेतन साहू जी, कार्यक्रम आप मन के बहुत बहुत स्वागत है
0: जी।
1: क्या करा था आप मन?
0: अभी तो खेती बाड़ी के काम हो है, कोई पेरा भूसा धराई, कूटी कटाई और खातू कचरा ये सब फेंकई काम चला थे।
1: अच्छा,
0: और फिर बरसाती फसल के अभी लगाई के फिर तैयारी करबो, फिर अपन खेती खार के मतलब है के थरहा पानी सब लगाए के।
1: आपन मेरा निकाल के कॉल करे हो, बताओ आज के कार्यक्रम में कौन कलाकार मन के कौन से गीत सुनना चाहता था भैया?
0: एक अलका चंद्राकर के मोर छत्तीसगढ़ के अछरा ये गाना सुना देते तो बड़ा अच्छा रहती।
1: तापन के पसंद माँ आवाज सुने जाए अलका चंद्राकर के गाए ए गीत। फोन करे बर बहुत बहुत

0: हेलो, फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: हाँ नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कौन बोला था भैया?
1: मैं धूरसा से जानूराम साहू जी।
0: जानूराम साहू जी, कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। धूरसा कहाँ पड़ा थे भैया?
1: ये धूरसा अपन घटा रानी जतमई
0: राजिम तरफ।
1: हाँ राजिम से 25 किलोमीटर दूर। और मैं बहुत पहले पे मतलब रेडियो सुनता हूँ और 40 साल हो गए मैडम। रेडियो है, रेडियो को रिपेयरिंग करता हूँ। बहुत सारा सुनते रहता हूँ कहीं ना कहीं।
0: अतेक झुन्ना श्रोता हो आप मन।
1: हाँ।
0: कैसे लगा थे आज के कार्यक्रम में फोन लगा हो, का कहना चाहत हो?
1: बहुत बड़े बहुत बढ़िया लगा तुम्हारा। बहुत हर्षा होते कि आज लग गए पहली बार करके। तो मोला का है मोबाइल वोबाइल थोड़ा ज्यादा नीचा लाल धरो, ईमेल फीमेल वाला। मोला
0: अपन चिट्ठी घलो लिख सकत हो अपन पसंद के गीत सुने बर। हमार आने जो फरमाइशी कार्यक्रम है उमा चिट्ठी हमन घलो लेथन। आज के कार्यक्रम में फोन लग गए है आपके, तब बताओ आज के कार्यक्रम में कौन कलाकार मन के कौन से गीत आप मन के पसंद में सुना देन?
1: मोर जतन करो रे भूया के जतन करो, एक ठो गाना चलते ना
0: ध्रुवराम मरकाम और संगवारी मन के।

0: संगी हो, कैसे हो आप मान?
1: एकदम बने बने गर्मी के मजा लेवा थन।
0: और भोरमदेव तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, तेकर बारे में कुछ बताओ भैया।
1: हाँ, भोरमदेव ला तो छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम ले प्रसिद्ध है। तो यहाँ हमार बचपना बीते है, हम यहाँ पढ़े लिखे हैं कवर्धा में।
0: अच्छा।
1: हाँ, दुरिया दुरिया ले यहाँ पर्यटक मन आते। और भोरमदेव मंदिर के सामने बहुत बड़े जलाशय है, एक प्राकृतिक जलाशय, वो में सुंदर सुंदर कमल के फूल फूले रही थे। और आजकल तो में नौका विहार घलो होल धले है।
0: अरे वाह, तो गर्मी में पानी कम नहीं होते सरोवर में?
1: नहीं, गर्मी में थोड़ा सा पानी कमती आ जाते जरूर। फिर प्राकृतिक जलाशय से कभी आज तक सुखाई नहीं है पानी है।
0: अच्छा, ये जलाशय और आने पर्यटन स्थल सबके जिम्मेदारी हम सबके साझा है। और जम्मो संगवारी मन ला ये चाहिए कि जम्मो पर्यटन स्थल में साफ सफाई बनाए रखन, है ना?
1: हाँ, हम मन बिल्कुल प्रयास करथन, सब जन से यही कोशिश करथन कि यहाँ प्लास्टिक से बने हुए कोई भी चीज यहाँ न लाए, न कोई खाए पिए और फेंके इधर उधर करके।
0: बने करत हो भैया, वो आज के कार्यक्रम आज फोन लगाए हो, कौन कलाकार मन के कौन से गीत सुनना चाहत हो?
1: गर्मी तो गजब जनावत है, तो एक ठन गजब सुघर गीत सुरता आवत है मोला। गर्मी के ये सुघर मौसम में फिर बैतल राम साहू के एक गाना सुना दो।
0: कौन से?
1: जीवलेवा घाम लगे।
0: तापमन के पसंद माँ आवाज सुने जाए यही गीत बैतल राम साहू और संगवारी मन के आवाज में। फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन कराओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: हाँ, मैं भटगुना डोंगर गांव से कैलाश साहू बोला हूँ भाई।
0: कैलाश साहू जी, कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप मन?
1: बस बढ़िया।

0: हेलो, फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: हाँ, मैं भटगुना डोंगर गांव से कैलाश साहू बोला था भाई।
0: कैलाश साहू जी, कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप मन?
1: बस बढ़िया, गर्मी के मजा ले थे भाई।
0: ओ, आज के कार्यक्रम में फोन लगाया हो तो क्या कहना चाहता हो?
1: मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, वही अब गर्मी बड़ तेज हो गए है। तो गर्मी के हिसाब से कुछ गाना होना सुनना रही से।
0: कौन से गीत सुनना है आप मन ला?
1: शेख हुसैन के गीत सुना दो।
0: आप मन के पसंद माँ आवाज सुनी जाए शेख हुसैन के गाए ए गीत। फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: मैडम, मैं प्रियंका बोलत हूँ, कोरबा जिला ले।
0: कोरबा ले प्रियंका जी के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: और मैडम, सब बनिया बढ़िया चलत है तुम्हारे मन के?
0: हाँ, आप मन कैसे हवा?
1: हमन बढ़िया हरन। अभी यहाँ तो खेती बाड़ी के काम चलत है, खेती बाड़ी के विषय में एक बढ़िया गाना सुना देव हमन ला। मैडम, हमन ला जयंती यादव के गीत ला, कोई अच्छा वाले होकर गीत ला सुना देव मैडम।
0: आप मन के पसंद मा आवाज सुने जाए जयंती यादव संगवारी मन के गाए ए गीत। फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: यही गीत सन से रात है आज के फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम। जाए के पहले अपन ला बता देन आज के कार्यक्रम पर गीत जोड़ रही बीर भान साहू। अब विदा देव जम्मो संगवारी मल्ला तारकेश्वरी के राम राम।
1: फोन कर रहो छत्तीसगढ़ी गीत सुना, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति थी तारकेश्वरी आसुदानी की। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के 11:55 होने को है। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है और राष्ट्रीय कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता 12 जून से नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना भी जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता के शुभंकर पहाड़ी मैना का विमोचन किया। ये प्रतियोगिता 12 से 14 जून तक नवा रायपुर के सेंध लेक में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये आयोजन खिलाड़ियों को नई प्रेरणा देगा और प्रदेश की खेल पहचान को और मजबूत बनाएगा। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जशपुर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने रोजगार की मांग दर्ज कराई और जॉब कार्ड निर्माण तथा अद्यतन कार्यों में भाग लिया। विशेष शिविरों में मनरेगा की विभिन्न प्रक्रियाओं और प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जल संरक्षण कार्यों तथा महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन ने दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर चेयर शोध पीठ की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। डॉक्टर अंबेडकर चेयर की स्थापना से विश्वविद्यालय में शोध प्रकाशन, राष्ट्रीय संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, जन जागरूकता कार्यक्रम, क्षेत्राधारित अनुसंधान और पीएचडी कार्यक्रमों को नई दिशा मिलेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून कल तक पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 12 जून से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होने के आसार हैं। बालोद जिले के लोक कलाकार प्रेम साहू उर्फ राजू की कल हृदय आघात से मौत हो गई। ये सूचना मिलने के बाद अस्पताल जा रहे उनके माता पिता भी एक सड़क हादसे का शिकार होकर घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है और राष्ट्रीय कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता 12 जून से नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 12 बजे हैं।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, अपनों के बिना अधूरी लगती है।
1: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार चार दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
1: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
1: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट ना हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
1: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
1: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
1: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
1: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
2: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
1: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर भारत के किस गांव में पड़ता है?
2: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,

0: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
0: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
0: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
1: जी,
2: प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: जा रहा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना।
1: क्यों भला?
0: क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाव बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से

0: पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
1: मंगला।
2: हाँ।
1: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
2: ठीक है।
1: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना।
2: हाँ हाँ।
1: उठाकर मुझे दे।
2: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
1: हाँ।
2: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
3: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
1: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
2: अरे वाह।
1: और ये इसकी पूंछ।
2: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
1: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
2: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
1: ओ, अब बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
2: ठीक है।
1: हाँ, अब बना।
0: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
2: भाई
1: हा?
2: अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
1: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
2: ठीक है।
1: चल चल चल चल, चल।
2: हाँ, हाँ,
1: हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
2: हाँ, ठीक है, चल, चल,
3: चल, चल, चल, चल, चल, चल। कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने। देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
0: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहाँ है कोच्चू और मंगला? है
6: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था। आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई, विद्वान नीलकांतन भट्टातिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।

0: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। यह हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
2: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
3: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
3: जी।

0: रवि वर्मा यही करने लगे। तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेनसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेनसन,
2: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
2: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा। मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
3: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
2: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
3: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
0: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा।

0: दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंजनी। आज कलाकार हैं पंचराम चारण और साथी। आइए सुनते हैं पंचराम चारण और साथियों के स्वरों में ये गीत।

0: लीजिए अब सुनिए पंचराम चरण और साथियों के सुरों में ये संगीत।
1: तरी गीला ऊपर शीशा रात के सनसनाए दिन के मुख

0: लोक रंजनी में अभी आप पंचराम चरण और उनके साथियों को सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को है हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता प्रत्यक्ष लाभ

0: अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए फिल्म सनम तेरी कसम में नीति मोहन को, गीत के बोल समीर अंजान के और संगीत हिमेश रेशमिया का।

आगामी मंगलवार 9 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसान वाणी कार्यक्रम का विषय होगा वर्षाकालीन सब्जियों की नर्सरी। विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कमल नारायण वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा दुर्ग। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 9 जून 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं, लीजिए सुनिए यासिर देसाई और जीत गांगुली को फिल्म परमाणु दी स्टोरी ऑफ पोखरण में। गीत के बोल रश्मि विराग के और संगीत से सजाया है जीत गांगुली ने।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.8 एटिक मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाल केंद्र है। 1:25 हुए हैं, समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

8:30 पर स्पोर्ट्स कैन, ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम किसान सशक्तिकरण आप सुन सकते हैं 9:25 पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी 1:30 पर शहरी महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया, जिसमें आज की बात का विषय होगा स्वस्थ समाज के लिए संवाद जरूरी, श्रोता पत्रों पर आधारित आपके अनुरोध से टिप्स में सुनिएगा। सौंदर्य प्रसाधन सामग्री घर पर तैयार करें, गृह वाटिका को कैसे करें सुरक्षित और घर पर तैयार करें अचार पापड़। दोपहर 2:30 शाम 7:00 रात्रि 8:00 और रात्रि 9:15 पर आप सुन सकते हैं चित्रपट संगीत। प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत सुनिएगा शाम 5:00 हमर हाथी हमर गोट, शाम 5:10 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी हिंदी में, जिसमें आजकल का विषय होगा विश्व महासागर दिवस, क्रम हेलो युवाणी और दृष्टिकोण।

शाम 6:30 पर सुगम संगीत में कलाकार होंगी राजकुमारी और रात 8:15 पर इसी कार्यक्रम में कलाकार होंगे कृष्ण कुमार पाटिल। किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात में सुनिएगा फसल के अच्छा पैदावार पर बीजोपचार औ महत्व। आज के सलाह में सुनेगा हल्दी अदरक के उत्पादन ले भरपूर कमाई। जानकारी देंगी डॉक्टर गुंजन झा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव। पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर सुनिएगा रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा बसंत तिमोथी का वायलिन पर बजाया राग जन सम्मोहिनी।

आइए आपको एक बार पुनः याद दिला दें, 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम किसान सशक्तिकरण आप सुन सकते हैं रात्रि 9:25 पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी 1:30 पर शहरी महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया, जिसमें आज की बात का विषय होगा स्वस्थ समाज के लिए संवाद जरूरी, आपके अनुरोध से और टिप्स। दोपहर 2:00, 2:30, 7:00, 8:00 और 9:15 पर आप सुन सकते हैं चित्रपट संगीत। 5:00 सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। 5:10 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी हिंदी में, जिसमें आजकल का विषय होगा विश्व महासागर दिवस, क्रम हेलो युवाणी और दृष्टिकोण। 6:30 पर सुगम संगीत में कलाकार होंगे राजकुमारी और 8:15 पर इसी कार्यक्रम में कलाकार होंगे कृष्ण कुमार पाटिल। ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शहरी महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया।

यूं ही बेसबब ना फिरा करो, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। वो गज़ल की सच्ची किताब है, वो गज़ल की सच्ची किताब है।

उसे चुपके चुपके पढ़ा करूं। बशीर बद्र साहब की इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं हूं आपकी सखी प्रीतम कौर। आप सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। बहनों, गर्मियों की थोड़ी सी राहत के बीच हम उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। बहनों, स्वस्थ रहने से ख्याल आया, स्वस्थ रहने के लिए संवाद का होना भी जीवन में बेहद ज़रूरी है। संवाद के माध्यम से ही विचारों का आदान प्रदान और समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान संभव हो पाता है। संवाद यानी बातचीत एक स्वस्थ और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए सबसे मूल और महत्वपूर्ण कड़ी है। बातचीत के माध्यम से लोगों के बीच की दूरियां मिटाकर आपसी समझ, सहयोग और भाईचारे, आपसी प्रेम को बढ़ावा देना है। अक्सर हम देखते हैं बहनों की बातचीत न करने के अभाव में छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का कारण बन जाती है। छोटी सी बातचीत से किसी भी समस्या का शांतिपूर्ण हल आसानी से निकाला जा सकता है। आपस में खुलकर बातचीत करने से लोगों के बीच भरोसा बढ़ता है। इसीलिए परिवार में, समाज में विविध पृष्ठभूमि और अलग विचारों वाले लोग के बीच भी सद्भावना बनी रहती है और सहानुभूति और जुड़ाव ऐसा बहनों तब होगा जब हम एक दूसरे की बातें सुने और अपनी भावनाओं को साझा करें। तब हम दूसरों के दृष्टिकोण और उनकी परेशानियों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। सकारात्मक बदलाव और जागरूकता लाने के लिए भी समाज में फैली कुरीतियां और मुद्दों पर चर्चा ही बदलाव की नींव रखती है। इससे यह होगा कि सभी जो है जागरूक होंगे और सामूहिक रूप से समाज की भलाई के लिए कार्य कर पाएंगे। तो चर्चा जरूर करें और चर्चा में भागीदार भी बनें, अपनी बातों को रखें। बहनों, स्वस्थ लोकतंत्र में भी हर वर्ग को अपनी राय रखने का अधिकार होता है। खुला और निष्पक्ष संवाद ही सरकार और आम जनता के बीच की खाई को भी कम करता है। संवाद का मुख्य उद्देश्य आपसे विचारों, ज्ञान और भावनाओं का आदान प्रदान करना है। यह केवल किसी निष्कर्ष या हार जीत तक पहुंचना नहीं है, बल्कि आपसी समझ को बढ़ावा और नए विकल्पों की खोज करना और सामूहिक रूप से विकसित होना है। समावेशी समाज का निर्माण करने में जब समाज का हर वर्ग, चाहे वह किसी भी समुदाय या उम्र का हो, अपनी बात रखने का अवसर उसे मिलता है, तभी वह खुद को उस व्यवस्था का हिस्सा मानते हैं और एक समतामूलक और समावेशी समाज का निर्माण होता है। हर समस्या का रचनात्मक समाधान संवाद से ही निकलता है। बहस या टकराव के बजाय सहयोग और समाधान की भावना विकसित करना ही उद्देश्य बने। तो बहनों, संवाद लोगों से जरूर करें, मन में कुछ न रखें, कह दे, रिश्तों में दूरियां आने ना दे, मन की बात कहें, गिले शिकवे दूर करें और बातचीत के साथ खुशियां बांटते चले। तो चलिए अब हम भी चलते हैं खुशियां बांटने और आपके अनुरोध से कार्यक्रम की ओर। आपके पत्रों और ईमेल पर आधारित अनुरोध गीत सुनते हैं। पहला है बातों बातों फिल्म में से का गीत और इसमें स्वर दिया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। गीत लिखा है अमित खन्ना ने और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने और अनुरोध किया है आप सब ने। छत्तीसगढ़ बेमित्रा से आप हैं श्रीमती पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती, भाव्या सारथी और सुषमा सारथी। मुलमुला से आप हैं लक्ष्मीबाई साहू, बिंदु डिंपल साहू, अमरीका बाई साहू, रोशनी लेखनी साहू। सिमगा छत्तीसगढ़ से हैं श्रीमती सविता जैन, मोना जैन और शिवानी जैन। गौतमनगर जिला नांदेड़ से है प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। शीतलानगर दुर्ग से है शिवचंद्राकर, भगवान चंद्राकर और वर्धमान टॉकेज सिमगा से ही है प्रदीप जैन एवं साथी। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोता बहनों, बाजार में केमिकल वाले सौंदर्य प्रसाधन कई बार हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही काफी महंगे भी होते हैं। तो बहनों, आप घर पर ही अपनी रसोई में मौजूद सामग्री से आसान और किफायती नेचुरल होममेड सौंदर्य प्रसाधन बना सकती हैं, जैसे कि ग्लोइंग फेस मास्क बनाना। इसके लिए हम आपको कुछ छोटी चीजें बताते हैं, जैसे कि आप एक चम्मच शहद और एक कप मैश किया हुआ पपीता या फिर आप केला भी ले सकते हैं, और उसमें कुछ बूंद बादाम के तेल भी आप डालेंगे, और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप अपने चेहरे पर इस मास्क को लगा लें, और 15 मिनट के बाद आप धोएंगे तो आप देखेंगे आपकी त्वचा जो है काफ़ी चमकदार बन जाएगी, और ये काफ़ी हेल्दी भी होता है अपनी त्वचा के लिए। दूसरा है, जैसे कि आपकी किचन में ही मौजूद होता है बेसन, तो बेसन आप ले लीजिए 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और नींबू का थोड़ा सा रस, इसे भी आप अच्छे से मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएंगे और आप देखेंगे कि आपका चेहरा जो है काफ़ी चमकदार हो जाएगा। और यदि आपको अपनी त्वचा को, चेहरा को, स्किन को थोड़ा सा टाइट करना है, तो इसके लिए आप चावल का आटा ले लीजिए 2 चम्मच, शहद 1 चम्मच, ग्लिस

जिनकी कुछ बूंदे, गुलाब जल की कुछ बूंदे, और मार्केट में मिलता है विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है, आप उसमें एक डाल सकते हैं, और चुटकी भर आप फिटकरी का थोड़ा सा पाउडर डालें। इसे आप अच्छी तरीके से मिलाएं और अपने चेहरे पर लगाएं। इससे आपका चेहरा जो है काफ़ी चमकदार हो जाएगा और चेहरे में निखार आ जाएगा। और यदि आपको तुरंत राहत चाहिए, यानी कि चेहरा चमकदार बनाना है, तो आप एक चम्मच कॉफ़ी, एक चम्मच शहद और हल्दी मिलाकर भी आप इसका फेस पैक बनाकर 10 मिनट तक लगा सकते हैं। तो इस तरीके से बहनों, आप सौंदर्य प्रसाधन जो है आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। और अब फिर से चलते हैं संगीत की ओर, और अगला गीत हमने लिया है फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने। स्वर दिया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। अनुरोध किया है आप सभी ने। अमरपुर पेंड्रा से आप हैं रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, अंजुलता, दिशा और लबी श्रीवास्तव। शीतला नगर दुर्ग से आप हैं अर्पा, पैरी, पार्वती, राधा, चंद्राकर। शिक्षक नगर दुर्ग से हैं श्रीमती नलिनी वर्मा, वाणी वर्मा, शशि वर्मा और सुश्री इंदिरा वर्मा। और बटरेल दुर्ग से ही है जैनी वाडे, नेहा वाडे और कुमारी द्विशा वाडे। छत्तीसगढ़ रिंगरी से है करुणा वर्मा और प्रियंका बंछोर। तो आइए सुनते हैं आपके अनुरोध का ये गीत।

बहनों, बहुत सी घरों में आप देखिएगा किचन गार्डन होता है, गृह वाटिका होती है। तो जब भी आप किचन गार्डन बनाती हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि हर बार अलग अलग सब्जी लगाएं और मौसम के अनुसार इसे आप बदलते रहिए। इससे ज़मीन में नमी भी बनी रहेगी और उसकी उर्वरता भी है वो बनी रहेगी। और जब आप किचन गार्डन बनाते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि खरपतवार हमेशा खुरपी के साथ निकालते रहिए, ताकि जो आपने फल और सब्जी लगाए हैं उसे नुकसान ना हो। और ख़ासतौर पर इस बात का ध्यान रखिए कि जानवरों से सुरक्षा के लिए आप बाड़ा लगाइए या फिर आप नेट भी लगा सकते हैं। और जल की निकासी और धूप की सही व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे पौधे, हमारी सब्जियाँ को सही प्रकार का उनको पोषण मिल पाए। और आप अपनी जो सब्जी लगाते हैं उसमें रासायनिक दवा की जगह जैविक और प्राकृतिक तरीकों से आप उसे खाद दीजिए, जैविक खाद का उपयोग कीजिए और उसे हरा भरा बनाइए। और जितना भी ज़्यादा आपको समय मिलता है आप अपने गार्डन में समय गुजारिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सुकून भी मिलेगा। तो प्रकृति से प्रेम कीजिए और पौधे ज़रूर लगाइए। और फिर से चलते हैं हम फिल्म संगीत की ओर और अनुरोध पर आपका अगला गीत सुनते हैं फिल्म हीरा पन्ना से। स्वर दिया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने। और अनुरोध आप सभी का है। नर्मदा धाम सुरसुली से आप हैं बिंदिया यादव, कविता यादव और सरस्वती यादव, ममता यादव। देवकर से है उर्मिला केशरी, प्रियंका केशरी, मोनिका केशरी और आशी ताम्रकर। शीतलानगर दुर्ग से आप हैं सत्यम शर्मा, सत्यदेव शर्मा, अलीशा और उनके साथी। सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से है मधु देवांगन, सावित्री, संगीता, पप्पी, सुजल, रूपा, प्रभाकर देवांगन। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

बहनों, कुछ ही दिनों में बारिश का आगमन होने को है, तो चलिए आज हम बरसात में चाय के साथ कुरकुरे चावल के पापड़ बनाने के लिए तैयारी करते हैं, ताकि हम बरसात में चाय के साथ इसका आनंद ले पाए। तो बहनों, चावल का आटा 1 कप, जीरा आधा छोटा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार और हींग चुटकी भर, तेल या घी आवश्यकता अनुसार आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले एक बड़े बर्तन में चावल का आटा, जीरा, हींग और नमक को अच्छे से मिला लीजिए। फिर इसमें धीरे धीरे 2 कप पानी डालें और अच्छे से इसे फेंटें, ताकि उसमें गांठ ना पड़े। फिर आप छोटी प्लेट या फिर छोटे जो ढक्कन होते हैं, थोड़े से बड़े साइज़ के, आप उसको लीजिए और उसमें तेल लगा के थोड़ा सा उसे चिकना कर लीजिए। और हर प्लेट में 2 से 3 चम्मच घोल जो हमने तैयार किया है उसे अच्छे से डालकर फैला लीजिए। फिर आप दूसरी तरफ एक बड़े बाउल में पानी को गर्म कीजिए और जब पानी उबलना शुरू कर दे तो उसके ऊपर आप जाली रखकर उस पर इन प्लेटों को आप रख दीजिए और कम से कम 2 मिनट तक आप इसे पकाइए। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, ध्यान रखिएगा। और 2 मिनट पकाने के बाद उसे हल्का ठंडा करने के बाद आप उसे निकाल लीजिए और पापड़ को आप किनारे से अलग कीजिए। ध्यान रखिएगा, किनारे से अलग करने से फिर ये टूटेंगे नहीं। और उसके बाद फिर आप दूसरी प्लेट में डालकर आप इसे 2 से 3 दिन धूप में सुखाइए और जब ये सूख जाए तो फिर आप इसे बढ़िया से बारिश के समय में तलकर चाय के साथ इसका आनंद आप उठा सकते हैं। और चलिए आपके अनुरोध का अंतिम गीत सुनते हैं, फिल्म ब्रह्मचारी का, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के स्वर में। हसरत जयपुरी के गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने और अनुरोध आप सभी का है। सिमगा से है भारती सेन, सुनंदा सेन, विजया सेन, ललिता सेन और रामेश्वरी रीमा सेन, ये सभी सिमगा से है। नर्मदा धाम सुरली से है बिंदु यादव।

और चूड़ी लाइन भाटापारा से हैं रिहाना बेगम, रुखसाना बेगम, अर्शी परवीन, रिदा और मायशा। धमनी राजिम से हैं ममता धीवर, मुन्नी धीवर। और पुष्पांजलि रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से ये खत भेजा है शारदा वर्मा, सीमा दामिनी वर्मा ने। संबलपुर कांकेर से है फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और इशिका यादव, तेजपाल यादव। तो आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद का ये अंतिम गीत।

मैंने जाने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारा पता नोट कर लीजिए ताकि आपके अनुरोध पर आप पत्र लिख सकें। तो पता है हमारा आपके अनुरोध से बिंदिया कार्यक्रम, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर, पिन है 492001। तो आपके अनुरोध की पत्र हमें ज़रूर भेजिए और आपकी सखी प्रीतम कौर को आज इजाज़त दीजिए अगली मुलाकात के लिए। नमस्कार।

बिंदिया, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2 बजे हैं, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब कर

0: ने हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म रागिनी MMS 2 में मुस्तफा जाहिद को गीत के बोल कुमार के और संगीत प्रणय रज्जा का।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 2:15 हुए हैं, समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र,
3: गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी,
4: देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
5: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
2: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
6: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
7: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका

0: फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
2: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाश

0: मणि के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूँ। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।
4: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
5: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
6: बड़ी दूर से आए हैं प्यारे का तो फराए।
4: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं। कभी कोई किस्सा याद आता है।

0: कुछ कहने को मन करता है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है।

0: फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
1: सुनिए
2: कहिए
1: कहिए
2: सुनिए
1: सुनिए
2: कहिए कहिए ना।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए पर पढ़ते फिर पढ़ के भुला जाते।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब थोड़ी ना बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: तो काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एकर असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं, लीजिए सुनिए वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा में जावेद बसीर और सुनिधि चौहान को, गीत के बोल रजत अरोरा के और संगीत प्रीतम का।

लीजिए अब सुनिए फिल्म दम मारो दम में ऐश किंग और सुनिधि चौहान को, गीत के बोल जयदीप साहनी के और संगीत प्रीतम का।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म यंगस्तान में अरिजीत सिंह को कौसर मनीर का लिखा गीत और संगीत है जीत गांगुली का।

लीजिए आप सुनिए फिल्म सत्यमेव जयते में आतिफ असलम और तुलसी कुमार को, गीत के बोल कुमार के और संगीत रोचक कोहली का।

चित्रपट संगीत के आखिर में लीजिए सुनिए फिल्म किस्मत कनेक्शन में आतिफ असलम और अलका याग्निक को गीत के बोल सईद कादरी के और संगीत प्रीतम का।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। 3 बजे ही हमारी ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गरीबों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास, जनधन, मुद्रा और प्रधानमंत्री स्वनिधि जैसी कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत करोड़ों नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं, वित्तीय सुरक्षा और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा है। वहीं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा

0: और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने सांसद पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। श्री रॉय ने एक प्रेस नोट में तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, महिलाओं के प्रति हिंसा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और कानून व्यवस्था में विफलता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हाल के चुनाव में मतदाताओं ने राज्य में 15 वर्ष से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के प्रति स्पष्ट रूप से अविश्वास व्यक्त किया है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। उसने कहा कि ऑपरेशन के दौरान इसराइल के वायुसेना केंद्रों नेवोतिम और तेल नोफ पर हमले किए गए। मीडिया की खबरों के अनुसार इसराइल के हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today highlighted the government's 12-year journey of welfare for the poor. In a social media post, he said, India has witnessed many transformations and at the core of these changes is Garib Kalyan. He said the government has always been inspired by Antyodaya, and the effort has always been to ensure that the benefits of development reach those who were left behind for decades. The Prime Minister underlined that every initiative like Jan Dhan accounts, direct benefit transfers, Swachh Bharat, PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission and Ayushman Bharat has been driven by the objective of ensuring dignity and opportunity to people. He also said technology has played a vital role in ensuring a better quality of life for the poor.
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: Trinamool Congress strongman Jahangir Khan was arrested early this morning by the West Bengal police. He was apprehended near the Nepal border. He was reportedly attempting to flee across the border when STF officials, acting on a secret tip-off, intercepted and detained him. Khan is now being brought back to Kolkata for further questioning. The Indian Embassy in Iran has advised Indian nationals to avoid any travel to Iran in view of the recent developments in the region.

आकाशवाणी एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आज का दिन तो हमारे सभी सुनने वालों के लिए, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है और आज का दिन बेहद ख़ास है ही। और ये जो समय होता है 3 बजे का, ये भी बहुत ख़ास होता है, क्योंकि ये समय होता है मन भावन का, जहाँ पर आप भेजते हैं अपने संदेश, अपने ईमेल्स और अपनी फरमाइशें। बता दें आपको कि किस ईमेल आईडी पर अपनी फरमाइश आप भेज सकते हैं, fmgoldaardaily@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868687539868683। और आपके साथ मैं हूँ रजनी। सबसे पहला जो संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमें मिला है कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं फारूक अली खां, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फार

दिया और ताहिरा, और ये सभी सुना चाहते हैं जूली फिल्म का एक गीत जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने। तो आइए इस रोमांटिक गीत के साथ शुरुआत करते हैं आज के मनभावन की।

और अब आगे बढ़ते हुए अगला जो संदेश मुझे दिख रहा है ये हमें भेजा है सनावत से शेख मूसा मोहसिन ने। इनके बाद हमें संदेश मिला है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का। इनके अलावा हमें सुन रहे हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, छत्रपति संभाजी नगर से इनका संदेश मिला। इनके बाद समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, अंकुर राघव गुप्ता और पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता का संदेश मिला। इनके बाद संदेश भेजने वाले हैं नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान अहमद भारती और सूफिया नवाब बल्लीमारान से। और साथ ही हमें संदेश भेजा है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। भेजने वाले हैं अभिजीत गवहाणकर राही, सरिता गवहाणकर, प्रणीता सिद्धांत गवहाणकर, टुकटुक गवहाणकर, एकांश सुमित गवहाणकर, ध्वनि गवहाणकर परी। और ये सभी सुनना चाहते हैं अनाड़ी फिल्म का टाइटल सॉन्ग। आवाज है मुकेश की।

अपनी आकाशवाणी जो आज 90 साल पूरी कर रही है। बहुत खास दिन है हमारे सभी सुनने वालों के लिए। मन भावन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, और आपके जो संदेश हैं, आपके जो ईमेल्स हैं, उनका सिलसिला लगातार जारी है। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश

से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, उमेश चंद वर्मा, राजकुमार बोड़ाना का संदेश मिला। और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, रितु, मुकेश, जगताप का पैगाम हमारे पास आया है। इनके बाद हमें संदेश भेजने वाले हैं नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति क्षीर सागर, संजय कुमार चौहान। और साथ ही हमें सुन रहे हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गौराया, जलंधर से। संदेश अगला हमारे पास पहुंचा है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का। इनके बाद उत्तम नगर दिल्ली से हमें बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल का संदेश मिला। अगला संदेश हमारे पास आया है कैलाश का, महिंद्र पार्क दिल्ली से। और इनके बाद हमें पैगाम मिला पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने का। और कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, ऋषिकेश दले और जीविका दले का। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक हमारे साथ हैं और ये सुनना चाहते हैं शहनाई फिल्म का गीत जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

देश जो हमारे पास आया है वो है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से संदेश भेज रहे हैं। इनके बाद संदेश जो हमें मिला है वो है इन्होंने संदेश तो लालगिरी ने ये संदेश भेजा है और कहाँ से भेजा है ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। इनके अलावा भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव द्विवेंदी भूषण संस्कृति पौरुष ने संदेश भेजा है व्हाइट फील्ड बंगलुरु से। और इनके अलावा अगला संदेश जो हमें मिला है ये है जयराम खोरवाल सचिन खोरवाल अमन खोरवाल दीपांशु खोरवाल का और ये हमें संदेश भेज रहे हैं होली चौक उत्तम नगर से। इनके बाद हमें संदेश भेजने वाले हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा कपिल चीपा ईशान चीपा और पूजा परिहार। और इनके साथ ही जो संदेश हमें मिला है ये हमें भेजा है मास्टर खिल्लू परवेज बेगम इमराना नाज नवाजिश शेख दानिश शेख अमन अफरीदी राधा नामदेव ने लखनऊ उत्तर प्रदेश से। और ये बहारों के मंजिल का एक गीत सुना चाहते हैं तो लीजिए हमने आपके लिए ये गीत निकाल लिया है जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और कुमकुम गुड़िया ने हमें संदेश भेजा। इनके बाद विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा हमें सुन रहे हैं बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। इनके बाद जो संदेश हमें भेजा है ये है पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया,

निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून का। शमसुल कमर राही, शाहीन, फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान गंज डुंडवारा से हमें सुन रहे हैं और ग्राम लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी का संदेश हमारे पास आया। और अगला संदेश हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू ने और खुददार फिल्म का एक गीत सुनना चाहते हैं, तो आइए एक गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: सभी को प्रणाम। मेरा नाम है विभा रानी। मैं एक फिल्म और थिएटर एक्टर हूँ और मैथिली और हिंदी के लेखक। आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है और यह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभिन्न हिस्सा का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रही हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, तो आकाशवाणी दरभंगा में मैंने कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में काम किया। मैथिली ड्रामे किए, हिंदी ड्रामे किए और कैजुअल अनाउंसर के रूप में मैं वहाँ अनाउंसमेंट करती थी। लेकिन थोड़े ही समय में आकाशवाणी और रेडियो ने मुझे जो दिया वो आज तक मेरे लिए एक नेमत की तरह है। परफॉर्मेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, डिक्शन, रवानगी, कैसे किस बात को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इन सब की जानकारी मुझे धीरे धीरे धीरे धीरे रेडियो से मिली। और आज जो कुछ भी आप मुझ में पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इस रेडियो का हिस्सा है, उसका योगदान है, उसका सहयोग है। और रेडियो सुनना कभी मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
9: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
10: इस ब्रेक के बाद जारी है आपका अपना मनभावन आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। आप चाहें तो अपने संदेश, अपने ईमेल्स हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753, यानी कि 9868868753। और हमारा ईमेल आईडी है fmgold@delhi.gmail.com। और अब आपके संदेशों की तरफ चलते हैं, ईमेल्स की तरफ चलते हैं।

चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा बिमला अनेजा ने हमें संदेश भेजा है। अगला पैगाम राम शरण वर्मा साहिल विश्वकर्मा राम शरण विश्वकर्मा मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का मिला है हमें। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। और अगला पैगाम भेजने वाले हैं हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल भाटिया पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया स्टेशन रोड जमशेदपुर से। इनके बाद जो पैगाम मिला है वो है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत किसू तासू अर्णव आनंद सत्य।

भाटिया और सोनू भाटिया स्टेशन रोड जमशेदपुर से। इनके बाद जो पैगाम मिला है वो है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद और बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत का। इनके अलावा हमें संदेश भेजने वाले हैं बाड़ी खामगांव से अनंता वाडे, रामेश्वर वाडे, शुभम, साक्षी, खुशी और समस्त वाडे परिवार। और गुवाहाटी आसम से हमें संदेश मिला है हरेन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या का। और ये सुनना चाहते हैं जॉनी मेरा नाम का एक गीत, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने।

अगला संदेश हमारे पास आया है मालवा से और हिंगड़ी ग्राम अलोट जिला रतलाम से, मध्य प्रदेश से, और भेजने वाले हैं जगदीश धाकर नायमा, रंजूबाई धाकर, युवराज सिंह धाकर और शिवांगी धाकर का। इनके अलावा हमें संदेश मिला है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले और सोपान तायरे, राजकुमार खर्चे, आशीष महरकर का संदेश हमारे पास आया है। साथ ही गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार ने हमें पैगाम भेजा। इनके बाद जो संदेश हमारे पास आया है ये है छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद बाई, दुखने सदफ आरजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद और सभी फूलवाले फैमिली का। इनके बाद जो संदेश हमें मिला है ये है धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू का। साथ ही हमें संदेश आया है जॉन डिकोस्ट्रा, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो, जनकपुरी सहारनपुर से ये संदेश हमें भेज रहे हैं। और इनके बाद जो संदेश हमारे पास मिला हमें यह है मोहम्मद सईद अब्बासी, निकत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों का। और ये गीत सुनना चाहते हैं जिंदगी और ख्वाब फिल्म से। और लीजिए, हमने आपका ये जो गीत है आपकी पसंद का, ये हमने आपके लिए निकाल लिया है, जिसमें आवाज़ है मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की। लीजिए, आपकी पसंद पर ये गीत पहुंच रहा है आप तक।

रेडियो में जो फरमाइशी गीतों का या मैसेजेस का जो शो होता है उसमें भी कुछ ऐसे ही होता है ना कि ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को पता नहीं कब से जानते हैं, आपके नाम सुनते हैं, आपके नाम पढ़ते हैं, आपकी फरमाइशें पूरी करते हैं, तो एक अजीब सा अपनापन सा हो जाता है आपसे। ऐसे ही कुछ और संदेश हमारे पास आए हैं। स्वरूप आनंद सरजल जोड़ा पीपल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हमें संदेश भेज रहे हैं। इनके अलावा मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी और रसीद वारसी ने हमें संदेश भेजा। इनका अगला संदेश रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने भेजा है। और इनके अलावा जो संदेश हमें मिला है ये हमारे पास भेजा है सोनाली नारंग, सुरेश नारंग ने सहारनपुर से, और साथ में आशा नारंग भी हैं। इनके अलावा सैयद मसरूर भी हमें सुन रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आपके प्यार भरे संदेशों के लिए। फिलहाल चाहते तो बहुत हैं कि अभी और आपके साथ रहें, आपकी फरमाइश पूरी करें, आपके गीत, आपके मैसेजेस पढ़ें, लेकिन वक्त जो है इजाज़त नहीं दे रहा। तो फिलहाल रजनी को मनभावन समेटने की इजाज़त दीजिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष के विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी,
3: देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
4: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
2: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गरीबों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास, जनधन, मुद्रा और प्रधानमंत्री स्वनिधि जैसे कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत करोड़ों नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने हैं।

तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने सांसद पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। श्री रॉय ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, महिलाओं के प्रति हिंसा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और कानून व्यवस्था में विफलता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नव निर्वाचित सरकार ने चुनावी वायदों के अनुसार राज्य में विकास और पुनर्निर्माण के कार्यक्रम लागू करने शुरू कर दिए हैं। तेलुगुदेशम पार्टी के सना सतीश, भाष्यम रामकृष्ण और चिंतकायला विजय ने आज अमरावती में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। तीनों उम्मीदवारों ने सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं की उपस्थिति में चुनाव अधिकारी आर वनीता रानी को अपने नामांकन पत्र सौंपे। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित हुआ है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल और प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। उसने कहा कि ऑपरेशन के दौरान इसराइल के वायुसेना केंद्रों नेवातिम और तेल नोफ पर हमले किए गए। मीडिया की खबरों के अनुसार इसराइल के हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच में पारी और 300 रन से हरा दिया है। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहली पारी में 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। जवाब में अफगानिस्तान की टीम पहली पारी में 152 रन पर सिमट गई। इसके बाद फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में अफगानिस्तान 112 रन ही बना सकी और भारत ने मैच जीत लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर रहे मानव सुथार को मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 9211। इस फिल्म से हमने चुना है आपके लिए गीत जिसमें आवाज है लता मंगेशकर और गीता दत्त की।

ना सोती हो और तारों भरी खामोशी हो, हर आहट पे धड़कन होती हो, क्या हो फिर जो दुनिया सोती हो और तारों भरी खामोशी।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: आरक्षण और वेतनमान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए रोजगार समाचार का 30 मई से 5 जून 2026 का अंक। पात्र और इच्छुक उम्मीदवार जिन्हें चयन प्रक्रिया में तुरंत अपने मौजूदा कार्यालय से कार्यमुक्त किया जा सकता है, वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ अपने दस्तावेज भेज सकते हैं। इस पते पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड, केरा भवन, SRV रोड, कोच्चि 682011। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। निदेशक जल संभर विकास, निदेशक जल प्रबंधन, निदेशक वानिकी, STA जल प्रबंधन, STA वानिकी, STA जल संभर विकास या सामाजिक विज्ञान अथवा अर्थशास्त्र, STA कृषि एवं बागवानी तथा STA पशुपालन एवं मत्स्य पालन। आवेदन भेजे जा सकते हैं इस पते पर अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, 8वीं मंजिल, प्लांट अथॉरिटी भवन, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा, नई दिल्ली 110012। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nraa.gov.in। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला भारत सरकार इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। अनुसंधान एसोसिएट, कुल पदों की संख्या 3, कनिष्ठ अनुसंधान फेलो, पदों की संख्या 3। आयु, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन पत्र और अन्य नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखिए NDTL की वेबसाइट। वेबसाइट का पता है ndtlindia.com। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
0: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे याद कुछ ऐसी हस्तियों को है जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि। दोस्तों, परिक्रमा के इस अंक के साथ आज हूं मैं मुनीश शर्मा और हमारे साथ हैं शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
3: नमस्कार मुनीश, एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी, वेल अ वेरी वार्म वेलकम। दिस इज परिक्रमा ऑन 100.1 FM विद मी शगुन चोपड़ा एंड मुनीश। टुडे वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वेरी थ्रिल्ड बिकॉज टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। वेल यू नो, if you know more about it in a few moments from now, we'll begin with it. And well, we have first a selection of news, and Munish already told you reports, capsules, tributes. So without any further delay, well, let's just get started with the headlines.
0: सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 साल से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया है।
3: इजराइल एंड ईरान ट्रेड फ्रेश मिसाइल अटैक्स ऑन ईच अदर, एस्केलेटिंग वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट।
0: और लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं।
3: And in Test cricket, India registers biggest ever victory, defeats Afghanistan by an innings and 300 runs on third day of the one-off test in New Chandigarh. Well, this is our discussion segment, Dateline India.

0: Today, it's a truly, truly special day in the history of Indian broadcasting.
1: जी हाँ, आज 8 जून को आकाशवाणी के 90 शानदार साल पूरे हो रहे हैं. आकाशवाणी एक ऐसा नाम जिसने भारतीयों की कई पीढ़ियों को जानकारी दी, शिक्षित किया, उनका मनोरंजन किया और उन्हें आपस में जोड़ा.
0: How true. And 90 years, well, it is a remarkable milestone. And well, now, should we trace back the history, how the journey began? Should we?
1: Of course, we should. We must. दरअसल दोस्तों, 1936 में यही था वो दिन जब इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर रखा गया ऑल इंडिया रेडियो, जिससे देश के सबसे भरोसेमंद पब्लिक ब्रॉडकास्टर में से एक बनने की नींव पड़ी.
0: And what a journey it has been, Munish, from the era of radio sets in living rooms to today's digital platforms. Akashwani has remained a constant companion for millions worldwide.
2: Post-independence, AIR expanded rapidly, adopting the name Akashwani in 1956. Today, Akashwani operates 591 stations, reaching 98% of India's population, broadcasting in 23 languages and 146 dialects. Akashwani's External Services Division broadcasts to over 100 countries, projecting India's voice globally and connecting with the diaspora. Living up to its noble ideals of Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai, the News Services Division of AIR strives to provide news and views to every dweller in this vast country, in varied terrains, 24/7, in all major languages and dialects, while adhering to highest professional ethics and standards in radio broadcasting. With Aman Yadav, Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
1: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी श्री विजयपुरम की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए. इस संबंध में आकाशवाणी द्वारा कई गतिविधियां चलाई गईं.
3: देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है. इसी क्रम में आकाशवाणी श्री विजयपुरम ने 2 जून को अपनी 63वीं वर्षगांठ भी उत्साह पूर्वक मनाई. इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों, कलाकारों और गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया तथा आकाशवाणी की गौरवशाली विरासत और समाज में उसके अमूल्य योगदान को याद किया. आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में निकोबारी लोक संगीत संध्या का भी आयोजन किया गया, जो स्थानीय संस्कृति, परंपरा और संगीत को समर्पित रहा. कार्यक्रम में विभिन्न कलाकारों और विशिष्ट अतिथियों की सहभागिता ने आयोजन को विशेष बनाया. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल से फ्लैग पॉइंट तक एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया. इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा आकाशवाणी की 90 वर्षों की जनसेवा, विश्वसनीयता और गौरवशाली यात्रा को स्मरण करना था. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से अंकित कुलश्रेष्ठ के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद.
1: सारे देश के लिए दिन की शुरुआत उस समय उद्घोषक की जानी मानी आवाजों से होती थी, जो ताजा खबरें, संगीत और जानकारियां सीधे उनके घरों तक पहुंचाते थे.
0: So, Munish, earlier, before television, before the internet, Akashwani was the heartbeat of the nation. Voices like Amin Sayani, well, it does ring a bell, gave that heartbeat its rhythm.
4: Namaste, behnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
5: Aap sun rahe hain Vivid Bharati.
6: Mere liye Geetmala sirf ek hit program nahi hai. Woh meri shakhsiyat, mere wujood ka ek hissa hai. Aur aaj tamam itihas is karwa mein shamil ho gaye hain.
1: असल में शगुन आकाशवाणी सिर्फ एक प्रसारण सेवा से भी कहीं ज्यादा है. ये इतिहास का गवाह है और पूरे भारत में अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और समुदायों को आपस में जोड़ने वाला एक पुल रहा है.
0: एग्जैक्टली, द ब्रिज दैट यूनाइट्स अस ऑल. आकाशवाणी हैज बीन द प्रीमियर प्लेटफॉर्म फॉर इंडियाज फॉरमोस्ट वोकलिस्ट्स एज वेल.

0: और दोस्तों, कैसे भूल सकते हैं उस समय की उन आवाजों को जो दरअसल आकाशवाणी का पर्याय बन गई थी, जिनके साथ दिन की शुरुआत होती थी और लगता था दिन भर वो आवाजें हमारे जहन में रहती थी, और जिन्होंने उन्हें एक बार सुन लिया अब भी जी चाहता है फिर बार बार सुने। ऐसी एक आवाज थे देवकी नंदन पांडे साहब। तो आइए सुनते हैं उनके ये एक पुराने साक्षात्कार से कि अंश जो उन्होंने दूरदर्शन को दिया था।
1: जो ड्रामास में मेरा इंटरेस्ट था, तो उन्हीं दिनों से मैं ये तो जानता था कि आवाज में मेरे कुछ दम है
2: जी,
1: मगर इसका आभास मुझे ज्यादा समझ संख्यावानी में हुआ। जब अपना एजुकेशन खत्म करने के बाद मैं लखनऊ गया, एक मामूली नौकरी कुछ तो करना ही था, तो पकड़ ली वहां ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लखनऊ। उसके साथ ही मैं रेडियो में अप्लाई किया और उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। तो एक गिरजा कुमार माथुर और एक इशरत रहमानी जो थे एक प्रोग्राम असिस्टेंट एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव एट दैट टाइम, तो उन्होंने मेरी आवाज को सराहा ही नहीं, हाथों हाथ पी लिया और दूसरे ही दिन से उन्होंने मुझे प्रोग्राम्स भी देने शुरू कर दिए। तो इस तरह से मैं वहां कैजुअल ड्रामा आर्टिस्ट हो गया।
3: Well, you listen to the voice and you don't even need the visuals here. Such a great voice, such expressive voice. And whether it was important national announcements, educational programs, music concerts, classical music concerts, also rural outreach initiative, they were widely popular, they still are. Entertainment shows as well, Akashwani has always served the public with dedication.
0: जी हाँ, आज की दुनिया में जानकारी के लिए हम अक्सर स्मार्टफोन और इंटरनेट पर निर्भर रहते हैं, लेकिन क्या होता है जब किसी संकट के समय ये सिस्टम अचानक काम करना बंद कर देते हैं?
3: Then what? That's when radio proves its true strength during natural disasters and emergencies, when electricity, internet services, even communication networks, they are disrupted. Radio often remains the most reliable source of information, Munish.
0: जी हाँ, और यहीं पर आकाशवाणी ने दशकों से अपनी अहम भूमिका निभाई है।
3: Absolutely. Whether it's floods, cyclones, earthquakes, natural disasters or other emergencies, well, Akashwani has consistently provided timely alerts, verified updates and essential public safety information.
0: सच तो ये है दोस्तों कि रेडियो सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, दरअसल ये लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है।
3: True, Munish, and well, let me add here, renowned folk singer Malini Awasthi fondly recalled her long association with Akashwani, describing it as an integral part of her artistic journey. She said a significant span of her life has been closely linked with Akashwani.

0: नमस्कार, मैं मालिनी अवस्थी। मुझे लगता है मेरी जिंदगी की पूरी कहानी यदि आप लिखेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आकाशवाणी के हवाले होगा। 90 बरस हुए और आप ये समझ लें कि 50 साल का मेरा जुड़ाव रेडियो से है। मैं 10 बरस की थी, गोरखपुर में आकाशवाणी गोरखपुर का सेंटर खुला था नया, और तब बाल जगत में सबसे पहले तो बच्चों के साथ और भैया दीदी के साथ बैठ करके बात करते थे, और वो पहला अनुभव था। ये बात हो गई 76 के, और बड़े अच्छे कमाल के ज्ञानवर्धक बातें, बच्चों को अपनी कविताएं सुनानी होती थी, कोई गा सकता है तो गाए भी, तो आकाशवाणी एक तरह से इल्म भी था। फिर वहां से रेडियो में युववाणी है, फिर अब जनरल है, फिर अब टॉप ग्रेड तक पहुंचना है, एक तरह का वो हमारे लिए सीढ़ी बन गई। गोरखपुर से लखनऊ आकाशवाणी, फिर दिल्ली रेडियो, तो हमारे लिए पूरी दुनिया में बल्कि भारतवर्ष में कॉन्सर्ट्स में हम जब यात्रा करते अलग अलग शहरों में, तो सबसे खुशी होती थी कि जब नाम के साथ ये जुड़ता था कि अब आपके सामने आ रही आकाशवाणी लखनऊ की कलाकार मालिनी अवस्थी। तो हमारे लिए आकाशवाणी स्टूड लाइक गोल्डन स्टैंडर्ड और व्हाट नीड्स टू बी फॉलोड।
1: मारे करजवा माती बलम घरे ना मोरे नने दी।
2: She takes great pride to be a voice of Akashvani. She said that. Now, Olympian shooter Manu Bhakar also congratulated Akashvani for completing 90 years. Let's listen into her.
3: मैं मनु भाकर आकाशवाणी को 90 साल पूरे होने पर हार्दिक बधाई देती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप

0: हमेशा हमें इतना प्रोत्साहित करते हो, हमें इतना मोटिवेट करते हो और हमेशा हमारे लिए पॉजिटिवली बात करते हो. थैंक यू सो मच. हमेशा लुकिंग फॉरवर्ड टू आकाशवाणी.
1: How great. Minority Affairs Minister Kiran Rijiju has extended his best wishes to Akashwani on the occasion of the completion of 90 glorious years.
2: Ek video sandesh mein unhone kaha ki aaj pura desh Akashwani se juda hai. Unhone kaha ki Akashwani ke madhyam se ek Bharat shreshth Bharat ki bhavna ko mazboot kiya ja raha hai.
3: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं. 90 साल आपने पूरा किया है. 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं. पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है. आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना.
2: दोस्तों, आकाशवाणी के 90 साल पूरा होने का जश्न मनाते हुए हम उन श्रोताओं के भरोसे और प्यार का भी जश्न मनाते हैं जो इस सफर का अहम हिस्सा रहे. और भले ही दशकों में टेक्नोलॉजी में बदलाव आया हो, लेकिन हमारा मकसद तो वही है, देश को जानकारी देना, शिक्षित करना और एकजुट करना.
1: Well, here's to 9 decades of excellence, public service and meaningful broadcasting, and here's to many more years of connecting hearts and voices across India.

0: this song is highly appropriate for the situation and for radio, actually. So, now let's shift to the second topic. Today it's World Ocean Day as well.
1: जी हाँ, एक ऐसे विषय पर हम आज बात करने जा रहे हैं जो दरअसल एक बहुत बड़ा और दिलचस्प विषय है और पृथ्वी पर जीवन के लिए बेहद जरूरी है.
0: World Ocean Day. This day is celebrated across the globe to honor our oceans and recognize the incredible role they play in sustaining life on our planet.
1: दोस्तों, आप जानते हैं जब लोग महासागरों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर उन्हें खूबसूरत समुद्र तट, लहरें और समुद्री जीव जंतु याद आते हैं, लेकिन महासागर तो इनसे कहीं ज्यादा हैं.
0: Well, it's absolutely true. Oceans cover more than 70% of the Earth's surface and produce much of the oxygen that we breathe, regulate our climate and support millions of livelihoods worldwide.
1: दरअसल सच में इससे पता चलता है कि हमारे महानगरों की सुरक्षा करना हर किसी की जिम्मेदारी क्यों होनी चाहिए.
0: And that's one of the main goals of World Ocean Day. It is actually to raise awareness about the importance of oceans and encourage sustainable actions to protect marine ecosystems.
1: Mahasagar Divas ki hum baat karein to kya aap jante hain ki iski shuruaat kaise hui?
0: Well, I know that, Munish. The idea was first proposed in 1992 during the Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazil. Leaders and environmental experts, they gathered there to discuss global environmental challenges and solutions.
1: बिल्कुल सही कहा आपने शगुन, लेकिन ये विचार 1992 में शुरू हुआ. लेकिन क्या आपको याद है कि यह आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन आखिर कब बना?
0: It's a good question, actually. Recognizing the need for worldwide cooperation in ocean conservation, the United Nations then officially designated June 8th as World Ocean Day in the year 2008.
1: बिल्कुल, दरअसल ये एक अहम पड़ाव है. इसने एक बेहतरीन विचार को एक वैश्विक आंदोलन में बदल दिया.
0: Well, exactly. People around the world participate in beach cleanups, educational campaigns as well, other conservation projects also, and community events which are organized to support healthier oceans.
1: कभी कभी लोग सोचते हैं मदद के लिए आखिर मैं क्या कर सकता हूँ. अच्छी बात यह है कि छोटे छोटे काम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं.
0: And what are those activities? Well, reducing plastic use, disposing of waste responsibly, conserving water every day, supporting sustainable products. These are a few simple steps, very effective ways to protect marine environments.
1: और याद रखिए, नदियों और नालों में जाने से बचाई गई कचरे की हर चीज समुद्र तक पहुंचने वाले कचरे में एक की कमी करती है.
0: How great, Munish. So on this World Ocean Day, let's remember, the ocean gives us oxygen, provides food, supports livelihoods and sustain an incredible diversity of life.

0: और दोस्तों आज है जन्मदिन बॉलीवुड की उस अभिनेत्री का जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में रुपेले पर्दे पर कदम रखा और फिल्म बॉबी से ऐसी धूम मचाई कि आज भी लोग उनको भूले नहीं हैं और वो बराबर पर्दे पर सक्रिय बनी हुई हैं और आज 68 वर्ष की वो हो जाएंगी लेकिन उनकी अदाकारी में आज भी जादू वही कायम है। अपने विवाह के 12 साल बाद उन्होंने फिल्म से कुछ दूरी बनाई रखी, 12 साल तक कहना चाहिए
1: जी।
0: और फिर 1984 में जब वापसी की तो सागर जैसी फिल्म से जिसे फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से उनको नवाजा गया था उसमें, लेकिन उनका सफर वहीं रुका नहीं और हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म टेनेट में क्रिस्टोफर नोलन के साथ भी नजर आई और उनके इस खूबसूरत सफर को और भी खूबसूरत बनाते गए हैं, उन पर फिल्माए गए कुछ गीत, तो सुनते हैं उन्हीं गीतों की ये एक झलक।

0: So many beautiful songs. A timeless icon of Indian cinema, Dimple Kapadia continues to captivate generations with her grace, charisma and extraordinary talent.
1: और दोस्तों आज है पुण्यतिथि भारतीय रंगमंच के महान निर्देशक हबीब तनवीर की. दरअसल न सिर्फ एक निर्देशक बल्कि नाटककार, कवि, अभिनेता और उसके साथ साथ निर्देशक तो बहरहाल वो थे ही. 1959 में नया थिएटर की उन्होंने स्थापना की और छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के साथ मिलकर एक ऐसी नाट्य भाषा उन्होंने गढ़ी जो न तो पूरी तरह शहरी थी न ग्रामीण, बल्कि दोनों का एक जीवंत संगम था. उनके नाटक आगरा बाजार, जिस लाहौर नहीं वेख्या, चरणदास चोर और गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद आज भी समकालीन भारतीय रंगमंच के क्लासिक माने जाते हैं. और इनमें सबसे ज्यादा चर्चित रहा चरणदास चोर, जिसके दुनिया भर में कई देशों में मंचन हुए. और
0: Well, his remarkable works gave voice to the common people and celebrated India's rich folk traditions as well.
1: जी हाँ दोस्तों, और उन्हें हम आज याद करते हैं अपनी ओर से. और इस कार्यक्रम को दोस्तों अगर आप दोबारा सुनना चाहें तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट, दीजिए आज्ञा.
0: नमस्कार.

मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: हाथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया अरचोका भेलकक्ष पेंडारी बोदरई शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये कल्याणपुर कोटबहरा घाघी टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी फोकली महुआ करमडीहा प्रेमनगर कोल्हुआ नवा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर लुंड्रा उदयपुर सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो किशुनपुर घंघरी कुल्हाड़ी कंचनपुर पड़ोली जमीरा मसगा डांडपारा सायर कुमडेवा लक्ष्मण उदर बसवार केदमा जगन्नाथपुर ढोढ़ा गांव कठबुड़ा शिवनाथपुर घासीडी दाती ढाब घटगांव बरडांड चोरकी पानी कंडराजा पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 32 है।

0: ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चराईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, झिमकी, चट्टानपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धरमजयगढ़ वन मंडल की छाल, धरमजयगढ़, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 41 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, करोंधा, जगड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी, सलिहाभाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 96 है। ये बंगुरसिया, जुनवानी, कशडोल, बुलेकेरा, चिमटा पानी, गया, कटाई, पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये तालदादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। किसी भी परिस्थितियों में हाथियों का खेदा करने बिल्कुल ना जाएं। हाथियों से सावधानी बनाए रखें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। समय है कार्यक्रम विवरण का।

श्रोताओं, आइए हम आपको बताएं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में आयोजित श्रोताओं के समक्ष विशेष वार्तालाप कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद आप सुनेंगे आज रात 8 बजे। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम किसान सशक्तिकरण आप सुनेंगे रात 9:25 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा बसंत तिमोथी का वायलिन पर बजाया राग जन सम्मोहिनी। अब से कुछ देर बाद 5:10 पर होगा कार्यक्रम युववाणी। इसमें आजकल में चर्चा का विषय है विश्व महासागर दिवस। साथ ही सुनेंगे क्रम हेलो युववाणी और दृष्टिकोण। 6:30 पर सुगम संगीत की कलाकार हैं राजकुमारी। 7:21 पर होता है किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल। इसमें आज की बात में चर्चा का विषय है फसल के अच्छा पैदावार पर बीजोपचार और महत्व। क्रम आज की सलाह में आप सुनेंगे हल्दी अदरक के उत्पादन ले भरपूर कमाई। इस विषय पर वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव डॉक्टर गुंजन झा की सलाह।

इसके अलावा होगा आज का प्रश्न और छत्तीसगढ़ी गीत। पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर आप सुनेंगे रात 10 बजे। चित्रपट संगीत सुनिएगा 7 बजे और रात 9:15 पर। और अब कल के प्रमुख कार्यक्रम। कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन आप सुनेंगे कल रात 8:30 पर। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम आर्थिक विकास आप सुनेंगे कल रात 9:25 पर। नमस्कार रायपुर, ये कार्यक्रम सुनिएगा रोज की तरह सुबह 7:05 पर। कल सुबह 8:30 पर होगा छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। इसमें आप सुनेंगे कवि गोष्ठी। प्रतिभागी होंगे श्री ईश्वर साहू बंधी, श्री शिव कुमार अंगारे और सुश्री सुनंदा शर्मा। संपादक और प्रस्तुतकर्ता हैं महेंद्र साहू। अजी सुनिए, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 9:00। आलेख सुनीला दास का, प्रस्तुति होगी समीर शुक्ला की। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:40 और रात 8:15 पर कलाकार होंगे दलेश्वर साहू और साथी। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर आप सुनेंगे कल सुबह 10:00। दिन में 11:05 पर आप सुनेंगे कन्नड़ भाषा में समूहगान शिक्षा का कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: जितनी जिनकी पात्रता उतना ही फल पाए, जैसे लोटे में सागर नहीं समाए।
1: हीरा रास्ते में पड़ा सबकी ठोकर खाए, बिना जौहरे रत्न भी पत्थर समझा जाए।
0: जिस हस्ती पर आपने अब तक किया गुरूर, वह सागर में बूंद सा ज्यादा नहीं हुजूर।
1: इन्हीं पंक्तियों के साथ आगाज करते हैं आज की युवाणी का। मैं आपकी रेडियो दोस्त विदिशा वर्मा
0: और मैं दीपाली चंद्राकर, तो स्वागत करते हैं हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार। दीपाली, क्या तुम अनंत और रहस्यमय दुनिया के बारे में जानती हो, जो हमारी धरती के दो तिहाई हिस्सों में फैली हुई है?
0: हाँ विदिशा, मैं जानती हूँ, तुम महासागर की बात कर रही हो। ये वही दुनिया है जिसमें हमारी सांसें, हमारी बूंद बूंद पानी, हमारी जलवायु, ये सब समाई है।
1: हाँ दीपाली, 8 जून 1992 को कनाडा के रियो डी जेनेरिया में आयोजित ग्लोबल फोरम में अंतर्राष्ट्रीय महासागर विकास केंद्र द्वारा इसे पहली बार प्रस्तावित किया गया था।
0: दोस्तों, और आज ही के दिन पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान इसी दिन के विश्व महासागर दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि महासागर हमारी पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा कवर करता है, जिसे मुख्य रूप से 5 महासागरों में विभाजित किया गया है।
1: दोस्तों, ये विभाजन भौगोलिक स्थिति, महाद्वीप

0: की सीमाओं और पानी के बहाव के आधार पर किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे गहरा प्रशांत महासागर है, जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग एक तिहाई हिस्सा कवर करता है।
1: दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर, जो एस आकार का होता है और अमेरिका को यूरोप व अफ्रीका से अलग करता है।
0: तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, जिसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है।
1: चौथा बड़ा महासागर है दक्षिणी महासागर, जो एंटार्क्टिका महाद्वीप को घेरता है।
0: हाँ, और सबसे छोटा और उथला है आर्कटिक महासागर, जो उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है।
1: दोस्तों, महासागर हमारी दुनिया के फेफड़ों की तरह काम करता है और लगभग 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है।
0: हमारे हर दूसरी सांस को ऑक्सीजन समुद्र से आती है। इतना ही नहीं, महासागर धरती के तापमान को संतुलित भी रखते हैं, गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्माहट देते हैं। ये सब समुद्री धाराओं की ही देन है।
1: दोस्तों, महासागर सिर्फ पानी का ढेर ही नहीं, वो लाखों प्रजातियों का घर है। फिर भी हर साल 8 से 10 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा।
0: हाँ, जैसे कि हम पानी की बोतल, चिप्स का पैकेट या कॉफ़ी का डिस्पोजल हम बिना सोचे रास्ते पर फेंक देते हैं और फिर कभी ये नहीं सोचते कि वही कूड़ा समुद्र में जाकर किसी कछुए या किसी मछली के पेट तक पहुंच सकता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, ऐसे कई प्रजातियों के समुद्री जीव हैं जो पिछले 30 सालों में आधे से ज़्यादा खत्म हो चुके हैं, और इसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र का अम्लीय होना।
0: दोस्तों, यह सिर्फ समुद्री जीवों का ही नहीं बल्कि उन मछुआरों का भी संघर्ष है, जो अपनी आजीविका चलाने के लिए समुद्र पर निर्भर रहते हैं। तापमान और ऑक्सीजन के स्तर में बदलाव के कारण जीव ठंडे पानी की तलाश में चले जाते हैं।
1: मानव गतिविधियों के कारण वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का एक बड़ा हिस्सा महासागर सोख लेता है, जिसे समुद्र के पानी का रासायनिक संतुलन बिगड़ जाता है और पानी अधिक अम्लीय हो जाता है। पानी के अम्लीय होने के कारण कुछ जीव ऐसे जैसे सीप, घोंघे के लिए खोल बनाना मुश्किल हो जाता है, जिससे वे खत्म होने लगते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, यदि हम पानी बचाएंगे, बिजली बचाएंगे, कार थोड़ी कम चलाएंगे तो असर समुद्र तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और महासागर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यह समुद्र हमारी दादी नानी जैसे हैं, वो हमें देते तो सब कुछ है पर हमसे लेते कुछ भी नहीं।
1: बिल्कुल दोस्तों, हमारी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि किसी भी तरह के प्लास्टिक का उपयोग कम से कम कीजिए, ताकि महासागरों के साथ हम खुद को भी सुरक्षित रख सकेंगे।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
5: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
6: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
5: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
6: 47 सालों से निरंतर सेवा में
5: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं क्रम हेलो युववाणी, जिसकी रिकॉर्डिंग की गई थी 20 मई को। दिल्ली से महत्वपूर्ण कार्यक्रम रिले किए जाने के कारण इसका प्रसारण 25 मई को नहीं हो पाया था। तो लीजिए सुनते हैं क्रम हेलो युववाणी। श्रोताओं से बातचीत की है अपेक्षा शुक्ला ने, प्रस्तुत करता है धर्मदीप डोंगरे।
7: हेलो युववाणी।
8: मुश्किल है पर इतना नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके। तुम चलो तो सही, एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा। तुम कुछ लिखो तो सही, आगे बढ़ो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे? तुम एक राह चुनो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम चलो तो सही। साथियों, चिलचिलाती हुई गर्मी में सुकून भरी बातें लिए हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त अपेक्षा शुक्ला, बातों का पिटारा लिए क्रम हेलो युवाणी में। तो स्वीकार करें मेरा प्यार भरा।

0: नमस्कार। तो इतने दिनों के इंतजार के बाद आज देखते हैं कि सबसे पहला फोन हमें किन श्रोता ने किया है।
1: हेलो
0: हेलो युवाणी।
1: हाँ मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्कार,
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ मैडम जी, गंडई पंडरिया से।
0: क्या करते हैं पवन कुमार जी आप?
1: मैं तो रेडियो सुनता हूँ मैडम जी सबसे ज्यादा। बहुत पुराना युवाणी का खास श्रोता हूँ मैं तो।
0: जी जी, तो आप कब से सुन रहे हैं रेडियो?
1: 1976 से रेडियो सुनते आ रहा हूँ मैडम जी। क्या है, अपने पिताजी के जमाने से। और जो कि मेरा सबसे ज्यादा लगन युवाणी कार्यक्रम में अभी तक चल रहा है और है युवाणी कार्यक्रम का लगन मुझे सुनने का।
0: जी जी, और कौन कौन से कार्यक्रम आपको पसंद है आकाशवाणी केंद्र से?
1: सबसे ज्यादा पहले युवाणी कार्यक्रम ही सुनता हूँ, उसके बाद फिर आपके पत्र कार्यक्रम है, फोन करे छत्तीसगढ़ की, सुने प्रायः सभी कार्यक्रम सुनता हूँ।
0: जी जी,
1: लेकिन युवाणी कार्यक्रम से के माध्यम से मैडम जी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला।
0: जी, आज सबसे पहला कॉल आपका लगा है हमारे फोन इन कार्यक्रम में।
1: जी जी।
0: तो आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप हमारे श्रोताओं को?
1: राम फिल्म का गीत सुना दीजिए मैडम जी।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छे गीत की फरमाइश की है आपने, तो लीजिए सुनिए आपका ये पसंदीदा गीत।

0: हेलो युवाणी।
1: हेलो युवाणी, नमस्ते दीदी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं ना ग्राम कुटेना पोस्ट पांडेसर जिला गरियाबंसी कुमारी थानेसरी से बोल रही हूँ।
0: क्या करती हैं ज्ञानेश्वरी जी आप?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ।
0: किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं?
1: मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, प्रतियोगिता परीक्षा की।
0: प्रतियोगी परीक्षा की जैसे आप तैयारी कर रही है, तो युवाणी में हमारा एक क्रम आता है सवालों के आईने में।
1: क्रम
0: हाँ, तो जो क्रम सवालों के आईने में है उसके जो प्रश्न रहते हैं वो आपको कैसे लगते हैं और क्या वो उपयोगी है आपके परीक्षा के दृष्टि से?
1: हाँ, उपयोगी है ना दीदी, और बहुत अच्छा लगते हैं। और वही क्रम सवाल जवाब में भी ना वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि
0: बिल्कुल।
1: हाँ,
0: तो इस तरीके से आपका थोड़ा बहुत तो मतलब हमारे केंद्र से हाँ, मदद हो ही जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम
1: हाँ,
0: के लिए
1: हेल्प हो जाती है। हाँ, बहुत हेल्प मिल जाती है दीदी
0: जी। तो आप
1: अच्छा भी लगता है रेडियो सुनने से, सभी नॉलेज मिल जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हाँ,
0: तो आज आप हमें कॉल किए हैं, तो आप कौन से गीत की आप फरमाइश करना चाहेंगे?
1: मुझे ना हाथी मेरे साथी फिल्म का गाना सुना देना ना दीदी।
0: कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: सच की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में, वही वाले।
0: बहुत ही अच्छा गीत आपने चयन किया है। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए सुनिए आप ये आपका पसंदीदा गीत।
2: नफरत की दुनिया को

0: हेलो युवाणी।
1: हेलो, हाँ जी, भगत राम पटेल बोल रहा हूँ मैं, सिंगारवाड़ी गुप्त बिलासपुर छत्तीसगढ़ से।
0: क्या करते हैं भगत राम जी आप?
1: मैं तो कृषक हूँ, और कृषक के साथ साथ मतलब अपना जो बिजली विभाग का भी काम है उसको भी अपना देखते रहते हैं, और बाकी अब सेवा
0: बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बहुत अच्छी। किस तरह की सेवा आप अपने गांव में करते हैं?
1: अब जैसे हम लोग ये चाहते हैं, जैसे बिजली की समस्या है या पानी की समस्या है या फिर किसी भी तरह की समस्या है, तो क्या है, समस्या से दुनिया जूझे रहते हैं, लेकिन उनको हल करने के लिए किस तरह से दिशा देना है। जैसे हम आकाशवाणी से सुनते हैं, हमारी जो युवाड़ी है यही सिखाती है कि कम से कम आप जो सुन रहे हैं तो उसके साथ साथ आप ऐसा सहयोग करिए जिससे आने वाले जो हमारी पीढ़ियां या हमारे बीच के भाई लोग हैं उनकी जो समस्या हल हो जाए।
0: बिल्कुल,
1: तो हर जगह पैसे से काम करना नहीं रहता उचित।
0: बिल्कुल, लोगों को जागरूकता, लोगों के लिए जागरूक करना भी बहुत जरूरी है और जागरूकता फैलाने की भी बहुत जरूरत है।
1: दिशा देना ये भी
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आकाशवाणी सुन रहे हैं इसका कोई मतलब होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आपका कॉल लगा है तो आप कौन से गीत की फरमाइश करना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा दीदी कि जैसे जिस तरह से अभी गर्मी का जो धूप छांव चल रहा है, कभी बरसात तो कभी गर्मी, ऐसी स्थिति में हमको अपने का और अपनों का ख्याल रखना है और किस तरह से खान पान को रखना है, रहन सहन को, जिससे किसी तरह से जो है स्वास्थ्य पे प्रतिकूल असर न पड़े, किस तरह से रहना है। और अब जैसे अभी शादी का सीजन तो चल ही रहा था बहुत जोर शोर से, अभी भी चल रहा है, तो मैं चाह रहा था नजदीक पार का जब तक फेरे पूरे ना हो साथ वाली गीत अगर सुनवा दे तो अच्छा होता।
0: बिल्कुल, कॉल करने के लिए धन्यवाद। लीजिए सुनिए आपका ये पसंदीदा गीत।

0: हेलो युवाणी
1: जी मैडम। हेलो युवाणी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी मैडम, मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से धीरेन्द्र गंधर्व बोल रहा हूँ।
0: क्या करते हैं धीरेन्द्र जी आप?
1: जी मैडम, मैं एक दृष्टि बाधित शिक्षक हूँ और अभिलाषा विद्यालय है राजनांदगांव में, तो वहाँ मैं 1998 से सेवाएं दे रहा हूँ अपनी।
0: तो जिस प्रकार अभी परिणाम आए हैं बोर्ड एग्जाम के, तो आपके स्कूल के क्या परिणाम रहे?
1: जी मैडम, बोर्ड एग्जाम जो है हमारे यहाँ बेहतरीन रहे बच्चों के, और हमारे क्या है मैडम कि ब्लाइंड बच्चे हैं तो उनको अलग से राइटर दिया जाता है, तो इसलिए एक अच्छा राइटर भी देखना पड़ता है, क्योंकि ब्लाइंड केवल प्रश्न के उत्तर देता है, लिखने काम उसका रहता है।
0: बिल्कुल।
1: तो राइटर के पर कहना चाहिए कि हमारा बहुत छुट्टी का रहता है दृष्टि बाधित बच्चों का, इस तरह से हम लोग लगे रहते हैं कि बच्चों को अच्छी तैयारी भी करवाते हैं और अच्छे राइटर भी दिलवाते हैं, ताकि बच्चे अच्छे रिजल्ट ला सके, अच्छे नंबर आ सके उनके।
0: बहुत ही अच्छी बात है ये। तो कैसा रहा आपका, आपके स्कूल का रिजल्ट इस साल का?
1: मैडम, स्कूल का रिजल्ट तो बेहतरीन रहा मैडम, और हर साल रहता है, और हम लोग बराबर मेहनत करते रहते हैं बच्चों के लिए।
0: बिल्कुल। तो आज आप हमें कॉल किए हैं, तो आप कौन से गीत की आप फरमाइश करना चाहेंगे?
1: जी मैडम, एक मेहंदी तो रंग लाएगी फिल्म है, उसका गाना है लता मंगेशकर की आवाज में, डाली से नाता तोड़ के अपना रस रंग निचोड़ के, सुनी हथेली पे खिल जाएगी मेहंदी, तो मेहंदी है रंग लाएगी।

0: हेलो युवाणी।
1: हेलो युवाणी। हाँ मैम नमस्ते।
0: नमस्कार।
1: हाँ मैं देवरी भाटा बारस गन्नूलाल रजक बोल रहा हूँ।
0: क्या करते हैं गन्नूलाल जी आप?
1: मैं कृषि कार्य करता हूँ
0: जी,
1: और उसके बाद में अभी उसी का तैयारी सब चल रहा है। खेत खलिहान का जो है ना खरपतवार, उसको किनारे किनारे का सब खाली करने काम चल रहा है।
0: बिल्कुल हाँ, कुछ ही समय में क्योंकि बारिश का मौसम भी आने वाला है तो ये सब तैयारियाँ पहले से ही।
1: कृषि कार्य करते हैं और साथ में मेरा रामायण मंडली है, उसमें भी जाता हूँ मैं।
0: अच्छा, बहुत बहुत ही बढ़िया है। ये तो आज आपने हमें कॉल किया है, तो आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: भौरे ने खिला फूल फूल कर ले गया राजकुमार वाला।
0: कॉल करने के लिए धन्यवाद। लीजिए सुनिए आपका पसंदीदा गीत।

0: हेलो युवाणी
1: जी। हेलो यारी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं नानगांव से बोल रहा हूँ, केशव कुमार।
0: केशव कुमार जी, आपने इससे पहले कब कॉल लगाया था?
1: 3 माह।
0: क्या करते हैं केशव जी आप?
1: हम तो खेती करते हैं, खेती किसानी। और अभी तो परिवार के यहाँ गांव आए हैं हमारे परिवार में। हम तो आकाशवाणी रेडियो के बहुत बड़े श्रोता शुरू से उनसे आ रहे हैं।
0: कौन सा कार्यक्रम आप पसंद करते हैं?
1: हमको युवानी ही अच्छा लगता है और चौपाल भी अच्छा लगता है खेती किसानी के लिए। वैसे तो सभी बने हैं ठीक ठाक अपन अपन जगह में, लेकिन वो उसी को सुनते आ रहे हैं, सुनते रहे हैं, और अच्छा लगता है मैडम।
0: बिल्कुल। और जैसे कि आप कृषि का काम करते हैं, तो अभी जिस प्रकार की गर्मी पड़ रही है, तो कभी गर्मी है कभी बारिश हो जा रही है, तो आप किस तरीके का हमें सावधानी बरतनी चाहिए?
1: सर पे टोपी और पानी लेकर चलते हैं मैडम, पटका रुमाल सभी को व्यवस्था करते हैं। पानी के अभी तो दिक्कत नहीं है
0: जी।

0: हाँ
1: तो
0: फसल
1: आज
0: इसमें अभी उरीद डाला है, उरीद पकने वाला है अभी खेती में।
1: बिल्कुल।
0: जी
1: तो आज आपका कॉल है, तो आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
0: जिन की ये सफर है तो यहाँ कल राजस्थ करना अंदाज का सुना दो।
1: बिल्कुल, कॉल करने के लिए धन्यवाद। लीजिए, सुनिए आपका ये पसंदीदा गीत।

0: साथियों आगे भी ढेर सारी बातों का वादा करते और मिलते हैं अगले हेलो युवाणी में। क्रम हेलो युवाणी में आप हमसे जुड़ सकते हैं पहले और दूसरे बुधवार को, और हेलो युवाणी का प्रसारण होता है दूसरे और चौथे सोमवार को। हमसे बातें करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर। नंबर नोट कर लीजिए 4003482, 4003483, 4003484, SED कोड 0771 लगाना ना भूलें। साथियों अभी हेलो युवाणी क्रम में आपसे बातचीत कर रही थी मैं, आपकी रेडियो दोस्त अपेक्षा शुक्ला, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं धर्मदीप डोंगरे। इसी के साथ दीजिए मुझे अनुमति और स्वीकारे मेरा नमस्कार।
1: हेलो युवाणी।

0: Hello, super funny.
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे क्रम हेलो युवानी, जिसे प्रस्तुत जिसमें श्रोताओं से बातचीत की थी अपेक्षा शुक्ला ने। प्रस्तुतकर्ता थे धर्मदीप डोंगरे। विचारों की दुनिया भी कितनी अद्भुत होती है। यहाँ हर सोच नई राह दिखाती है, हर अनुभव एक नई सीख देती है और हर दृष्टि जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को उजागर करती है।
2: श्रोताओं, जब अलग अलग अनुभव और भावनाओं शब्दों का रूप लेती है, तब जन्म लेता है संवाद और संवाद से विकसित होता है एक नया दृष्टिकोण।
1: तो आइए इसी बात के साथ शुरू करते हैं क्रम दृष्टिकोण और जानते हैं हमारे दिए गए विषय मानसिक स्वास्थ्य और विज्ञान पर हमें श्रोताओं ने क्या लिखा है।
2: टिकरापारा रायपुर से लता देवी चौहान लिखती है, हमारी असली धरोहर कोई खजाना या धन दौलत नहीं बल्कि हमारा स्वास्थ्य है। एक वक्त था जब हम स्वास्थ्य को केवल शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में देखते थे, मगर आज की इनकी परिभाषा बदल गई है। आज वही व्यक्ति सही मायने में स्वस्थ है जो मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से स्वस्थ है। विज्ञान ने भी यह सिद्ध किया है कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे मस्तिष्क, शरीर और व्यवहार को बहुत प्रभावित करता है। तनाव, चिंता, अवसाद और अत्यधिक दबाव हमारे मानसिक संतुलन को प्रभावित करती है।
1: बहुत ही सुंदर विचार रखे आपने। मानसिक रूप से स्वस्थ होना केवल किसी बीमारी का अभाव नहीं है, बल्कि हमारी भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी दर्शाता है।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने दीपाली। विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित व्यायाम, योग, नींद, ध्यान, पर्याप्त नींद तथा परिवार और मित्रों के साथ सकारात्मक संवाद मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: गांव परसाटोला जिला अंबागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सलोचनी मसिया लिखते हैं, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में खुद को खुश रखें, तनाव से दूर रहें। जिनके मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनकी सहायता जरूर करें, उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास जरूर करें। मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है।
2: अरे वाह, वास्तव में बहुत ही सुंदर विचार रखे हैं आपने। आज की तेज रफ्तार में जिंदगी में लोग अपने में इतने उलझ जाते हैं कि अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना भूल जाते हैं। ऐसे में स्वयं को प्रसन्न रखना और तनाव को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।
1: बिल्कुल, और आज के समय में लोग सफलता की दौड़ में आगे बढ़ने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन कई बार उस दौड़ में मानसिक शांति और संतुलन पीछे छूट जाता है। ऐसे में स्वयं को समय देना, अपनी भावनाओं को समझना और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।
2: शिकारबाड़ी गुटकू से भरतराम पटेल, किशन पटेल का कहना है कि विज्ञान मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने, मानसिक रोगों को रोकथाम करने तथा व्यक्तियों को सामाजिक रूप से स्वस्थ करने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है। यह भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण सुनिश्चित करने, जीवन को चुनौतियों का सामना करने तथा अनुसंधानों तथा तकनीकों का उपयोग करता है।
1: बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक विचार रखे आपने। विज्ञान ने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मनोविज्ञान, तंत्रिकीय विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा की विभिन्न तकनीकों ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया है।
2: बिल्कुल दीपाली, यह कहना उचित होगा कि विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक है।
1: बिल्कुल हाँ विदिशा, और साथ ही हमें पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी नोमेश सिंगरौल का हमें पत्र मिला। यह लिखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य जीवन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो मानव के विचार, भावनाएं और व्यवहार को समझने और तथा संतुलित करने पर केंद्रित है।
2: बहुत ही सुंदर तरीके से आपने मानसिक स्वास्थ्य और उसके बेहतर समाधान बताए हैं। मानसिक स्वास्थ्य की समझ और उसकी देखभाल में विज्ञान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल दोस्तों, आप सभी ने हमें एक से बढ़कर एक पत्र भेजे हैं जिसमें मानसिक स्वास्थ्य और विज्ञान को के रिश्ते को बहुत खूबसूरती से दर्शाया है।
2: बिल्कुल, और आज के समय में पढ़ाई का दबाव, सोशल मीडिया, करियर की चिंता और बदलती जीवन शैली युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक अच्छी बात भी है, जिस तरह हम मोबाइल चार्ज करते हैं उसी तरह दिमाग को भी चार्ज किया जा सकता है।
2: हाँ, वो कैसे?
1: दोस्तों से बात करके, थोड़ा टहल करके, मनपसंद संगीत सुन करके।
2: हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा दीपाली तुमने। विज्ञान हमें कई प्रभावी उपचार बताते हैं, जैसे नियमित व्यायाम, ध्यान, योग, परिवार और मित्रों से संवाद।
1: बिल्कुल, और तो दोस्तों चलिए हम छोटा सा एक संकल्प लेते हैं कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को उतना ही महत्व देंगे जितनी अपनी शारीरिक स्वास्थ्य को देते हैं।
2: तो ये थे हमारे श्रोताओं के क्रम दृष्टिकोण पर कुछ खास विचार। उम्मीद है आपको ये अलग अलग नजरिए जरूर पसंद आए होंगे। अब आपको बता देते हैं अगला विषय जिस पर आप हमें भेज सकते हैं अपने विचार। अगला विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मित्र या चुनौती।
1: तो देर किस बात की, बेझिझक दिल की बात, क्योंकि आपका हर विचार हमारे लिए खास है। हमारा दिया गया विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मित्र या चुनौती पर। और हमें हमारा पता है क्रम दृष्टिकोण युवानी अनुभाग द्वारा के निर्देशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर, पिन कोड है 492001।
2: और हमारी ईमेल आईडी है AIRYO

0: outh9@gmail.com. सब्जेक्ट कोड है 57, सब्जेक्ट कोड लगाना ना भूलें।
1: तो यहीं के साथ समाप्त होता है क्रम दृष्टिकोण। तो दोस्तों, इन खूबसूरत बातों के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले आपको बता देते हैं कल के आकर्षण। कल की वाणी सजेगी छत्तीसगढ़ी में, जिसमें आप आनंद लेंगे क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत का। अब दीजिए अनुमति आपकी दोस्त पाली चंद्राकर
0: और विदिशा वर्मा को। स्वीकार है हमारा
2: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को है समाचार, आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर के

0: प्रदान कर रही हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान प्रदान किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पाराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर खेद व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के

0: नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। बम्बई शेयर बाजार का समिति सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्डिफ में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 180 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 75 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
2: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं, इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: आकाशवाणी का ही रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री हा गरीब मन के हित में सरकार के 12 बछर के विकास यात्रा ला करे हे रेखांकित। गरीब कल्याण और वंचित वर्ग मन ला ए बदलाव के केंद्र बिंदु में राखेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में जवान मन ला दिन वीरता पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के 3 झीन जवान घलो शामिल। और मौसम विभाग हवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कोनो कोनो जगह में जोरदार हवा गरेर के संग वर्षा होए के देहे चेतावनी। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा गरीब मन के हित में सरकार के 12 बछर के विकास यात्रा ला रेखांकित करे हे। प्रधानमंत्री हा आज कहिन कि ये दौरान देश हा कतकोन बदलाव के साक्षी बने के संगे संग गरीब कल्याण और वंचित वर्ग मन ला ए बदलाव के केंद्र बिंदु में राखे गए हे। उमन कहिन कि अंत्योदय जम्मू बेरा सरकार बर प्रेरणा स्रोत रहीस और प्रयास रहीस कि विकास के फायदा पाछू छूटे लोगन मन तक पहुंचे। प्रधानमंत्री हा कहिन कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसन हर पहल के उद्देश्य लोगन मन बर गरिमा और मौका देवाना हवय। प्रधानमंत्री हकीन कि गरीब और वंचित मन के उत्थान के संकल्प सबका साथ सबका विकास के मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब के सेवा ओकर जिंदगी में बेहतरी के संगे संग देश के विकास, यही सब सरकार के सबले बड़का प्राथमिकता रहीस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में जवान मन ला वीरता पुरस्कार दिन। एमा छत्तीसगढ़ के 3 झीन जवान घलो शामिल है। असम राइफल में पदस्थ जवान भोजराम साहू ला मणिपुर में आतंकी मन के संग मुठभेड़ में साहस और वीरता पर शौर्य चक्र ले सम्मानित करेगी। तो उन्हें छत्तीसगढ़ में नक्सल अभियान के दौरान बड़का भूमिका निभाया पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख ला घलो शौर्य चक्र ले सम्मानित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA हा 21 जून के हुवैया नीट UG पुनर्परीक्षा पर परीक्षा मन के शहर के सूचना जारी कर दे है। पंजीकृत उम्मीदवार मन आधिकारिक वेबसाइट मा लॉगिन करके अपन परीक्षा शहर के जानबा ले सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 बछर पूरा होए के मौका मा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हा काली ले राष्ट्रव्यापी समारोह के शुरुआत करी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हा उद्घाटन समारोह के अध्यक्षता करी। ए मौका में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मन में जागरूकता और जनसंपर्क अभियान चलाए जाही। जानबा के मुताबिक प्रधानमंत्री हा 9 जून 2016 के ए अभियान के शुभारंभ करे रहिन। एमा गर्भवती माई लोगिन मल्ला मुफत में स्वास्थ्य सेवा दे जाते। देश के विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी हा आज अपन 90 बछर पूरा होए के उत्सव मनावत है। बछर 1936 में आजे के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस के नाव बदल के ऑल इंडिया रेडियो राखे रहीस। बछर 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के नावला बदल के आकाशवाणी करेगी। आकाशवाणी हा आज 591 रेलवे स्टेशन मन के संचालन करत है। समाचार एक बार सुन लो। आकाशवाणी हा आज 591 रेडियो स्टेशन मन के संचालन करत है। आकाशवाणी के प्रसारण

0: 23 ठिन भाषा और 146 बोली में करे जाते। आकाशवाणी के ध्येय वाक्य हवय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह के मौका में रायपुर में आज विशेष प्रदर्शनी और व्याख्यान कार्यक्रम होइस। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के 8 गैलरी में ए विशेष प्रदर्शनी में ऐतिहासिक दस्तावेज और अभिलेख मन के छायाचित्र दिखाएगी। प्रदर्शनी रोजे बिहनिया 11 बजे ले संझा 5 बजे तक आम लोगन मन पर खुला रही। तो उन्हें 9 जून के अभिलेख मन के संरक्षण और ओखर महत्ता ऊपर विशेष व्याख्यान राखे गए है। कार्यक्रम के उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहर मल्ला सहेज के राखे के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। प्रदर्शनी 12 जून तक चली। संस्कृति विभाग डहर ले सरगुजा संभाग के उदयपुर और लखनपुर में आज ले आकार 2026 पारंपरिक और शिल्प और कला शिविर आयोजित करे जाते। 14 जून तक चलैया ए शिविर में युवा मल्ला 14 ठिन पारंपरिक कला विधा के प्रशिक्षण दे जाही। जेकर उद्देश्य लोक कला और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण के संग नवा पीढ़ी मल्ला सांस्कृतिक विरासत ले जोड़ना है। प्रशिक्षण अनुभवी कलाकार और कला गुरु मंडहर ले दे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़बो बाजे समाचार को थी। धमतरी पुलिस ने 480 किलो गांजा के संग 5 झीन तस्कर मल्ला गिरफ्तार करे है। जब्त गांजा के कीमत 2,45,00,000 रुपया ले ज्यादा के बताए जाते। पुलिस के मुताबिक मुखबिर ले सूचना मिले के बाद बस्तर ले रायपुर आवत एक ठिन कार और पिकअप गाड़ी के जांच करेगी। इस दौरान एक गाड़ी मन में अब्बड़ मात्रा में सफेद बोरी में ले जात गांजा बरामद करेगी। पुलिस ने बताया कि आरोपी मन गांजा ला रायपुर और उत्तर प्रदेश में बेचे पर ले जात रहीन। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में हाथी के हमला में 2 लोगन के मौत हो गए है। मिले जानबा के मुताबिक गुरु घासीदास तमोर पिंगला राइगर रिजर्व के देवसील गांव में रद्दा बनाए के काम चलत रहीस। पाछू रतिहा ए मजूर मन काम सिराए के बाद आराम करत रहीन। इस दौरान हुरहा ए हाथी मजूर मन ऊपर हमला कर दिन। हमला में 1 मनखे के मौकच में मौत हो गए तो उन्हें 1 आने मनखे के मौत अस्पताल ले जात खानी हो गए। वन विभाग मामला की जांच करत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली रायपुर में 36वां राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर काया किंग केनोइंग प्रतियोगिता के मस्कट पहाड़ी मैना के भी मोचन करीन। ये प्रतियोगिता 12 ले 14 जून तक नवा रायपुर के सेंध लेक में होही। मुख्यमंत्री विश्वास जतैन कि ऐसा आयोजन ले खिलाड़ी मन ला नवा प्रेरणा दीही और प्रदेश के खेल पहचान ला और मजबूती मिली। हाथी मन के मौत के कारण के वैज्ञानिक जांच, वन्यजीव अपराध के पहचान और संरक्षण जैसन प्रयास ऊपर रायगढ़ में 2 के विशेष प्रशिक्षण रखेगी, जिसमें प्रदेश के 78 वन अधिकारी और पशु चिकित्सा विशेषज्ञ मन भाग लिन। शिविर में विशेषज्ञ मन बताएं कि छत्तीसगढ़ में ए बेरा करीबन 450 हाथी घूमत हुए। रायगढ़, जसपुर, कोरबा और सूरजपुर जैसन जिला में हाथी मन के बाढ़त गतिविधि ला देखत ए प्रशिक्षण रखेगी। विशेषज्ञ मन बताएं कि हाथी मन के मौत के सही जानकारी मिले ले अवैया बेरा में ऐसा घटना मल्ला रोके और वन्य जीव संरक्षण के प्रयास मल्ला और ज्यादा प्रभावी बनाए जा सकी। ए मौका में वन मंत्री केदार कश्यप कहिन कि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के माध्यम ले हाथी के संगे संग जम्मू वन्य जीव मन के सुरक्षा ला बने ढंग के राखे के प्रयास सरकार करत है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कोतिले काम करत डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर चेयर शोध पीठ के स्थापना के प्रस्ताव ला मंजूरी दे दी है। डॉक्टर अंबेडकर चेयर के स्थापना ले विश्वविद्यालय में शोध प्रकाशन, राष्ट्रीय संगोष्ठी, कार्यशाला, जन जागरूकता कार्यक्रम और PhD कार्यक्रम ला नवा दिशा मिली। मौसम के हाल। मौसम विभाग या 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कोनो कोनो जगह में जोरदार हवा गरेर के संग वर्षा होने की चेतावनी दे है। इस दौरान करीबन 50 ले 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार ले तेज हवा चल सकते। उन्हें कोनो कोनो जगह में गाज गिरे की संभावना बताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अवैया 3 ले 4 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ में पहुंच सकते, जेकर बाद 12 जून ले प्रदेश में

0: एंड हंगली वर्षा होने की संभावना है। यही बीच आज राजधानी रायपुर के संगे संग कुछ एक जिला में हुरहा मौसम बदलिस और तेज हवा के संग हल्का वर्षा होइस। अब थोरकुन समाचार सार मा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक काली बिहनिया 11 बजे नवा रायपुर अटल नगर के मंत्रालय में होही। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपन बस्तर प्रवास के दौरान आज सुकमा में अमृत मिशन ले बनाए जात वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कामकाज के निरीक्षण करिन, संगे संग सबरी नदी ऊपर बनत इंटेक वेल के काम लघलो देखिन। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रधानमंत्री है गरीब मन के हित में सरकार के 12 बछर के विकास यात्रा ला करे है रेखांकित। गरीब कल्याण और वंचित वर्ग मल्ला ए बदलाव के केंद्र बिंदु में राखेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में जवान मल्ला दिन वीरता पुरस्कार छत्तीसगढ़ के 3 झीन जवान घलो शामिल। और मौसम विभाग है वैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कोनो कोनो जगह में जोरदार हवा गरेर के संग वर्षा हो के देहे चेतावनी। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:20 होने को हैं। संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
2: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका साधना शर्मा। इदानीं मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् अन्त्योदयस्य भावनया प्रेरितानां निर्धनजनानां कल्याणम् एव गत 12 वर्षेषु शासनस्य नीतिनिर्माणस्य आधारः। पश्चिम बंगाल राज्ये आयुष्मान प्रधानमन्त्री भारत जन आरोग्य योजना प्रवर्तिष्यते। दिल्ली उच्च न्यायालयेन CBSE बोर्ड इत्यस्य 12 कक्षायाः उत्तर पुस्तिकानां आंकिक मूल्यांकन प्रणाली विषये अनियमितता संदर्भे केन्द्र सर्वकाराय तथा CBSE बोर्ड इत्यस्मै सूचना पत्रं प्रदत्तम्। भारतेन पश्चिम एशिया क्षेत्रे पुनः प्रवृत्तानां आक्रमणानां विषये गभीरा चिंता प्रकटिता। आकाशवाणी सेवायाः 90 वर्ष प्रपूरणम्। अपि च क्रिकेट क्रीडायां भारत दलम अफगानिस्तान दलम एकेन वारेणैव 300+ धावनांकैः पराजित्य स्वस्य बृहत्तमं 5-दिवसीय विजयम् अभिलेखितवत्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् अन्त्योदयस्य भावनया प्रेरितानां दरिद्रजनानां कल्याणम् एव गत 12 वर्षेषु शासनस्य नीतिनिर्माणस्य आधारः अभवत्। तेन उक्तं यत् अस्मिन् काले भारतदेशः बहूनि परिवर्तनानि अनुभूतवत्, येषां केन्द्रे निर्धनाः वञ्चिताश्च जनाः आसन्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् जनधन योजना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरणं, स्वच्छ भारत अभियानं, PM आवास योजना, जल जीवन मिशन इति तथा आयुष्मान भारत योजना इत्यादीनां मुख्योद्देश्यम् अस्ति यत् जनानां कृते गौरवपूर्णं जीवनम् अवसराणां सुनिश्चयं कर्तुम् अपि आसीत्। निर्धनजनानां जीवनस्तरे स्वस्य उन्नयने प्रौद्योगिक्याः अपि महत्वपूर्णा भूमिका अभवत्।
3: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
2: अद्य आरभ्य पश्चिम बंगाल राज्ये आयुष्मान प्रधानमंत्री भारत जन आरोग्य योजना प्रवर्तिष्यते। एतेन सा योजना सम्पूर्णेऽपि देशे कार्यान्विता भविष्यति। स्वास्थ्य सेवा विस्तार दिशि महत्वपूर्णं पदम् इदम्। राज्य सर्वकारः अद्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयनार्थं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणेन सह दिल्ली नगरे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यति। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा तथा पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी उपस्थितौ भविष्यतः। दिल्ली उच्च न्यायालयेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यस्य 12 कक्षायाः उत्तर पुस्तिकानां आंकिक मूल्यांकन प्रणाली विषये

0: ऊन षोडशोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रारब्धः। अस्य उद्देश्यं गर्भवतीनां महिलानां कृते निःशुल्कं गुणवत्तायुक्तं तथा प्रसवपूर्व स्वास्थ्यसेवानां प्रदानम् अस्ति। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीयस्वास्थ्यमन्त्री जेपी नड्डा 75 रूप्यकस्य स्मारकमुद्रां 5 रूप्यकस्य डाकपत्रं च प्रसारयिष्यति। विश्व महासागर दिवसस्य अवसरे पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह जनान महासागर संरक्षणस्य समुद्री जीवरक्षणस्य च संकल्पं कर्तुं आहूतवान्। सः अवदत् यत् महासागराः विश्वस्य राष्ट्राणि परम्पराश्च परस्परं संयोजयन्ति। भावि परम्पराणां कृते स्वच्छजलस्य स्वस्थ पर्यावरणस्य च संरक्षणार्थं सर्वैः सहकार्यं करणीयम् इति तेन उक्तम्। क्रिकेट क्रीडायां भारतस्य ऐतिहासिकः विजयः। क्रिकेट क्रीडायां भारतदलं अफगानिस्तान दलं एकया एव पर्यायया 300+ धावनांकैः पराजित्य स्वस्य बृहत्तमं 5-दिवसीय विजयं अभिलेखितवत् इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ही रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। कलाकार हैं राजकुमारी। इनकी आवाज में पहले सुनिए जिगर मुरादाबादी का कलाम।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार की मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोट स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। लीजिए अब सुनिए राजकुमारी की आवाज में दाग की गजल।

0: राजकुमारी की आवाज में आप सुन रहे थे दाग की ये रचना। इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ही रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: बंधु, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
6: रुक जा बुद्धू।
7: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
5: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
7: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
8: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
9: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
8: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
9: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
8: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
9: क्यों?
8: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
10: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
11: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
12: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
11: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
12: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
11: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
12: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
10: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
13: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
12: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
13: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
12: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता

0: कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के भोजराम साहू को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत करेगा। और धमतरी पुलिस ने करीब 2.5 करोड़ रुपए के 480 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित

0: को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत करेगा और धमतरी पुलिस ने करीब 2.5 करोड़ रुपए के 480 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
1: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इनमें छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डोरीठेमा गांव के रहने वाले भोजराम साहू भी शामिल हैं। भोजराम साहू असम राइफल्स में राइफलमैन के पद पर हैं। उन्होंने मणिपुर में आतंकियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था। राष्ट्रपति ने आज उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया।
2: राइफलमैन भोजराम साहू, तीसरी बटालियन आसाम राइफल्स, 15 नवंबर 2024 आप भारत म्यांमार सीमा रेखा के समीप तैनात घुसपैठ विरोधी दस्ते के स्काउट की भूमिका निभा रहे थे। अपनी टुकड़ी को अचानक एक सघन विस्फोट की चपेट में आया देख व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप निडरता से आगे बढ़े तथा सटीक निशाने से 2 विद्रोहियों को घायल कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच गोली लगने से जख्मी होने के बावजूद आपने एक और विद्रोही को घायल करते हुए उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में 3 विद्रोहियों के मारे जाने की पुष्टि की गई एवं भारी मात्रा में हथियार तथा गोला बारूद भी बरामद किया गया। अद्भुत वीरता तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन भोजराम साहू।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल 9 जून से राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता और जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जाएंगी ताकि गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को अभियान के अंतर्गत उपलब्ध निःशुल्क सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस अभियान का शुभारंभ किया था। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूची जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हाथियों की मृत्यु के कारणों की वैज्ञानिक जांच, वन्य जीव अपराधों की पहचान तथा संरक्षण संबंधी प्रयासों पर रायगढ़ में 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के 78 वन अधिकारियों और पशु चिकित्सा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। शिविर में विशेषज्ञों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लगभग 450 हाथी विचरण कर रहे हैं। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि आधुनिक तकनीकों, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के माध्यम से हाथियों सहित सभी वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इस मौके पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पांडे भी मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। धमतरी

इसने 480 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 2,45,00,000 रुपए से अधिक आंकी गई है। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिलने पर बस्तर से रायपुर आ रही एक कार और पिकअप वाहन की जांच की गई। इस दौरान इन वाहनों में भारी मात्रा में बोरियों में ले जाया जा रहा गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी गांजे को रायपुर और उत्तर प्रदेश में खपाने की फिराक में थे। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में हाथी के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के अंतर्गत देवसील गांव में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। बीती रात श्रमिक काम खत्म करने के बाद आराम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक हाथी ने श्रमिकों पर हमला कर दिया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। वन विभाग मामले की जांच कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह के अवसर पर रायपुर में आज से विशेष प्रदर्शनी और व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय की आर्ट गैलरी में इस विशेष प्रदर्शनी में ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखों के छायाचित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रदर्शनी प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आमजन के लिए खुली रहेगी। वहीं 9 जून को अभिलेखों के संरक्षण और उनके महत्व पर विशेष व्याख्यान आयोजित होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना। यह प्रदर्शनी 12 जून तक चलेगी। संस्कृति विभाग द्वारा सरगुजा संभाग के उदयपुर और लखनपुर में आज से आकार 2026 पारंपरिक शिल्प और कला प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। 14 जून तक चलने वाले इस शिविर में युवाओं को 14 पारंपरिक कला विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य लोक कलाओं और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण के साथ नई पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। प्रशिक्षण अनुभवी कलाकारों और कला गुरुओं द्वारा प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन ने दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में डॉ. अम्बेडकर चेयर शोधपीठ की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। डॉ. अम्बेडकर चेयर की स्थापना से विश्वविद्यालय में शोध प्रकाशन, राष्ट्रीय संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, जन जागरूकता कार्यक्रम, क्षेत्राधारित अनुसंधान और PhD कार्यक्रमों को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायकिंग केनोइंग प्रतियोगिता के मस्कट पहाड़ी मैना का विमोचन किया। यह प्रतियोगिता 12 से 14 जून तक नव रायपुर के सेंध लेक में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह आयोजन खिलाड़ियों को नई प्रेरणा देगा और प्रदेश की खेल पहचान को और मजबूत बनाएगा। और पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश होने की चेतावनी दी है। इस दौरान करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में छत्तीसगढ़ में दस्तक देने की संभावना है। इसके बाद आगामी 12 जून से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होने के आसार हैं। इस बीच आज राजधानी रायपुर सहित कुछ जिलों में आज दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक कल 9 जून को सुबह 11 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। उप मुख्यमंत्री अरुण सावन ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान आज सुकमा में अमृत मिशन के अंतर्गत बनाए जा रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही शबरी नदी पर निर्माणाधीन इंटेक वेल के कार्यों को भी देखा। दुर्ग पुलिस ने जामुल थाना क्षेत्र से एक महिला को गिरफ्तार कर उसके पास से 10,00,000 रुपये का मादक पदार्थ बरामद किया है। और राजनांदगांव जिले के ईरा गांव में एक नाबालिग बालिका के स्वास्थ्य परीक्षण में गंभीर लापरवाही बरते जाने के आरोप में राज्य शासन ने खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. एन.के. टंडन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के भोजराम साहू को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से राष्ट्रीय समारोह की शुरुआत करेगा। और धमतरी पुलिस ने करीब 2.5 करोड़ रुपए के 480 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: बंधू, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का लिखा गीत। फिल्म सागर के लिए संगीत आर डी बर्मन का था। चित्रपट संगीत में अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में फिल्म लावा का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म राम लखन से। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल, मनहर उदास और साथियों की।

सपने साजन के। इस फिल्म का गीत आपने सुना अलका याग्निक और मुकुल अग्रवाल की आवाजों में। समीर के लिखे गीत को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। इसके साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। चित्रपट संगीत आप हमारी इसी सभा में रात 9:15 पर भी सुन सकते हैं। मीडियम व्यू और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल।

0: मनीषा दीदी राम राम।
1: राम राम सरिता, संगे संग चौपाल सुनैया, जम्मू संगवारी मन लगला, हमर दोनों के राम राम
0: राम राम।
1: सरिता, हमर खेती किसानी मा एक ठिहाना है नहीं, जैसे खाहू अन्न वैसे हो ही मन, और जैसे बोबे बीज वैसे हो ही चीज। माने यदि हमला उत्पादन अच्छा चाहिए तब भाई बीज भी बढ़िया होना चाहिए।
0: और दीदी, बीज के संग संग बीज बोए के तरीका भी सही होना चाहिए, है नहीं। यदि हम चाहत हन कि हमार फसल अच्छा होवे, तो फसल ला बीमारी से भी बचाना है, फसल की गुणवत्ता भी उत्तम होना है, तो हमला बीज के चुनाव के समय और बीज बोए के समय कुछ बात के ध्यान रखना बड़ जरूरी है।
1: हाँ संगवारी हो, उत्तम किस्म के बीज के चयन करन, संगे संग बीज बोए के पहली ओला उपचारित भी जरूर करन।
0: संगवारी हो, बीज के बीज जो है वो खेती के न्यू है। हमला उत्तम किस्म के बीज के चयन से बहुत अकन फायदा मिलते, जैसे कि बीज जो है वो प्रमाणिक होना चाहिए, और प्रमाणिक बीज जब हम बोथन तब 15-30% ज़्यादा उपज होते। अच्छा किस्म के बीज जब हम बोथन तो वो रोग से लड़े के क्षमता भी वो अच्छा होते, और दवाई पानी के खर्चा हमार बाद जाते। दीदी, बात आगू हम नऊ करबो, फिर सुनथन ये संदेश ला।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मो प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
0: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 बच्चर ले सब लग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
2: सरिता, हमन हा बीजा के जिन बोए के विधि के बारे में गोट करत रहे ना, तब बीजा ला

0: के पहले बीजोपचार भी करना हमर मन बर फायदेमंद है नहीं। बीजोपचार के मतलब होते कि बोवाई के पहली बीजा ला रोग कीट और पोषण बर तैयार करना।
1: दीदी बीजोपचार करे ले हम फसल ला कई ठन जीवाणु जनित या कवच जनित जो रोग है ओकर से बचा सकथन और साथ ही साथ जो खेत में कई ठन माटी में रोग रथे ओकर से भी बचा सकथन। यदि हम बीज ला उपचारित नहीं करबो त 30% बीज खेत में ही सड़ जाते और उपचारित जब करथन और बीज ला बोथन तो 95% तक जो पौधा है वो जाग बेच करते।
0: हाँ देख है नहीं, उपचारित बीज ले निकले पौधा मजबूत होते और सूखा गर्मी माने मौसम के मार ला वो बहुत हद तक झेल लेते
1: और रोग बीमारी होए के बाद जो दवा छिड़काव होते बार बार हमन ला करना पड़ते ना ओकर खर्चा से भी हम बाँच सकथन। हम बीजोपचार करके ये खर्चा ले तो बाँचथन ही संगे संग पोषण और बढ़वार बर भी बीजोपचार जरूरी है।
0: हाँ सरिता, अब बात आते है कि बीजोपचार करे के तरीका का हरे, तब मुख्य रूप ले 3 प्रकार के तरीका है। पहला है सौर उपचार। सौर उपचार है नहीं, जेमा बीजा ला 1-2 घंटा पानी मा भिगोना है फिर निकाल के भुइया मा मई जून के घाम मा है नहीं फैला के सुखा के उपचारित कर सकथन। ये विधि ले गेहूं और कपास के बीज ला उपचारित करे के काम आ सकते हैं।
1: तो सौर विधि जो है कपास और गेहूं काम आते वैसे शुष्क बीजा ला गरम करके उपचारित करना यही एक ठन विधि है। जेला हम टमाटर के बीज में उपचारित कर सकथन। टमाटर के बीज ला यदि बोना है तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में 3 दिन तक रखे जाते और कर से ओमे मोजाइक विषाणु जो होते वो मर जाते और गर्म पानी में भिगो के भी कई ठन जो बीजा है वो उपचारित करे जाते। गोभी के जो बीज है या गेहूं के जो बीज है ओला गरम पानी में भिगा के और नमकीन पानी से उपचारित करथन तेकर से बीजोपचार होते और कई ठन जो बीमारी है कर वो होए के संभावना कमती हो जाते।
0: हाँ अब एठनौ विधि है वो हरे रासायनिक विधि। एमा कवकनाशी और कीटनाशी के प्रयोग करे जाते। एमा डस्टिंग माने सूखा पाउडर मिला के या घोल में डुबा के या लेप लगा के उपचारित कर सकथन।
1: तो दीदी ये तो हुई दूसरा विधि और तीसरा विधि में होते कल्चर विधि। जीवाणु कल्चर जो होते जैसे कि राइजोबियम है फास्फोरस विलयकारी जीवाणु है या एजिटोबैक्टर से उपचारित हम बीजला करथन।
0: सरिता बीजोपचार बर सबले बढ़िया और जैविक विधि में ट्राइकोडर्मा के उपयोग कवकनाशी है नहीं विधि ले कवकनाशी उपयोग हमन उपचार कर सकते हैं।
1: बीजोपचार करे के बाद ये बीज ला 24 घंटा के भीतर उपयोग करना बहुत जरूरी है यानी ओला 24 घंटा के अंदर बोना है अन्यथा ये का होते कर असर जो है वो कम हो जाते और बीजोपचारित जो बीज है ओला गीला जगह में नहीं राखन संगवारी हो। जतका बीज है जतका ला हमला बोआई करना ओतके बीज ला हमला उपचारित करना है। ज़्यादा बीज ला उपचारित करके रखना भी नहीं है। उपचारित बीज ला पशु या घर में खाए बर उपयोग नहीं करना है। धोखा से भी पशु खा लिस तो ला नुकसान हो सकते घर में मनखे मन खा लिस तो वह मन ला नुकसान हो सकते एकरे से ती एकर भंडारण करके भी नहीं रखना चाहिए। जे दिन हम ला बोना है उही दिन उपचारित करो उही दिन ओला उपयोग कर डरो।
0: हाँ और उपचारण जिन है ना तेन बंद कमरा में नहीं करना है और दस्ताना के उपयोग करना है। मुंह नाक ला अच्छा से तोप लेवन और काम खत्म होए के बाद साबुन ले अच्छा से हाथ गोड़ मूला धो लेवन।
1: मतलब सावधानी भी जरूरी है। जैसे दवाई छिड़के एक बेर हमन सावधानी रखथन वैसने जो बीजोपचार करथन तेनो बखत हमन ला सावधानी बड़ जरूरी है। संगवारी हो बीजोपचार जो बीज है ओला बोए के जो समय है वो 24 घंटा के हैं तो ये ला ध्यान रखना है कि वो समय के अंदर ओला बोलेवन। तो संगवारी हो उम्मीद करथन कि आप मन बीजोपचार जरूर करूँ बीज ला बोए के पहली। अभी तो धान के बोआई होना छे है नहीं और दीदी अतका गोड़ बात कर लें तो सुनथन एक ठन सुघर संगीत ला जिला स्वर देहे गरिमा दिवाकर मन।

0: गरिमा दिवाकर के स्वर में अभी सुनें ये सुघर अकन गीत ला।
1: सरिता हमन हा बीजोपचार के गोट करत रहे है नी, फिर वैसने कुछ कुछ चीज ऐसे हरे जैसे हमन हा ओकर जरूरत रोजेज पड़ते है नी, जैसे मसाला के रूप में हो गए तो हल्दी अदरक ऐसे कुछ चीज हरे जेकर हमन ला रोजेज के जरूरत पड़ते है।
0: हाँ, मतलब एकर मांग
1: बारह महीना रहते
0: है और एकर व्यावसायिक खेती करके हमार किसान भाई मन बढ़िया लाभ कमा सकते। तो संगवारी हो, आज के सलाह में आज हमन यही बारे में यही संबंध में जानकारी सुनबो। विषय है अदरक हल्दी के उत्पादन ले भरपूर कमाई और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गुंजन झा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव ले। और संग गोट बात करत है मनीषा चंद्रवंशी।
2: खेती में सफलता के असली राज माटी की सही तैयारी में छुपे हावे। अगर गर्मी के समय में खेत के माटी ला गहरी जुताई कर ले जाए तब माटी भुरभुरा बनते, कीट रोग नष्ट हो जाते और पानी धारण करे के क्षमता बढ़ जाते। और जब यही तैयार माटी में हमन हल्दी और अदरक जैसा नकदी फसल लगाथन त उत्पादन घलोक बढ़ते और आमदनी में घलो जबरदस्त बढ़ोतरी होते। यानी कि खेती सिर्फ मेहनत नहीं हारे बल्कि सही जानकारी और सही तरीका के खेल घलोक है। गर्मी के मौसम में गहरी जोताई एकर संग हमन हल्दी और अदरक के भरपूर कमाई कैसे ले सकथन ये विषय में विस्तृत जानकारी दे खातिर आज हमर बिछावे डॉक्टर गुंजन झा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव। सबले पहले मैडम आप मन के हमर कार्यक्रम में स्वागत है। राम राम।
3: राम राम, नमस्कार
2: मैम। सबले पहले आप बताते हो कि हल्दी और अदरक के खेती पर कौन प्रकार के माटी सबले बढ़िया होते हैं?
3: उमट मिट्टी जो बोली जाती है, जिसका पीएच लेवल जो होता है वो लगभग 5.5 से 7 के बीच में हो, ऐसी मृदा जो है वो अच्छी मानी जाती है और जिसमें जल निकास की क्षमता जो है वो अच्छे से हो, वैसी मृदा को आप यदि चुनाव करते हैं तो अदरक और हल्दी की खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है।
2: अच्छा, जैसे हम गोट करत रहे हैं कि माटी के जोताई है तो ग्रीष्मकालीन में अगर हमन माटी की तैयारी अगर हमन कर लेते हैं तो का एकर फायदा भी हमला हल्दी और अदरक के खेती में मदद मिली?
3: जी जी बिल्कुल। आपका ये जो हम गहरी जुताई की बात करते हैं वो हर एक फसल के लिए बहुत उपयोगी होता है, चाहे वो हल्दी अदरक हो चाहे धान की खेती हो, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है, चाहे वो सब्जियों की खेती हो। तो हमारा गहरी जुताई अपने आप में एक बहुत अच्छी कृषि की जो तकनीक है जो सभी फसल के लिए के उत्पादन को बढ़ाती है। तो आप के साथ यदि आप हल्दी अदरक की खेती करना चाह रहे हैं तो वाकई में यदि हम गहरी जुताई को अभी करते हैं और साथ में हम प्रो ट्रे में अपने पौधे को तैयार कर लेते हैं तो हम मान के चले हमारी मृदा भी बहुत अच्छे से तैयार होगी और साथ में एक महीने पहले हमारे पौधे जो है वो हल्दी अदरक के प्रो ट्रे में तैयार हो जाएंगे।
2: मैम जिसे ये फसल के हमला बुवाई करना है तो एक सही समय आप बताते हो?
3: जी जी, 15 मई से 15 जून जो है इसका सही समय माना जाता है। जैसे ही आपका पहला मानसून आता है उसके पहला जो बारिश होती है उसके पश्चात इसे लगा दिया जाए तो बहुत ही अच्छा समय होता है उसके लिए लगाने का।
2: तो जैसे आप मन बोले कि प्रो ट्रे में हमन पहले लगा लें तो ओला हमन डायरेक्ट भुया में लगाए के समय हरे की एला थोकन विस्तार ले बताते?
3: जी जी, देखिए जैसे प्रो ट्रे में हमने बताया तो आपको अभी जैसे हमको 15 मई से 15 जून का समय मैंने बताया तो अभी इसके लिए टाइम है हमारे पास, लेकिन हमको हमारे पास बीज की उपलब्धता कम है यदि तो हम उन बीजों को उसका लगभग 20 से 25 ग्राम के टुकड़े तैयार कर लें जिसमें लगभग 1 से 2 आंखें हों और उसको लेके हम बीज का उपचार कर लें रेडोमिल गोल्ड से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के आधे घंटे के लिए डुबा दें और निकालने के पश्चात छाए में

0: करके उस बीज को एक एक प्रोट्रे में, लगभग एक प्रोट्रे आती है जिसमें 98 से 104 उसमें कटोरियां बनी होती है जिसमें कि आपको लगाना होता है, तो उसमें आपको वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट ये दोनों को आधी आधी मात्रा में बराबर मात्रा में मिलाना है और उसका मिश्रण तैयार करके आपका प्रोट्रे में भरना है। और भरने के पश्चात बहुत अंदर में आपको उसके राइजोम को टुकड़ों को नहीं लगाना है, ऊपर में ही रखना है, फिर ऊपर से आपको वर्मी कंपोस्ट से इसको ढक देना है। और ये जो है आपको लगभग 15 से 20 दिन पहले करना होता है, जैसे 15 दिन बाद इसमें जर्मिनेशन आना चालू हो जाता है और लगभग 30 से 40 दिन में आपके पौधे जो है वो तैयार हो जाते हैं रोपा लगाने के लिए, ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए। तो इस प्रकार से आप सीधा एक महीने के तैयार पौधों को ट्रांसप्लांट करते हैं जिससे आपको जल्दी उत्पादन प्राप्त होता है।
1: जी मैम, जैसे अब हमारा ट्रांसप्लांट करत हन है ना अपन फसल ला तैयार करे खातिर, तो एकर बर हमन हा खाद और उर्वरक हमन हा कब डाल सकता ना, एकर तैयारी का करन?
0: जी जी, हल्दी अदरक में जैसे मैंने आपको बताया है कि लगभग जो है दो बोरी है आपका यूरिया का लगता है, डेढ़ बोरी जो है DAP और एक बोरी जो है आपका MOP की क्वांटिटी लगती है। जैसे 100-60-60 जो है आपका 120-60-60 जो आपका हल्दी के लिए और 100-50-50 जो आपका अदरक के लिए इसकी NPK की दर होती है फर्टिलाइज़र की। यदि हम इसमें यूरिया DAP और MOP में बात करें तो दो बोरी, डेढ़ बोरी और एक बोरी का अनुपात होता है। इस प्रकार से आप प्रति हेक्टेयर उपयोग कर सकते हैं इस मात्रा को। और दूसरा, यदि हम इसे कब डालें तो पूरी मात्रा फास्फोरस की होती है और पोटास की, वो अंतिम जुताई के समय मिलाई जाती है और एक भाग जो होता है यूरिया का वो मिलाया जाता है और बाकी जो दो भाग होते हैं वो आपके बाद में जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, वनस्पतिक वृद्धि होती है, उस समय से दिया जाता है।
1: माने अब हमारे मन के रोपाई हो गए और खाद की व्यवस्था हो गए, अब एमा पानी दे के सही तरीका का होते और कब कब हमला देना चाहिए?
0: जी, यदि आपने ड्रिप में लगाया है तो पानी की कोई समस्या नहीं है, पानी उसमें समस्या नहीं आती, लेकिन यदि आपने सीधा खेत में लगाया है आपका मांदा बना के, तो पहले तो इसको मांदा बना के लगाना होता है और मांदा बना के आपने लगाया तो लगभग 7 से 10 दिनों के अंतराल पे इसमें एक इरिगेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो 7 से 10 दिन के अंतर पे आप यदि सूखा मौसम है तो उसमें पानी आपको देना होता है।
1: हल्दी और अदरक वैसे तो ये भूमिगत हमर फसल हरे, लेकिन एमा कौन कौन प्रकार के कीट और रोग लग सकते हैं और उनका नियंत्रण हमन कैसे कर सकते हैं?
0: हल्दी अदरक में सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो हमारे छत्तीसगढ़ में रॉटिंग की समस्या आती है, सड़न की समस्या, जो राइजोम्स होते हैं वो सड़ने लगते हैं। तो ये जो समस्या होती है इसका हम शुरुआती अवस्था में ही निदान कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सॉइल एप्लीकेशन होता है, सॉइल एप्लीकेशन में हम अपना फिप्रोनील करके एक आपका केमिकल आता है जिसका कि लगभग आपका 0.3 GR ग्रैन्यूल्स फॉर्म में होता है, जिसका 20 से 25 kg पर हेक्टेयर की दर से आप इसको लेंगे और मृदा में अंतिम जुताई के समय मिला देते हैं, या फिर आपको यदि जैविक के उसमें जाना है तो 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर की दर से नीम की खली को यदि मिलाते हैं तो आपका जो वाइट ग्रब जो कीड़े होते हैं जो जड़ों को काटते हैं और साथ में ही टर्माइट जो दीमक होती है उसकी समस्या से आप बच सकते हैं शुरुआती अवस्था में यदि इसको लेते हैं तो। और यदि हमें सड़न की जो समस्या आ रही है उससे बचने के लिए रेडोमिल जो गोल्ड होता है उसका लगभग 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका सॉल्यूशन बना के उसमें हमको जो राइजोम्स होते हैं उसको बीज को उपचार किया जाता है और फिर आधे घंटे में डुबा के फिर उसके पश्चात इसको सुखा के फिर लगाया जाता है तो हमारी रॉटिंग की समस्या जो है नहीं के बराबर आती है। तो इस प्रकार से आप रॉटिंग से भी बच सकते हैं। और दूसरा, लगाने के एक महीने बाद इसमें आपको मृदा को भिगाना जिसे बोला जाता है सॉइल ड्रेंचिंग, तो इसमें आपको फिर से रेडोमिल का सॉल्यूशन बनाया जाता है और उससे लगभग 3 से 5 लीटर जो है प्रति स्क्वायर मीटर एरिया को इसको भिगाया जाता है, तो इसे बोला जाता है आपका सॉइल ड्रेंचिंग। इसके उपयोग से आप रॉटिंग की समस्या जो है बिल्कुल ही बहुत हद तक जो है वो कंट्रोल हो जाती है।
1: सॉइल बिल्चिंग यह कुछ कुछ मल्चिंग जैसे शब्द लागत है और ये दोनों में अंतर है, तो ये मल्चिंग के भी हमारे खेती में उपयोग है का?
0: जी जी, सॉइल मल्चिंग जो होता है, देखिए मल्चिंग में जो हमारी फसल है हल्दी और अदरक काफ़ी लंबे ड्यूरेशन की है, 5 से 7 महीना अदरक को लगता है और 7 से 9 महीना हल्दी को लगता है। इसके लिए हम यदि मल्चिंग का उपयोग करते हैं तो मल्चिंग में हम पुआल है या फिर सूखे पत्ते या फिर आपका पैरा होता है उसका उपयोग हम कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है आपके हल्दी अदरक के केस में और इसकी जो खरपतवार की संख्या कम हो जाती है और पानी जो होती है उसके वाष्पीकरण कम होता है तो हमारे मृदा में पानी की मात्रा जो है सिंचाई की इरीगेशन की वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार से मल्चिंग जो है इसके लिए बहुत ही आवश्यक है और मल्चिंग का इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा होता है इसमें।
1: अच्छा, जैसे अभी हमन गोट करें खरपतवार, तो इसमें कौन कौन प्रकार के खरपतवार लग सकते हैं वेला हमन कैसे बांस सकते हैं?
0: जी जी, देखिए हल्दी अदरक में सबसे पहले इसकी चौड़ी पत्तियां होती है तो बहुत ज्यादा खरपतवार का इसमें दिक्कतें नहीं आती है कि खरपतवार नाशी हमें बहुत ज्यादा डालना पड़े। तो इनिशियल जैसे ही हम लगाते हैं काफी चौड़ी पत्ती होने के कारण ये अपने खरपतवार को नियंत्रित कर लेती है और जैसे हम मल्चिंग यदि उपयोग में कर रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना पड़ता इसमें।
1: अच्छा, मतलब हमारे कीट नियंत्रण भी हो गए, खरपतवार भी हो गए, अब हमारे फसल तैयार हो गए, तो ये तैयार फसल के हमला कटाई कैसे करना चाहिए

0: और हमन संग्रह कैसे कर सकते हैं?
1: देखिए, फसल की कटाई जैसे ही पत्ते पीले पड़ के मुरझाने लगते हैं तो उससे हमें समझ में आने लगता है कि हमारी फसल लगभग तैयार हो गई है। और यदि हल्दी है तो 9 महीने बाद उसकी हार्वेस्टिंग करी जाती है, पत्ते पूरे सूख जाते हैं, फिर उसके पश्चात उसे जमीन से खुदाई करके निकाला जाता है। और यदि खुदाई करके निकालने के पश्चात उसे खुला में रखा जाता है, और रखने के पश्चात जब वो थोड़ा उस पर जो मट्टियाँ होती हैं उन सबको साफ करके पानी में धो के, और एक पतला जो आपका बांस का जो बोलना चाहिए एक खपच्ची आती है उससे हल्का सा रगड़ा जाता है ताकि ऊपर की जो लेयर होती है वो उसमें साफ हो जाए, और उसके पश्चात उसे बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के पश्चात उसे लगभग 40 से 50 मिनट के लिए बॉयल करना होता है, जिससे उसे कच्चापन जो होता है हल्दी में वो खत्म हो जाता है, और उसे फिर बॉयल करने के पश्चात निकाल के फैला के 8 से 10 दिन सुखाया जाता है, और जब तक कि उसमें 8 से 10% मॉइस्चर परसेंट ना बच जाए तब तक सुखाया जाता है, और उसके पश्चात उसे बोरे से सूखने के पश्चात रगड़ के साफ करके ताकि उसमें एक पॉलिश हो जाए और उसकी चमक आ जाए, फिर उसे मार्केट में आप सेल कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं आसानी से। तो ये लंबे समय तक आपकी हल्दी जो होती है वो ख़राब नहीं होती है। और वैसे ही यदि हम अदरक की बात करें तो अदरक भी हार्वेस्टिंग होने के पश्चात उसे धोया जाता है और बांस की जो खपच्ची होती है उसे हल्का सा रगड़ के जो ऊपर की लेयर होती है उसे हटाया जाता है, और हटाने के पश्चात उसे चूने की पानी में डुबाया जाता है, चूने के पानी में रात भर के लिए छोड़ा जाता है, और फिर उससे निकाल के उसे ड्राई करने के लिए रखा जाता है। और इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो इसमें आप ड्राई जो जिंजर होता है उस प्रकार से उसे स्टोर करके भी लंबे समय तक रख सकते हैं।
0: डॉक्टर मैम, आप बताते हो कि एकर उत्पादन बढ़ाए खातिर किसान भाई मन और कौन कौन से नवा तकनीक उपयोग कर सकते?
1: देखिए, आपका हल्दी अदरक में जैसे मैंने बताया आपको प्रोट्रे का हो गया, ये आप यदि तकनीक अपनाते हैं तो आप जल्दी उत्पादन ले सकते हैं और अधिक उत्पादन आता है इसमें। बीज की मात्रा कम लगती है तो अपने आप फायदा आपको ज्यादा होता है, तो ये बहुत अच्छी तकनीक है, बहुत अच्छी मेथड है, बहुत सक्सेसफुल मेथड है, इसे आप जरूर अपनाएं। दूसरा, रॉटिंग के लिए जो मैंने बताया आपको कि किसान भाई बहुत परेशान रहते हैं कि रॉटिंग की समस्या आ रही है मैडम, तो इसके लिए आप शुरुआती अवस्था में यदि नीम की खली उपलब्ध है, आपके खेतों में नीम लगी है तो नीम की पत्ती और वो सबको लेके आप उसको मिला सकते हैं, या तो खली मार्केट में अवेलेबल है तो 1 से 2 टन आप उसको 1 हेक्टेयर के खेत में मिला लें। इसका ध्यान रखिए, ये भी अवेलेबल नहीं है तो फिप्रोनील जो आता है ग्रैन्यूल के फॉर्म में उसका लगभग 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से मिला लें, तो इससे आप जो शुरुआती में जो आपके वाइट ग्रब ये सब कीड़े होंगे इससे भी बच जाएंगे। और रॉटिंग के लिए आप इसमें मैंने जैसे बताया आपको कि रेडोमिल से बीज का उपचार कर लें और ड्रेंचिंग करें, सॉइल को जो भिगाना बोलते हैं वो वाला काम आप जरूर करें लगाने के 1 महीने पश्चात। तो इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो रॉटिंग की समस्या जो होगी बिल्कुल से बच सकते हैं।
0: अच्छा, जब हम कोई भी उत्पादन लेते हैं तो ओकर मुख्य उद्देश्य तो हमला आय कमाना ही रहते, तब बाजार में हमला अपन अदरक और हल्दी के अच्छा कीमत मिल सके एकर बार किसान भाई मन ला का चीज इसके ध्यान रखना चाहिए?
1: जी जी, हल्दी अदरक का देखिए, जैसे कि आपका मार्केट में जो डिमांड है कब रहती है और कैसा है, जैसे कि हल्दी अदरक में ये होता है हम दोनों टाइप की आधा आधा काम करें, जैसे सूखी हल्दी आधा उसको यूज करें और आधा कच्ची हल्दी को किसान भाई यूज करें, तो इसमें आपको फायदा ज्यादा होता है, लगभग आप प्रति हेक्टेयर 3 से 5 तक कमा सकते हैं इसमें। तो इसमें ये चीज का ध्यान रखें कि पूरा सुखाने की बजाय आप कुछ बीज जो है बीज के रूप में कच्चा बेचें और कुछ जो है 50% जो होता है वो आपका ड्राई करके फिर उसको बेचें या हल्दी फॉर्म में बना के पाउडर फॉर्म में बेचें, तो आपको जरूर ही बहुत अच्छा फायदा होता है।
0: मैम, जैसे आप बताए कि कुछ ला हमन बीज ऐसा इकट्ठा कर सकते हैं, कहेला हमन परंपरागत तरीका से फिर से उत्पादन ले बर यही चला हमन उपयोग कर सकते
1: हैं? हाँ बिल्कुल, आप अपनी जो हल्दी लगाए हैं और उसे फिर से आप अपना उसमें से यदि छांट लेते हैं अच्छे जो बीज होते हैं उसको निकाल लें अपने लिए और उसको अगले साल के लिए फिर उपयोग में ला सकते हैं, और रखने के लिए उसे आप यदि आप उसको रखना चाह रहे हैं तो हम जैसे कि रेत में दबा के उसे रखा जाता है तो उस प्रकार से रख सकते हैं, और या फिर पुरानी जो चलन है आपका कि मटके में भर के फिर उसको ऐसा मटके को गाड़ के जमीन में करके रखा जाता है, इस प्रकार से भी उसे बीज को रखा जा सकता है।
0: मैडम, आप बताते हो कि ये हल्दी और अदरक के खेती अगर कहीं अमन व्यापारिक तौर पे लेवत हन तो यही खेत ला हमन हा दूसर कौन से फसल पर उपयोग कर सकते?
1: देखिए, ये जैसे फसल मैंने बताया कि लंबे समय की है, आपने अभी लगाया उसको मई जून में, तो ये अगले फरवरी मार्च में खत्म होती है फसल, और फरवरी मार्च में जैसे ही फसल खाली होती है तो उस समय आप यदि चाहें तो वहाँ पे मूंग की फसल लगा सकते हैं। मूंग आपका 2 महीने की फसल होती है और छत्तीसगढ़ में इसका एरिया लगातार बढ़ता जा रहा है, तो किसान भाई केवल 2 महीने की फसल है और आप हल्दी अदरक को निकालने के पश्चात उसी में जो है मूंग की खेती भी कर सकते हैं, मूंग लगा दें या उस खेत में मूंग लगा दें तो आपको आपकी जो मृदा होती है उसकी उर्वरा क्षमता भी बढ़ती है दलहनी फसल होने के कारण, साथ में आपको एक्स्ट्रा उत्पादन भी 2 महीने में मिल जाता है और आप फिर से खेत की तैयारी के लिए आपको फिर समय भी मिल जाता है।
0: अभी बहुत ऐसे युवा संगवारी है जिन मन फसल लेना चाहते या फिर कृषि के क्षेत्र में उतरना चाहते, तो ओ मन आप मन हल्दी और अदरक के खेती लेबर कौन कोई प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है और अधिहावे तो मन कहाँ से ले सकते?
1: कि हमारे पूरे सबसे अच्छा ये है कि हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी

0: डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध है और आप जहां भी जहां के भी किसान है जहां से आपको नियर बाई पड़ता है पास पड़ता है कृषि विज्ञान केंद्र, आप वहां के कृषि विज्ञान केंद्र में जाके इसका डिटेल में प्रशिक्षण ले सकते हैं। जो आपके वैज्ञानिक वहां पे सभी विषय के होते हैं तो आप वहां जाके अपना जो समस्या है उसका निदान कर सकते हैं।
1: मैम एक ठन सवाल बहुत बार बार ऐसे होते हैं, ये मृदा के सौरीकरण का हर ये शब्द हमन बार बार सुनथन पर एक बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है।
0: जी जी, मृदा सौरीकरण देखिए ये होता है कि जब हम अपनी जमीन को तैयार करते हैं, जैसे कि जो हम में जो फसल लगाते हैं तो उसमें ये होता है हम अपनी अभी जो गर्मी का मौसम हो रहा है उसमें गहरी जुताई करते हैं, वैसे ही जब हम यदि कोई उद्यानिकी फसल लेने वाले हैं तो मृदा को पहले ही तैयार कर लेते हैं और तैयार करने के पश्चात उसे मांदा बना के उस मांदा को मल्चिंग से ढक दिया जाता है, लगभग एक महीने के लिए ढका जाता है और पहले जुताई किए हल्का सा पानी भी दे दिया जाता है, उसके बाद फिर ढक दिया जाता है और ढकने के पश्चात उसमें लगभग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है जिससे कि अंदर जो भी कीट और अपने खरपतवार होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो प्लास्टिक की पॉलीथीन से जब ढका जाता है तो वो इसे ही कहा जाता है आपका सौरीकरण करना। और एक और ये मेथड होती है कि आपकी जो मृदा है, मृदा को आपने थोड़ा सा गीला किया, आपकी जुताई करने के पश्चात गीला किया और गीला करने के बाद उसे

0: जी जी मृदा सौरीकरण देखिए ये होता है कि जब हम अपनी जमीन को तैयार करते हैं, जैसे कि जो हम में जो फसल लगाते हैं, तो उसमें ये होता है हम अपनी अभी जो गर्मी का मौसम हो रहा है उसमें गहरी जुताई करते हैं, वैसे ही जब हम यदि कोई उद्यानिकी फसल लेने वाले हैं तो मृदा को पहले ही तैयार कर लेते हैं और तैयार करने के पश्चात उसे मांदा बना के उस मांदा को मल्चिंग से ढक दिया जाता है, लगभग एक महीने के लिए ढका जाता है और पहले जुताई किए हल्का सा पानी भी दे दिया जाता है, उसके बाद फिर ढक दिया जाता है और ढकने के पश्चात उसमें लगभग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है जिससे कि अंदर जो भी कीट और अपने खरपतवार होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो प्लास्टिक की पॉलीथीन से जब ढका जाता है तो वो इसे ही कहा जाता है आपका सौरीकरण करना। और एक और ये मेथड होती है कि आपकी जो मृदा है, मृदा को आपने थोड़ा सा गीला किया, आपकी जुताई करने के पश्चात गीला किया और गीला करने के बाद उसे एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से ढक दिया, तो ढकने के पश्चात उसमें जो सूर्य की रोशनी के कारण कीड़े होते हैं, नमी जो है भाप बन के निकलती है, गर्मी के कारण जो कीड़े होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं, तो ये जो क्रिया होती है वो आपकी मृदा सौरीकरण कहलाता है।
1: मैडम आप आए स्टूडियो में हल्दी एवं अदरक की खेती एक संग संग ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के महत्व एला बहुत विस्तार ले बतायो, एकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम मैडम।
0: धन्यवाद।
1: संगवारी हो अभी सुनेन आज के सलाह क्रम में हल्दी अदरक के उत्पादन ने भरपूर कमाई हमर विशेषज्ञ रहिन डॉक्टर गुंजन झा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव।
2: और संगवारी हो खेत बचाओ अभियान हमर सरकार ह शुरू करे है त एकर बारे में सुनथन ये जानकारी मनीष कुमार वर्मा विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा दुर्ग ले।
3: भारत सरकार द्वारा खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य उर्वरकों के संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना, सतत पोषक तत्व प्रबंधन को प्रोत्साहित करना तथा प्राकृतिक खेती को अपनाने की गति बढ़ाना है। इस अभियान के अंतर्गत DAP की सर्वाधिक खपत वाले 100 जिलों में विशेष रूप से गहन गतिविधियां संचालित की जाएंगी, साथ ही देश के अन्य सभी जिलों में संतुलित उर्वरकीकरण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं सतत कृषि का संदेश प्रसारित किया जाएगा। यह कार्य ICR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, केंद्रीय एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य कृषि विभागों तथा अन्य हितधारकों के समन्वित प्रयासों से किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में किसानों में मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों एवं अन्य कृषि आदानों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, संतुलित उर्वरक उपयोग, हरी खाद, जैविक एवं जैव उत्पादों के उपयोग हेतु किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उनकी क्षमता विकसित करना, साथ ही जागरूकता कार्यक्रमों, प्रशिक्षणों एवं प्रदर्शनियों के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, इसके साथ ही किसानों के खेतों पर हरी खाद, जैविक खाद, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन तथा कृषि आदानों के सही उपयोग के प्रदर्शन आयोजित कर मृदा स्वास्थ्य में सुधार कर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना प्रमुख है। मृदा स्वास्थ्य सुधार खेती की लागत में कमी तथा किसानों की आय में वृद्धि हेतु टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। खेत बचाओ अभियान के जो प्राथमिकताएं हैं उनमें ग्रामीण समुदायों को जागरूकता उत्पन्न कर खाद्य तेल की खपत में कम से कम 10% कमी लाने तथा स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना, पंचायत स्तर पर गठित खेत बचाओ समिति की नियमित बैठकें सुनिश्चित करना जिससे किसानों में उर्वरकों के संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़े, जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की कम से कम 25% कृषि भूमि में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु प्रेरित करना, किसानों, कृषि आदान विक्रेताओं, FPO, स्वयं सहायता समूहों, पंचायती राज संस्थाओं एवं अन्य हितधारकों की क्षमता निर्धारण गतिविधियाँ आयोजित करना, KCC का निर्माण सुनिश्चित करना तथा संस्थागत कृषि ऋण तक किसानों की पहुंच बढ़ाना, जिला कृषि आकस्मिकता योजना का प्रचार प्रसार करना तथा किसानों एवं अन्य हितधारकों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराना, संबंधित जिले के लिए सामान्य उर्वरक अनुशंसाएं किसानों तक पहुंचाना, भारत में फास्फोरस के अनुशंसित उपयोग को बढ़ावा देना तथा किसानों को इसके वैज्ञानिक उपयोग के बारे में जागरूक करना। इस अभियान का थीम है स्वस्थ मृदा, स्वस्थ फसल, समृद्ध किसान।
2: संगवारी हो अब एक ठीन सूचना। अवैया मंगलवार 9 जून 2026 के प्रसारित होवैया हेलो किसानवाणी कार्यक्रम के विषय होही वर्षाकालीन सब्जियों की नर्सरी। आप अपन समस्या और जिज्ञासा के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में

0: फोन लगा सकते हो। विशेषज्ञ हुई डॉक्टर कमल नारायण वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ, उद्यान की कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा दुर्ग ले। आप मन फोन करे करू एक बार नंबर हरे 400-3482, 400-3483, 400-3484 रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग हुई 9 जून 2026 के 11:30 ले 12 बजे के बीच। कार्यक्रम के प्रसारण हुई शाम 7:30 में। हमला आपके फोन कॉल के अगुरा रही तही मेर सूचना सिरावत है।
1: और संगवारी हो अब बेरहे कृषक प्रश्न मंच के, तब बता देथन आज के प्रश्न। आज के हमर प्रश्न है, बीजोपचार करे के बाद बीजा ला कतका समय के अंदर उपयोग कर लेना चाहिए? और ये प्रश्न के जवाब आप मन हमला एक हफ्ता के भीतर भेज दो, ताकि आप मन के नाम ला हमन कार्यक्रम में शामिल कर पाबो। और संगी हो आप बता देथन पाछू हफ्ता पूछे गे प्रश्न और ओखर सही जवाब। तो प्रश्न रही थे छत्तीसगढ़ के प्रमुख औषधि पौधों के नाम बतावा। एक सही उत्तर है अश्वगंधा, तुलसी, कालमे, गिलोई, सफेद मूसली, सर्पगंधा, आंवला, घृतकुमारी, ब्रह्मी।
0: और सही जवाब लिख के हमारे संगवारी मन भेजे है परसा टोला ले ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी तुषारनी खुमेंद्र मसिया, रानीगांव नगली ले है खिलेश कुमार साहू, चित्रेखा शुभम सिजल साहू, मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश राहुल और अमलेश्वर से हैं डोमिन ठाकुर, सुमन ठाकुर गुड़िया, नवागढ़ कटेले नारायण प्रसाद वर्मा, सीमा शारदा वर्मा, लोरमी चचेड़ी ले कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी मन। संगवारी हो आप मन हमर तीर सही जवाब लिख के भेजो, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और गाढ़ा गाढ़ा बधाई।
1: हाँ तो सरिता संगवारी मन सन सुनथन सुघर गीत जिनला स्वर दे हबाय गौतम चंद्र जैन और कुसुम लता साहू हर।

0: संगवारी हो सुघर गीत लगावत रीन गौतम चंद्र जैन और कुसुमलता साहू मन और होत है जाए के बेरा तो जाए के पहली बता देवन काली के कार्यक्रम काली आज के बाद संग सुनू फोन इन कार्यक्रम हलो किसानवाणी विषय हो ही वर्षा कालीन सब्जियों की नर्सरी विशेषज्ञ हो ही डॉक्टर कमल नारायण वर्मा विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यान की कृषि विज्ञान केंद्र पांडा दुर्गले कृषक प्रश्न मंच के संग में गीत संगीत के आनंद तो आप मन ले बेच कर हूँ तो देवा विदा जम्मो संगवारी मल्ला सरिता
1: और मनीषा के
0: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित

कार्यक्रमों की श्रृंखला में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष विशेष वार्तालाप कार्यक्रम आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: विशेष वार्तालाप आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना।
1: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम अत्यंत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की शुरुआत एक सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ यह विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं, और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, थैंक यू।
1: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं, आप लंदन पीटीआई के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं, वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो टीवी से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिल्म जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी, और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूं।
3: नमस्कार, यहां आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है, और मुझे इस बात की खुशी यह भी है कि जहां आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहां मुझे इसके साथ काम करते हुए 45 बरस हो चुके हैं। यानी आकाशवाणी का जो एक सफर है, इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूं, जब मैं यहाँ पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया, हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा, और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है, लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने वर्षों से चल रहा है, 90 साल से जब आकाशवाणी की बात कर रहे हैं, और अभी तक चलता आ रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीजें, आप कहीं कुछ देखिए, कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं। आप देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप कल्पना कीजिए जो ये फिल्म संगीत है, क्या इतना लोकप्रिय होता? कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे। इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत, द्विअर्थी गीत नहीं आए। तो खैर, ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी

0: वो सबसे पहले युववाणी से हुई थी। इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी और मेरी पहली कमाई भी युववाणी से हुई थी। मुझे याद है शायद 25-30 रुपए पहली बार मिले थे जब मैंने युववाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रुपए मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बनी। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी यहाँ पर थी, तब इन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IIMC में चली गई चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था, मुझे याद है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं। और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा, प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में भी और उसके बाद और भी विभिन्न रूपों में भी, और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी, तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
1: देखिए, 90 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना, संचार, शिक्षा, इन तीनों ही अपने उद्देश्यों में, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसे आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उसमें हमारे यहाँ हर 3 कोस पे एक बोली बदल जाती है, और आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गांव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सूचना देने का काम किया है, वो आकाशवाणी से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत सारे ऐसी घटनाएं याद हैं, चाहे कोई साइक्लोन आए, आपके जो आधुनिक संचार के साधन है वो सब फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के माध्यम से यदि अभी सूचना देनी है मछुआरों को देनी है, सुनामी का हम लोगों को सबको याद है, या जो उड़ीसा में इतने चक्रवात आते हैं अलग अलग देश के अलग हिस्सों में, उसमें हम लोगों ने देखा कि आकाशवाणी को ही एक क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख लें तो वो आकाशवाणी की है। और क्यों ये अपने आप बना के रख पाए, अपना ये कारण, क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अलग अलग तरह से। पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहां आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार या वहाँ क्या घटनाएं हो रही है या उस भाषा के गीत भी कहीं भी बैठ के, तो ये जो एक लोगों को जोड़ने का काम किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया, और तकनीकी के साथ साथ बदलाव किया है, इसीलिए आज भी आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी। और ऐसे संगठन में काम करने के लिए आना अपने आप में एक गौरव की बात है, जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ, आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया है आकाशवाणी ने, एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है, और आकाशवाणी की भी जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर, भारत सरकार, राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को, कैसे पहुंचेगी अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है, और बड़े पॉपुलर कार्यक्रम है अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल्स बहुत लोकप्रिय हैं, तो FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी, आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप ये सब सुन सकते हो। इसी के क्रम में बोले सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स हैं, दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर TV चैनल्स, विजुअल माध्यम जो है उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी जो फॉलोअर्स है वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने, यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना, आज भी हम लोग ध्यान करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे, क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है, वो आकाशवाणी से सुनता है, यदि आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है। इसलिए ये आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की, या नंबर ऑफ TRP की रेस में नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का, तो आपने स्वयं ही बताया कि यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
0: बिल्कुल,

0: इसमें कोई शक नहीं कि आकाशवाणी टीआरपी की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र है और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र है जहाँ पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ जब ये पीटीआई के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी। माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ा है अभी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब, आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि आप भी इतने वर्षों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, आप संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं?
1: मैं उस पीढ़ी का हूँ जिस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आया ही नहीं थे। तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूं तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाया करते थे क्योंकि वहां रेडियो होता था। तो पहला जो आकाशवाणी के साथ संबंध जुड़ा वो जुड़ा क्रिकेट की कमेंट्री के माध्यम से, और इतने धुरंधर क्रिकेटर क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले थे जो हाउस होल्ड नेम बन गए थे, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो सुशील दोषी, मेलविल डिमेलो, जसदेव सिंह, ये वो नाम थे जिनको बच्चा बच्चा जानता था क्योंकि उनकी कमेंट्री ऐसी होती थी। तो ये पहला प्रभाव मेरे पर तो आकाशवाणी का जो पड़ा वो तो पड़ा कमेंट्री से। दूसरा, विविध भारती के साथ साथ जिस तरह के भोले बिसरे गीत, संगीत सरिता, चित्र लोक और फौजी भाइयों के कार्यक्रम, ये एक दूसरा प्रभाव था जो हमारे समय की युवा पीढ़ी पर पड़ा, मनोरंजन का साधन। महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं तो गाने रेडियो पर चल रहे हैं, फिर जब ट्रांजिस्टर आता है तो खेत खलिहान मजदूर हर व्यक्ति ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा है, गाने सुन रहा है, समाचार सुन रहा है और अपना काम कर रहा है। तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था समाचार। जो हिंदी के समाचार हम लोग सुनते थे उसमें देवकीनंदन पांडे,
0: रामानुज प्रसाद सिंह,
1: रोशन मेनन, सुरजीत सेन, लोतिका रत्नम, लोतिका सिंह, पामेला सिंह, इंदु वाही, ये वो नाम थे जिनको घर घर में बच्चा जानता, बाद में पत्रकार बना। जब लड़ाई हुई 1965 की और 1971 की, और उस दिनों जो कार्यक्रम बनाए गए वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और लोग रेडियो पर कान लगाए रहते थे कि कब समाचार से हमको जानकारी मिले। तो समाचार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है और आज भी है। और अभी भी मैं एक बात बीच में कह दूं कि जब सरकार ने FM रेडियो के लाइसेंस देने शुरू किए लेकिन समाचार अपने बनाने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है, वेव्स हैं रेडियो की, ये किसी और के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझते हैं। आकाशवाणी की वो इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी दुश्मन ने आपके आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया तो समझिए वो देश आधा पस्त हो गया, इतना महत्वपूर्ण काम है आकाशवाणी का। और उसी लिए ये आकाशवाणी को इतना महत्व दिया गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है आकाशवाणी के समाचार की जो विश्वसनीयता के बारे में। एक बार क्या हुआ कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंदोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी और उनको ये लगा कि मैं अपने पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तो डमी शूटिंग होनी थी और उसमें वो खबर जानी थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उस जमाने में न्यूज एजेंसी फ्लैश फ्लैश फ्लैश करती थी, फ्लैश फ्लैश फ्लैश गोवा CM डेड। अब ये हो गया शूटिंग, लेकिन जो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर था वो स्विच को ऑफ करना भूल गया।
0: अच्छा।
1: उसके चलते वो गोवा से समाचार मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने दिल्ली को दे दिया, दिल्ली ने उसको प्रसारित कर दिया। अब आकाशवाणी को ये इंस्ट्रक्शन थी और आज भी है कि अगर ऐसा कोई समाचार एक न्यूज एजेंसी से आता है आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दूसरी न्यूज एजेंसी से आप उसको कन्फर्म करेंगे। तो उसके चलते वो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन से फोन आ रहे हैं कि आप आकाशवाणी से क्यों प्रसारित नहीं कर रहे, गोवा के मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। आकाशवाणी के डीजी ने कहा सब हमने दूसरी एजेंसी से कन्फर्म किया है, उसका कहना है साहब ऐसा कोई समाचार नहीं है। मैं ये प्रत्यक्ष बता रहा हूँ आपको कि फिर राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय ने सैटेलाइट से नेवल हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न कमांड का है उससे संपर्क किया तो उन्होंने

0: साहब यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अब उस जमाने में क्या हुआ कि संपर्क टूट गया गोवा और मुंबई के बीच में उस एजेंसी का। जब संपर्क जुड़ा तो उसने कहा कि वेयर इज द फॉलो अप, उसने कहा क्या फॉलो अप, आपने कहा था गोवा सीएम डेड, उसका फॉलो अप क्या है। तो अब रियलाइज हुआ कि शूटिंग करते समय एक स्विच ऑफ ना करने से कितना बड़ा देश, लेकिन आकाशवाणी अपने उस पर डटी रही और इसके कारण दुनिया को गलत समाचार नहीं मिल पाया। आज भी लोग कहते हैं कि जरा रेडियो की खबर सुन ली जाए, आकाशवाणी जो बात कहेगी वो सत्य है, उसमें कोई ना तो गॉसिप है और ना ही कोई बढ़ा चढ़ाकर है और ना ही इसमें किसी प्रकार का देश के अंदर जो एक सद्भावना है उसको खत्म करने की कोशिश है। तो आकाशवाणी ने 90 साल में ये जो एक अपनी इमेज बनाई है, बल्कि शांति स्थापित करवाने में सहयोग दिया।
1: देखिए जिस तरह आपने बताया कि आकाशवाणी पर भरोसा करते हैं, मुझे 1971 के वो दिन याद है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था। उस समय भी ऐसा होता था, पाकिस्तान हर बार अपने रेडियो से प्रसारित करता था हमने भारत की सेना को पीछे खिसका दिया, इसको ये कर दिया, जबकि हमारी सेना सीधी लाहौर तक पहुंच गई थी। तो तब आकाशवाणी ने कार्यक्रम शुरू किया था ढोल की पोल। ढोल की पोल इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरा व्यंगात्मक तरीके से ये बताया जाता था कि पाकिस्तान किस तरह झूठ बोल रहा है, और पाकिस्तान उस कार्यक्रम से इतना परेशान हुआ था कि उसने झूठ बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन आप ये देखिए आकाशवाणी के सामने इन 90 सालों में कितनी चुनौतियां आई हैं, कितनी बार ऐसे लगा कि बस आकाशवाणी अब जाने को है, इसका जमाना चला गया। तो तभी 85 के समय भी ऐसा लगा, लेकिन आप देखिए फिर किस तरह धीरे धीरे जो है आकाशवाणी ने एफएम चैनल शुरू किए, कम्युनिटी चैनल शुरू किए, और उसके बाद फिर ऐसे लगने लगा शायद फिर पीछे हो रहा है। तो लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ आकाशवाणी पर, और आप देखिए उस एक कार्यक्रम ने आकाशवाणी को इतना लोकप्रिय बना दिया है, आकाशवाणी को राजस्व भी मिल रहा है, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, उसको आज सभी लोग सामूहिक रूप से सुनते हैं, और आकाशवाणी के उसी कार्यक्रम को सारे तमाम चैनल्स, रेडियो के चैनल्स हैं चाहे वो टीवी के चैनल्स हैं, उसी को आगे प्रसारित करते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा वर्तिका नंदा से। वर्तिका नंदा एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, और इतने सालों से मैं इनको देख रहा हूं, और कई बार हम टीवी के कार्यक्रम में, कई बार रेडियो के कार्यक्रम में भी साथ होते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में तो किया, अध्यापक के रूप में जो कर रही है वो भी है, साथ ही इन्होंने जेल के ऊपर जो काम किए हैं वो इतने अनुपम है उसका कोई मुकाबला नहीं है, और आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद इतने साल से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी कर रही हैं, तो आपको आकाशवाणी के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके दिलों में अभी घर की हो।
2: देखिए 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी में आए, उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें कहा कि गांधी जी आप आइए, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में मेरा आना उचित नहीं है, मैं तो तब आऊंगा जब भारत आजाद होगा, और भारत के आजाद होने के बाद ही वे यहाँ पर आए। वो ऐतिहासिक घटना थी जिसे जन सेवा प्रसारक दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
1: हमारे आकाशवाणी में आज भी वो स्टूडियो है,
2: और आज वो बापू धाम बन गया है। और उस बापू स्टूडियो में अब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वही बापू स्टूडियो जहां महात्मा गांधी आए थे।
1: जी।
2: इन सालों में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन एक बात जो और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई वो थी मन की बात। मन की बात ने ये साबित कर दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माइक को चुनता है पूरे हिंदुस्तान से बात करने के लिए, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर आकाशवाणी में कोई ऐसा जादू है जो बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हों। आकाशवाणी ने एक और काम किया, उसने इतने सालों में हमें सुकून भी दिया, हमें संवेदना दी, हमें संस्कार दिया और हमें सहूलियत भी दी। आकाशवाणी ने शिक्षा की जो मुहिम चलाई, शिक्षा से जुड़े बहुत से कार्यक्रम इग्नू के साथ जोड़कर आज भी आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे हैं। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा से जोड़ रहा है आकाशवाणी, और जो शिक्षित है उसके अंदर भाषा के बेहतर संस्कार को जगा रहा है। एक और बड़ी रोचक बात लगती है, सैनिक भाइयों का कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय रहा, खास तौर पर इसलिए कि जो सरहद पर है अपने परिवार से दूर उदासी से घिरा हुआ, उनको थामने का काम भी आकाशवाणी ने किया। किसानों की चिंता भी आकाशवाणी ने कही। असल में ऐसा लगता है कि जो जिंदगी की मूलभूत जरूरतें थीं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, रोजगार, ऐसे तमाम बड़ी चीजें जिसके बिना हम जिंदगी जीने की कल्पना नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों वो जन सेवा प्रसारक माध्यमों के हिस्से में डाल दी गई, और कमर्शियल मीडिया के पास आ गया तिजोरी भरने का काम। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा। 3 तरह के ब्रॉडकास्टर्स से हमारा परिचय रहा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया। इन सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली। उसने ये बताया कि हम जब बात करते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उस बात को चरितार्थ किया आकाशवाणी ने। हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो, किसानों का कार्यक्रम हो, या फिर शिक्षा की अलख जगाने का कार्यक्रम हो, और खास तौर

0: पर संगीत हो। जिंदगी में संगीत खोलने का काम भी आकाशवाणी ने किया और उसने ये भी बताया कि संगीत के साथ साथ भी आप कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। इस बात की जिक्र मैंने खास तौर पर इसलिए भी किया कि जब कोई आकाशवाणी को सुनता है तो वो ये भी जानता है कि हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में थिएटर ऑफ द माइंड, आकाशवाणी हमारी कल्पनाओं के संसार को बड़ा उर्वर करता है। आपके सामने वो कलाकार नहीं है, आपके सामने वो अभिनेता भी नहीं है और वो संगीतकार भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत उन तस्वीरों को बुनने लगता है। चाहे प्रधानमंत्री के निधन की खबर हो और चाहे सुनामी हो, आकाशवाणी ने अपनी धुन को, अपने तरीके को, अपने स्वर को भी कभी नहीं बदला। आप जिस कमर्शियल मीडिया की तरफ बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो शोर आकाशवाणी के कानों तक भी पहुंचा, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती है कि उसने अपने आप को कभी भी एक नकलची बंदर नहीं बनाया। वो कभी भी इस डर में नहीं आया कि बाकी लोग हमसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तिजोरी की खनक को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आकाशवाणी उस तिजोरी की चमक दमक से परे बड़ी शालीनता से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता रहा। अभी भी हर बार हम देखते हैं जब भी कोई विशेष तिथि होती है तो यहाँ विशेष कार्यक्रमों को बनाया जाता है, और अब मैं देखती हूँ कि तकनीक में इतने बदलाव के बावजूद, आकाशवाणी ने उन तकनीकों को अपनाने के बावजूद अपने उस पुराने गौरव को और अपने उस संस्कार को, अपनी उस गति को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में महफूज हैं, महात्मा गांधी की आवाज से लेकर पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक। कितनी आवाजों को आकाशवाणी ने सहेज कर रखा। एक शिक्षक, एक छात्र और किसी भी एक नागरिक के लिए आकाशवाणी एक कमाल का उड़न कटोला है। सारे रस हैं इसमें। वियोगी के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है, किसी ऊर्जावान व्यक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो या फिर संगीत का विशाल पटल हो, वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने। एक कार्यक्रम हवा महल, जो बचपन से हमारे दिलों में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ। नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे, तो दत्त साहब बताते थे कि जब भारत चीन के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली फहरा के नरगिस जी और सुनील दत्त साहब पैसे बटोरते थे, लोगों से भीख मांगते थे, एक तरह से हमें दीजिए इनकी सहायता के लिए। तभी आकाशवाणी ने सोचा, इतनी दूर दराज के लोग सैनिक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कैसे उन तक संगीत पहुंचे, कैसे उनके संदेश पहुंचे, कैसा उनका परिवार के साथ वार्तालाप हो। तब जाके ये जयमाला कार्यक्रम शुरू किया, जो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसमें सैनिकों के संदेश सुनाए जाते थे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती थी, और नरगिस ने उसको पेश किया, देवानंद साहब ने पेश किया, अमिताभ बच्चन जी ने पेश किया, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत से लोगों ने पेश किया। वो कार्यक्रम इतना अच्छा था, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है अपने अलग रूप में, और आज भी उसकी पुरानी यादें जो है आती है उसके अंदर। तो प्रज्ञा जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपनी युवावस्था में थी तब आपको कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे कि इनको मिस ना करूं, जरूर सुनूं?
2: कार्यक्रम गीत संगीत के अतिरिक्त जब बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आकाशवाणी का एक है न्यूज सर्विसेज डिवीजन। उसके जो अनेक कार्यक्रम, यदि आप बात करें करंट अफेयर्स से जितने संबंधित प्रोग्राम है, चाहे आप सुर्खियों में ले लें, स्पॉटलाइट ले लें, या करंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ले लें, ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहे हैं। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आजकल जो कोचिंग एकेडमीज हैं, जो यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशन या दूसरे एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती हैं, वो पूरा उस कार्यक्रम का ट्रांसक्राइब करा के उसको अपनी वेबसाइट्स पे डाल देती हैं। कॉपीराइट है या नहीं वो उस बात में नहीं, लेकिन अनेकों ऐसी एकेडमीज हैं और इन कार्यक्रमों को हर छात्र, युवा जो है वो जरूर सुनता है। साथ में पॉलिटिकल, एजुकेशनल स्फीयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, या पार्लियामेंट से रिलेटेड बजट हुआ, विशेष मौके आते हैं उन पे आधारित जो विशेष कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और ज्ञान परक होते हैं। तो हर बच्चा उसको सुनना चाहता है। और जब हम लोग देखा करते थे हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं कमेंट्रीज, और हॉकी की कमेंट्री का तो अलग ही लेवल होता था, हॉकी बहुत फास्ट गेम है, उसी हिसाब से होती थी जसदेव सिंह की या मेलविन डी मेलो वाली जो कमेंट्री होती थी उसकी खासियत सुनते थे। एक चीज और जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में आते थे और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स भी सुना करते थे, और फिर वो दूरदर्शन में आया जो अखिल भारतीय कवि

0: कवि सम्मेलन होते थे, वो सारे जितने वरिष्ठ कवि उस समय के, चाहे नीरज जी हो,
1: कवियों को, पंत जी हो, सबने, महादेवी वर्मा हो,
0: सुरेंद्र शर्मा जी हैं, तो वो सब इस माध्यम पे आते थे। तो वो जो विशेष श्रृंखलाएं आकाशवाणी की हैं, उनको बहुत पसंद। और मुझे याद है पढ़ते समय हम लोग समाचार सुनते थे, जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे, ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं, गीत संगीत तो सुनते ही थे। और आज भी आप देखिए जो किसानों की सलाह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन बड़े शहरों में उनकी प्रासंगिकता नहीं है इसीलिए नहीं सुन रहा, लेकिन गाँव में आज भी उन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य वाले, हम लोगों को यहाँ पे तो सारी मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी जैसे मैंने पहले भी कहा था। और फिर जिस प्रकार के इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, मार्केट मंत्रा, उसको मैं शाम को सुनती थी, तो आर्थिक जगत में क्या हो रहा है वो पूरे दिन का एक समरी आ जाती थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है, भारत की क्या स्थिति है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये आकाशवाणी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है।
1: बिल्कुल, स्वास्थ्य और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए उसमें सबैकी प्रोग्राम बहुत एक प्रसिद्ध रहा, और मैं भी उसको 1980-82-83 के दशक से उसको करता आ रहा हूँ। और मुझे आज याद आ रहा है कि आज 2 जून है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो आज ही के दिन जो राज कपूर है उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को। और मेरा एक बड़ा एक शायद पता नहीं कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था या मेरा सौभाग्य था कि उनके अंतिम समय में मैं ही उनके साथ था एम्स के अंदर, मैंने ही उनसे आखिरी बात, इतने बड़े फिल्मकार ने इतने संवाद लिखे लेकिन उसने जीवन का आखिरी संवाद मेरे साथ किया। वो कार्यक्रम भी सवाईकी में 2 जून 1988 को गया था, जो आज ये रिकॉर्डिंग का दिन है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी वो देता है कि किस तरह आप देखिए कि ये सब हुआ। और जिस तरह स्वास्थ्य की बात की, तो मैं खुद आकाशवाणी के लिए बहुत समय तक स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम करता रहा, मैं विश्वविद्यालयों में जाता था, अलग अलग कॉलेज में जाता था, उस समय बड़ा मुश्किल था आज के समय के हिसाब से, अपना जो छात्राएं हैं उनसे खासतौर से परिवार नियोजन की बात करें, शादी की बात करें, आज तो बहुत एडवांस हो गए लेकिन 40 साल पहले 35 साल पहले बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मैं तब भी अपना वो पुराना मेटल रिकॉर्डर हो जाता था वो ले जाता था और जाके यूनिवर्सिटी में बैठ जाता था, लॉन के अंदर फिर बुलाता था बाहर से किसी को, फिर उनसे बातों बातों में बात करता था। लेकिन उसके बाद वो इतने अच्छे कार्यक्रम बनते थे कि बहुत ही शिक्षा उनको मिलती थी, डॉक्टर से बात करते थे, लोगों से भी बात करते। कोरोना के दिनों में स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुए, वो भी इसके अंदर चल रहे हैं। तो टंडन साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपका एक इतना एक अलग अनुभव, आप क्या देखते हैं आकाशवाणी के भविष्य को, किस रूप में देखते हैं आप आज?
2: मैं उससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था, जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित करते थे और उनके समाचारों को हम इकट्ठा करके फिर यहाँ पर बुलेटिन में डालते थे, तो मैं समझता हूँ कि वो सर्विस भी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी चलती है। पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नजदीक से आकाशवाणी के संवाददाताओं के साथ काम किया, विदेश में चाहे प्रधानमंत्री की विजिट हो, राष्ट्रपति की हो या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी रहता था जिसमें उनको वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती थी, बाइट्स जिसको आज कहते हैं वो लेने पड़ते थे, और हम लोग तो अपनी कॉपी जितनी लंबी मर्जी लिख लें, उनको छोटे में न्यूज बुलेटिन के हिसाब से वो बनानी पड़ती थी खबर, हम देखते थे कितना मुश्किल काम करते थे। और मैंने लगभग 20 साल तक तो आकाशवाणी के करस्पॉन्डेंट के साथ काम किया, देश में भी विदेश में भी, और उन पर जितना दबाव रहता था, क्योंकि उनका समाचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और ये जो दबाव में काम करने में आकाशवाणी के संवाददाताओं ने योगदान दिया, जिसके चलते आकाशवाणी के समाचारों की विश्वसनीयता बनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कार्यक्रम की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जब 1971 की लड़ाई में सरेंडर करती है पाकिस्तान की सेना, तो यहां से एक स्पेशल वॉर करस्पॉन्डेंट बन के सुरजीत सेन गए थे और उन्होंने वहां पर बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो से लाइव ढाका से किस प्रकार से जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, इसका लाइव उन्होंने, आप सोचिए टेलीविजन में लाइव दिखाना आसान है, लेकिन आकाशवाणी के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि सरेंडर कैसे हुआ, तो ये इतने महत्वपूर्ण एक ऐसे आयाम हैं जिसको आकाशवाणी के संवाददाताओं ने कवर किया, और कितनी कठिनाई में दुर्गम स्थानों पर जाकर और फॉरवर्ड एरिया में जाकर, सियाचिन जैसी जगहों पर जाकर, तो इन लोगों ने जो काम किया। देखिए, अब अगर आप भविष्य की बात करें तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है।

0: समय के साथ आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई है। आज डिजिटल मीडिया में आकाशवाणी की रीच सबसे ज्यादा है और जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग सुनते थे एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ में एक फोन होगा, उस पर आप आकाशवाणी के समाचार भी सुनेंगे, आप उसमें टीवी की खबरें भी सुनेंगे, आप उसमें संगीत भी सुनेंगे। आज वो हमारे सामने है, हमारे हाथ में है। तो उस युग को आज आकाशवाणी जी रहा है और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है। चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा। उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं, अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर, श्रोता भी चल रहे हैं, आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है। आकाशवाणी में इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है। पहले एक जरा सी गलती जाती थी बहुत मुश्किल हो जाता था। हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेके बड़ा एक मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे, इतना भारी होता था, तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी। आज सब कितना आसान हो गया है। तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल से मुझे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप किस तरह देख रही हैं आकाशवाणी को बदलते स्वरूप में, इसकी पहुंच को लोगों तक, और आज के जो आप कॉलेज में पढ़ाती हैं तो वहाँ किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
2: देखिए, आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परंपरा का भी और आधुनिकता का भी। इस भवन के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं पुराने सेट और बहुत सुंदर है वो तस्वीर, और वो भी तस्वीर जहाँ महात्मा गांधी का जिक्र है।
1: बिल्कुल।
2: उसके बाद अंदर आने पर अभी देखिए हम जिस स्टूडियो में है, पंडित रविशंकर उनके नाम पर इस स्टूडियो का गठन किया गया है और तमाम स्टूडियोज ऐसे ही नामों के साथ जुड़े हैं। जो यहाँ का जो गलियारा है वो भी इतिहास की बड़ी सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो इसका मतलब ये है कि आकाशवाणी ने हमेशा से ये समझा कि इतिहास को सहेजना, उसका सम्मान करना, वर्तमान पर पूरी नजर रखना और भविष्य की तरफ उन दरवाजों को खुला रखना, जो इन तीनों को एक साथ सहेज लेता है वही आगे बढ़ पाता है। आकाशवाणी इसका बहुत सुंदर प्रतीक है। एक और बात जो लगती है कि आकाशवाणी ने आर्काइव्स पर बहुत जोरदार काम किया, उसने किसी भी तरह से इतिहास को मिटने नहीं दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी की जिस परेड को और जिस भव्य समारोह को दूरदर्शन के आने इससे पहले या फिर आने के बाद भी लोग तन्मयता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा, वो झांकियां क्या होगी, उसे आंखों देखा बताने वाला आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन है। रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य, आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत सुनहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजोकर रख रहा है, वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है और आने वाले समय में जिस तरह की आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से वो अपने आप को रोज बदल रहा है। आकाशवाणी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो बुजुर्ग हैं उनका भी आकाशवाणी था, जो आज बच्चा है उसका भी आकाशवाणी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी आकाशवाणी की मौजूदगी हमेशा रहेगी। ये बात अलग है कि जब सिलेबस डिजाइन होता है हर बार इस बात की बहस होती है कि जो तिजोरी भर रहा है कहीं वो ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन वो बहस हर बार इस दबाव के आगे हार जाती है कि आकाशवाणी की जगह कोई नहीं ले सकता। असल में आकाशवाणी हमारा नींव है, उस नींव के आगे ही बाकी संसार है।
1: तो इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं चाहूंगा कोई भी श्रोता जो यहाँ बैठे हुए हैं कोई सवाल पूछना चाहे हम किसी से तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, आप बताइए अपने नाम के साथ।
3: मैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक, मैं स्वयं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ। रेडियो पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ लिखा है और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं। मैं विद्यालय स्तर पर 11वीं-12वीं को पढ़ाता हूँ। मैं माननीय टंजन जी से एक सवाल करूँगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के हम क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए आज के युग में।
1: जी टंजन साहब,
0: धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे उद्गार रखे, लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर उसको पहुंचना था, और किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर ना और व्यवहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी हैं ही हैं। आज आकाशवाणी

0: और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ हो रहा है। और मैं ये कहना बिल्कुल उचित समझता हूँ कि कई विकासशील देशों के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के लोग हमारे यहाँ भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं कि वो कैसे अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को सुधार सकते हैं। हम अग्रणी हैं और अग्रणी ही रहेंगे। अभी भी बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि यहाँ का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऐसे कैसे इतनी सक्षमता के साथ चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पर विशेष तौर पर आकाशवाणी के समाचार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि ये केवल और केवल सरकार की खबरें देता है और उसमें संतुलन नहीं बनाता, और ना ही कभी किसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है। सरकार के पक्ष का भी नहीं है और लोकतंत्र के नाते भारत में क्योंकि एक फ्री प्रेस है तो उसमें हम कभी ऐसा भी नहीं है। मैंने स्वयं देखा है कि बुलेटिन के बारे में पूरा लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने मिनट सत्ता पक्ष को दिए गए, कितने मिनट विपक्ष को दिए गए, कितने मिनट किस नेता को दिए गए। तो अभी तक आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन के बारे में कभी किसी विरोधी दल ने शिकायत भी नहीं की कि आप बायस्ड हैं। ये जो एक आकाशवाणी ने अपनी एक साख बनाई है उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है, और कोई कारण नहीं है कि जो आप चाहते हैं कि आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए। वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम जाएगा दुनिया में स्टैंडर्ड जाएंगे। भारत न तो बीबीसी से पीछे है, न वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, न चाहे डॉइच वेले है। ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
1: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए, भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, और अभी हम लोग ने सुना कैसे जापान सबसे एजड कंट्रीज में से है, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन यदि आकाशवाणी को युवाओं में लोकप्रिय होना है, क्योंकि हमारी आपकी जनरेशन, टंडन साहब की जनरेशन, तो हम लोग तो अभी भी आकाशवाणी पर जाएंगे, लेकिन यदि युवाओं में आकाशवाणी को उतना ही पॉपुलर रखना है जितना पहले रहा है, उसके लिए युवाओं पर केंद्रित विशेष प्रोग्रामिंग वो करनी होगी। और अभी मैंने ये देखा है कैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए रील्स, आकाशवाणी ने जो रील्स का अपनाया, आज युवाओं में रील्स बहुत पॉपुलर है, तो वो रील्स को भी आकाशवाणी ने अपना लिया है। और जो रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं वो रील्स के माध्यम से ही आकाशवाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की मन की बात की अलग अलग विषयों की छोटी छोटी स्टोरीज बनी हो, या फिर कोई घटनाएं हो रही है, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, चाहे अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको जो रील्स के रूप में आकाशवाणी दे रहा है, तो यदि यंगस्टर्स में पॉपुलर होंगे तो भविष्य भी उज्जवल होगा।
2: बिल्कुल। और कोई सवाल पूछा चाहे जरा बताएं। जी आप बताएं।
3: मेरा सवाल प्रज्ञा मैम से ही है। खुश हुई इस बात की जानकर के सर की पहली कमाई मैम की भी युवाणी से, आपके भी और मेरी भी सर वहीं से हुई। मैम मेरा नाम मनीष आजाद, रेडियो वाले है, और मैं पिछले 26 वर्षों से यहाँ जुड़ा हूँ, और कई सारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मैं रेडियो पढ़ाने के लिए जाता हूँ,
2: इसीलिए रेडियो वाले आपका नाम है।
3: सर ये लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है, क्योंकि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूँ तो मैं आकाशवाणी को हर समय आगे रखता हूँ। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं आप और प्राइवेट चैनल्स को और बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके आरजेएस के बारे में बताएं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तो वहां पर मैं कैसे मैम तालमेल किया जाए?
1: आपने सही कहा कि जो मैंने पहले बात कही थी कि आज जो यंगस्टर्स में कौन पॉपुलर है, हम आकाशवाणी को रेस में नहीं पढ़ना है पॉपुलैरिटी की, लेकिन जो तरीका है एंटरटेनमेंट का ही देने का वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे और ज्यादा पुराना एक आकाशवाणी का पैटर्न होता था उस हिसाब से हम कैसे बदलें आज के समय के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग लाएं, गंभीरता भी मनोरंजक तरीके से, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गंभीरता भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारा काम है एंटरटेन करना, सूचना देना, दोनों को कैसे एक अच्छा बैलेंस बनाया जाए वो आकाशवाणी को करना बहुत ही जरूरी है।
2: जी आप पूछिए सवाल।
4: जी नमस्कार।
2: नमस्कार।
4: मैं डॉक्टर पारुल राज, वैसे मैं बनारस से हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, तो मेरा एक रहता है स्त्री विषय मेरा है मेन, तो जो कहते ना कि एक कोना जो खाली है वो अगर हम उस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको हम प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाए, और तो वो मेरे मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
2: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्रित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कवियों को लेकर भी चल रहे हैं, और यहाँ भी बहुत सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष कार्यक्रम,
1: एक विविध भारती पे एक सखी सहेली बहुत पॉपुलर
2: सखी संगीत चल रहा है, महिलाओं को

0: अचार बनाना, ऐसी घर की चीजों को बनाना, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो। कई बार वो जो व्यंग्य कार्यक्रम उस पर जोड़ देते थे कि आप जो अचार बनाना सिखा रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसमें डुबो दीजिए, तो कई पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो इस तरह कह रहे। वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा, तो इसलिए ये बहुत कार्यक्रम ऐसे है जो लोकप्रिय है। जी, मैं एक बार आपसे और जानना चाहूंगा टंडन साहब कि आप वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार भी रहे, तो वाजपेयी जी कोई बहुत कवि तो थे ही और दिग्गज राजनेता थे, वो रेडियो को लेकर कैसे सुनते थे आकाशवाणी को और क्या उनका रहता था?
1: अटल जी की बहुत सारी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई हैं, तो देखिए वो भी जिस युग में पढ़े भले, तो रेडियो तो जीवन का एक अंग था ही। और मेरा ऐसा मानना है कि समाचार सुनने में, सामयिकी या और ऐसे कार्यक्रमों को सुनने में सभी राजनेताओं का बहुत विशेष एक ध्यान रहता था आकाशवाणी की तरफ। इंतजार करते थे लोग कि कब समाचार बुलेटिन आए, कब शाम के जो इनका चर्चा आए। वो सारी जनरेशन तो आकाशवाणी के साथ ही आगे बढ़ी है और उसमें राजनेता कहीं कोई अलग नहीं है।
0: नहीं, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जाहिर है इतने सारे अखबार आते थे, उनका मीडिया क्लिपिंग्स आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति, खासतौर समाचारों के प्रति।
1: जैसे जैसे समय बदलता गया तो आकाशवाणी के जो समाचार हैं वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं और आज भी वही है। आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और जितने लोग भी कार से सफर करते हैं,
0: सुबह 8 बजे शुरुआत होती है वो
1: तो
0: रेडियो,
1: इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वो देश दुनिया के साथ उनका जुड़ाव है, क्योंकि चलते हुए भी उनको पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पत्रकार होने के नाते भी कि जो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन है या जो उनके विशेष कार्यक्रम है, स्पॉटलाइट है, ये आज भी बहुत आवश्यक है, हिस्सा है जीवन का। तो इससे लोग अलग नहीं हो सकते। अपने मोबाइल पर भी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के सुन सकते हैं। तो ये जो सुविधा आई है, इसमें मेरा ऐसा मानना है कि समाचार बुलेटिन और ये जो कार्यक्रम है सामयिकी, इसमें कोई प्राइवेट चैनल इसका मुकाबला नहीं कर
0: सकता।
2: नमस्कार, मैं एज इंजीनियर, यहाँ मेरी पहली नौकरी यहाँ लगी थी।
0: अच्छा।
2: और मेल्ट्रॉन का जो ये रखा है टेप रिकॉर्डर, इसको हम ही मेंटेन किया करते थे। सरदार जी होते थे, लेकिन मैं इंजीनियर से साहित्यकार बन गया। आज मैं पोएट हूँ, वो सब इसी की देन है। आकाशवाणी में जो आर्टिस्ट लोग आते हैं, तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजिकली भी आकाशवाणी को सुने लोग बाग ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें आर्ट कहीं खुलती जा रही है, बस इतना ही।
0: ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है। और आप भी आइए।
3: मैम, मेरा नाम कीर्ति बैद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, रेडियो को 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि हमारी जो इतनी लंबी यात्रा रही है उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए। क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है?
4: बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और PhD रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स थे उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए। किसी को कोई क्लिप पुराना भाषण सुनना है, विशेष रूप से आकाशवाणी के पास जो रिकॉर्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेषण करना है, रिसर्च करनी है,
0: बड़े बड़े संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है,
4: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं।
0: बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे, और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाशवाणी पर अभी मैंने कुछ 2-3 पंक्तियां लिखी हैं अपने मेरे कवि बनने कि आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90 वर्षों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगों युगों तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
5: बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
6: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका, प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना। कार्यक्रम का नियामन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा, और कार्यक्रम का संयोजन

0: या था राम अवतार बैरवानी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
2: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
3: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
4: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के हृतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हृतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,500,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रुपये और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रुपये देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमा

0: नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
1: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और भागीदारी शामिल है।
0: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
2: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
4: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
3: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे साहिल लुधियानवी की शब्द रचना। फिल्म वक्त के लिए धुन बनाई थी रवि ने।
1: कुछ यादें अतीत की।
2: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
1: कुछ बातें वर्तमान की।
3: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
1: कुछ सपने भविष्य के।
4: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
1: कुछ किस्से अनकहे।
5: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।

0: क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात। सुनिए, इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।
1: चित्रपट संगीत में अब ये सुनते हैं फिल्म साथी का गीत। गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार नौशाद, आवाज लता मंगेशकर की।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत आकाशवाणी का, कि रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम किसान सशक्तिकरण।
1: This is Akashwani. In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants are Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, KV Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator is Sonu Sood.
2: Ye

0: लेकिन आज मार्केट प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है, फार्मर को बेटर प्राइस मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ कुछ चीजों में एमएसपी नहीं मिल रहा है, ज्यादातर इस साल की बात करूं तो कई सारे फसल में एमएसपी से ऊपर मिला है। और मस्टर्ड का देख लीजिए, अभी मस्टर्ड का सीजन है, एमएसपी से ऊपर है। चना का देख लीजिए, चना ऊपर है। व्हीट का तो सरकार खुद ही 40-45% प्रोक्योरमेंट कर रही है एमएसपी पे, तो मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर रहता है। इस साल कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा मतलब 50-100 रुपये नीचे बिकने की रिपोर्ट आई थी, लेकिन आज वहाँ पे भी ऊपर आ गया है प्राइस, मार्केट प्राइस। तो लगभग सारे जो रवि क्रॉप्स है वो एमएसपी से ऊपर है या एमएसपी के बराबर के पोजीशन में है,
1: तो एक फेयर प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को।
0: बिल्कुल, बढ़ोतरी हुई है, काफी अच्छी बढ़ोतरी, क्योंकि 50% जब A2 प्लस FL के आधार पे दिए हैं वो एक बहुत बड़ा कदम था उस समय की देखा जाएगा तो। और उसके अलावा जो मैं गिनाऊंगा तो इन्होंने फसल बीमा योजना शुरू की है, इन्होंने अभी 2 साल पहले एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया, पल्सेस मिशन लॉन्च किए, और बहुत सारे चीजें इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की है। एक रिफॉर्म जरूर है कि इन्होंने कोशिश किए थे जो तीन फार्म लॉज लेके आए थे कृषि कानून, जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है, फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, नहीं माने तो फार्मर जबरदस्ती थोप नहीं दिया। जो भी चीजें हैं फार्मर जो चीज यस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस तभी होगा जब आप फार्मर को साथ लेके चलेंगे
1: जी,
0: कोई भी स्कीम हो।
1: मिस्टर विनोद आनंद, कमिंग टू यू, आप जिस कमिटी के मेंबर हैं सरकार की, उसमें एमएसपी पर फैसले होते हैं, उस पर बातचीत होती है, थोड़ा आप हमें बता सकते हैं कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो टूल है सरकार के पास, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है, और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को एमएसपी के माध्यम से, और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू है उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे।
2: जी देखिए, 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल एमएसपी वैल्यू में, अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में जो 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, वो 26.3 यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने एमएसपी के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेज हैं उसको हम मीट कर पाए। इसलिए जैसे मैं आप मोटा अनाज जो है, जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा 163% यानी 163% 1530 रुपए जो ज्वार की एमएसपी थी, अब वो 4023 रुपए हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में, जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि एमएसपी को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही, बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया, जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है
1: जी।
2: क्रेडिट की व्यवस्था में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास किसानों के पास केसीसी अकाउंट है। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ है। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में, खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में, इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को डीबीटी कर देते हैं, हमारे पास डीबीटी का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है, इससे दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी, और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए, खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद, और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने की बात, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी

0: कहीं नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयरहाउस में कन्वर्ट करना, और वेयरहाउस वो नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं हो करके स्मार्ट वेयरहाउसेस कैसे हो जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको।
1: हाँ
0: लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था, एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसका मैं भी सदस्य हूं, जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं। तो
1: जी
0: इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है, और आप आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ना सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्यूरमेंट में और एमएसपी में एक गुणोत्तर वृद्धि में, बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब में एक आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। और खास करके हम बड़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी दुनिया के तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था,
1: जी
0: बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहां खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो, प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में ऐसी
1: हाँ
0: नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
1: सो मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है, एक कोलैबोरेटिव वे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है। डीबीटी की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरुआत होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है, 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2 लाख करोड़ रुपीज से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
2: सुनो जी, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहे हैं और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान और कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं वो गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे, यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए एक मदद के लिए कि जैसे आपने साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के डीबीटी यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसके खाते में पैसे हैं, अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं। तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको इस, और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका, तो ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
1: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे। तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई, आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है, ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
2: जी सुनिए, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाड़ लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखे होंगे, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल नुकसान हुआ है, तो ऐसे में एक किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना

0: प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से ले तो करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने 25 दिसंबर तक इसमें फायदा उठाया है। सोनू जी
1: जी बिल्कुल। एंड मिस्टर आनंद कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन 2.5 times इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी द क्वालिटी आल्सो द फिशरीज द एलाइड सेक्टर्स दे हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल मिनिस्ट्री एंड देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। सो यू थिंक दैट एनहांसिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स दीज एलाइड सेक्टर्स आर प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल।
2: देखिए जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है
1: जी।
2: ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नियत के बारे में। नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहां हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा। ये
1: तो पैक्स जो कह रहे कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज
2: जी बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया। यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में अब ये कंप्यूटराइज हो गई, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे यहाँ अब है वन नेशन वन राशन कार्ड और वो भी डिजिटाइज्ड है, यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूं तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथन किए गए वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए, यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर हैं इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से ये सारी चीजें हो रही है। मेगा फार्म फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी, सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आप आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और वो फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
1: तो आप
2: कुछ ऐसे चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे जैसे मान के चलिए 100 जिले थे, तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में एक्स बटा एट हो

0: है, आखिर क्या कारण है, तो उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सिक्योरिटी रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं, और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है ये सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में, और जो डेयरी में आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है, तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में, तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है।
1: जी
0: चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है कंप्रेस बायोगैस में,
1: जी
0: और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टरबाइन फ्यूल, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टरबाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगा

0: विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में और जो डेयरी में आज आप देख रहे हैं। लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है, तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में, तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है। चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है कंप्रेस बायोगैस में, और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टर्बाइन फ्यूल, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टर्बाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं, और ये तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टर्बाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही है, तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात यह है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए, ये फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है, पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए, हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
1: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, इस मंत्रालय के महत्व के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं, ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके लिए इनका क्या महत्व है?
2: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए, पहले भी एफपीओ बनते थे लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले ही बन गए 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहाँ पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है, कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं, और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
1: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओस होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
2: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओस को, जो चाहे वो कर सकते हैं एज ए बिजनेस एंटिटी, उनको बिजनेस बढ़ाना है। और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं, सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है, किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
1: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
2: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा

0: खा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं
1: जी।
0: और अपने फार्मर को, कई एफपीओस तो ऐसे हैं जो कॉस्ट ऑफ जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं, तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
1: So that collective power is there. And Mr. Mishra, we would also like your views, and if you could tell us that how government is really empowering the farmers by protecting them from increase in the prices of fertilizers. So this is a very important input, the fertilizers. So this aspect, how it has been taken care of at the policy level in these 12 years, can you tell us about this empowerment aspect for farmers?
0: See, fertilizer in India is considered the cheapest in the world when you talk about urea particularly. Why? Because government has not raised the price for past two decades or so, and urea currently is available at 267 rupees per bag of 45 kg. Last international price at which India bought urea was $954 per ton. So roughly, if you take $1,000, it comes to around 95,000 per ton. 95,000 means 9,500 per quintal. It is a big amount. So when farmers are sold at 267 rupees, just imagine how much money the government is subsidizing. Mm. The result is farmers are getting the product fertilizer at the very cheap rate, so that their cost of production is also limited within certain range,
1: right.
0: And it is also reflected in the end price which they are selling their produce. If you raise the input cost, the product will also be costlier for the consumers. So it is based on this theory that you subsidize the input to some extent,
1: okay,
0: so that the end product also becomes cheaper for the consumers, and our inflation is also remain under control.
1: Mr. Anand, Mr. Prasad, Mr. Mishra, thank you so much for this insightful discussion on the various aspects of how the farmers and the agriculture sector has been empowered in the last 12 years.
2: Thank you.
3: Thank you very much.
0: Thank you very much.
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants were Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.
5: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल, किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार में एमएसपी और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद व प्रभु दत्त मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
6: अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम किसान सशक्तिकरण। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर।

कभी किसी गीत ने आपको बीते दिनों की गलियों में पहुंचा दिया हो, कभी किसी धुन ने आपकी आंखों में पुरानी यादों की नमी भर दी हो, और कभी किसी सुर ने आपके चेहरे पर बिना वजह मुस्कान बिखेर दी हो। अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि अगले आधे घंटे तक हम निकलने वाले हैं एक ऐसे

खूबसूरत सफर में, जहां रास्ते सुरों से सजे होंगे और मंजिलें गीतों से महकेंगी। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त थानेन्द्र और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुरों का सफर, जहां हर गीत सिर्फ एक गीत नहीं होता बल्कि किसी की याद, किसी का सपना, किसी की हंसी और किसी के दिल की धड़कन बनकर हमारे साथ चलता है। श्रोताओं, संगीत वो जादू है जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता है। ये थके हुए मन को सुकून देता है, उदास चेहरों पर मुस्कान लाता है और कभी कभी तो दिल की वो बातें भी कह देता है जिन्हें हम लफ्जों में बयान नहीं कर पाते। तो आज की इस खूबसूरत महफिल में अपने सारे गम और सारी परेशानियों को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दीजिए और खुद को सौंप दीजिए सुरों की उस दुनिया के हवाले जहां सिर्फ एहसास है। तो आइए आगाज करते हैं इस सुरीले सफर का इस गीत के साथ।

बम्बई का बाबू। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, संगीत सचिन देवबर्मन का था और सुनने के ख्वाहिशमंद थे हमारे ये श्रोता साथी। समडेल नवापारा से आप हैं मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे, दीपक गुप्ता। दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू। सिमगा से आप हैं रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव। चिरमिरी कुरासिया से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह और राम सहोदर। भुरसुदा से भगवानी सेन, संतोषी सेन, चिराग, गजेंद्र सेन। पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक, सीमा साहू। रोहसी से डगेसर साहू, नूतन, गौरव, घनश्याम साहू। पहरा अहिवारा से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति, छाया बंछोर। और परसा टोला अंबागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र और तुषारणी मसिया। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश आप सबकी। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन। हसदा नंबर दो से कमलेश साहू, जितेंद्र पायल साहू। जवाहरनगर दुर्ग से आप हैं आरसे कांबड़े, करुणा कांबड़े, मीना, विपुल कांबड़े। भीम खोज तरपोंगी से संतोष गुप्ता, हितेश, होमेश, लक्ष्मी प्रतिभा गुप्ता। अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, भूपेश, दीपेश वर्मा। कोयलारी कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद चंद्राकर, पूर्णेंद्र, साहिल चंद्राकर। पलारी से नीतीश कुमार देवांगन, तनुजा देवांगन, ईशांत, लखनलाल देवांगन। और भाटापारा से आप हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु और विनय ठाकुर। आप सबने सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में साहिल लुधियानवी का लिखा गीत। संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम नया दौर।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर CID। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त के युगल स्वर में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं OP नैयर का संगीत। पसंद आप सबकी। शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा। डोंगर गांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस, सतीश, ऋषा और गायत्री वैष्णव। देवरी भाटापारा से आप हैं गन्नूलाल रजक, KR साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। बंगला मटिया से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबिका, लीना, अंशुमाला और आशुतोष अंगारे। बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता सारथी, भाई कमलकांत, वीरेंद्र, व्रजकांत सारथी। और शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर और भगवान चंद्राकर। आप सबकी पसंद पर सुनिए फिल्म नया दौर का, फिल्म CID का ये गीत।

मेरी जान। कार्यक्रम के अगले गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता साथी। डोंगरिया मलाज खंड मध्य प्रदेश से मुन्नालाल पटले, माधुरी देवी पटले, दीपांशु याचना पटले, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत, धरसीवन से आप है छेदुलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव, रामनगर रायपुर से राजेश अम्बादे, शशिकला अम्बादे, पूजा अम्बादे, अरमरी खुर्द से आप हैं चुरामन लाल वार्डे, जैनी वार्डे, विवेक कुमार, नेहा वार्डे, भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा, पटपर डोंगरगढ़ से राम गोपाल ध्रुव, नरेंद्र कुमार ध्रुव, कविता जयंती ध्रुव और शिव मंदिर रोड खैरागढ़ से आप हैं रविंद्र अग्रवाल, पुष्पलता, डॉक्टर झरना, प्रेरणा, दीक्षा और शिक्षा। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में शैलेंद्र का लिखा गीत। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम श्री 420।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म उजाला का गीत। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, आवाजें मन्ना डे, लता मंगेशकर और साथियों की पसंद है आप सबकी। कटोरा तालाब रायपुर से मोहनलाल देवांगन, प्रभा देवांगन, भूपेश तुषार देवांगन, बलौदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, पावर हाउस भिलाई जामुल से विकास वर्मा, खुशी वर्मा, ग्रंथ वर्मा, यहीं से संजय प्रधान, पूजा प्रधान, रिंगनी से आप हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बाजार पारा बेमेतरा से भाई भरत लाल सिन्हा, लव कुमार सिन्हा, लक्की सिन्हा, दतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना लक्ष्मीना यदु, सिमगा से सविता जैन, प्रदीप जैन और इनके साथी, शांतिनगर भाटापारा से रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान।

नासिर खान, अयाज़ अलफैज़ और हज़ीरुन निशा, और चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियाना मल, अनिता मोटवानी, राजेश मुकेश मोटवानी, सोमेश, मनीषा और शुभम। आप सबकी पसंद पर सुनिए फिल्म उजाला का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए बसंत तिमोथी का वायलिन पर बजाया राग जन सम्मोहिनी में आरंभिक आलाप के बाद दो गते प्रस्तुत है। विलंबित और मध्यलय गत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगतकार हैं रविंद्र कर्माकर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बसंत तिमोथी का वायलिन पर बजाया राग जन सम्मोहिनी। तबले पर संगतकार थे रविंद्र कर्मकार। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात

0: की बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।